सुप्रभात, आकाशवाणी का यह हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आज मंगलवार है, शक संवत 2048 के श्रावण माह की तिथि 20, तदनुसार 11 अगस्त सन 2026 सुबह के 5:58 और 39 सेकेंड हुए हैं। अब हमारा आज का यह प्रसारण आरंभ होता है।

आकाशवाणी का यह हजारीबाग केंद्र है फिर 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो के घड़ी में सुबह के 6 बजने को हैं। हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से होगा बस कुछ ही पलों में।

0: समाचार के साथ मैं वैष्णवी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सभी दलों के नेताओं से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करने की अपील की है। संसद भवन में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिड़ला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार दिल्ली में हुए प्रदर्शन और देशभर में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में उन्होंने आश्वासन दिया कि गृहमंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार है। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान विद्यार्थियों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन तेज हो गया है।
1: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में हजारों अभ्यर्थियों ने विधानसभा की ओर मार्च किया और कई बैरिकेडिंग पार करने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की स्वतंत्र सीबीआई जांच और जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए सीबीआई और ईडी जांच की मांग दोहराई है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: सरकार ने 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों और सीमा चौकियों से ई वीजा वाले विदेशी नागरिकों को भारत में प्रवेश की अनुमति दे दी है। गृह मंत्रालय ने बताया कि इनमें 9 जमीनी बंदरगाह और 2 हवाई अड्डे शामिल है। इनमें भोपाल और तिरुपति के हवाई अड्डे और अटारी व अगरतला के जमीनी बंदरगाह शामिल है। अब ई वीजा वाले विदेशियों के प्रवेश के लिए उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों की संख्या बढ़कर 88 हो गई है। इनमें 37 हवाई अड्डे, 38 समुद्री बंदरगाह और 13 जमीनी बंदरगाह शामिल है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पर सही गुणवत्ता की

0: सही कीमत वाले सही उत्पाद की सही समय पर खरीद होती है। उन्होंने कल नई दिल्ली में जेम के 10 वर्ष पूरे होने के उत्सव में ये बात कही। श्री गोयल ने याद दिलाया कि जेम से पहले सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा था, खरीद में पारदर्शिता नहीं थी और अच्छे शासन की कमी थी। उन्होंने कहा कि जेम ने देश भर के सभी लोगों के लिए सरकारी खरीद में हिस्सा लेने के लिए निष्पक्ष और समान अवसर उपलब्ध कराए। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के जबरदस्त भूकंप के कारण 111 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। कई लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की खबर है। कोलंबिया के राष्ट्रपति एबिलार्डो डेला एस्प्रियला ने राहत कार्यों के लिए फंड तेजी से जारी करने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी। भूकंप का केंद्र बोगोटा से लगभग 400 किलोमीटर पश्चिम में चौको क्षेत्र के सेन होस डेल पालमार में था। भूकंप के झटके पड़ोसी देशों इक्वाडोर और पनामा में भी महसूस किए गए, हालांकि वहां बहुत कम नुकसान की खबर है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के जरिए देशभर के कृषि विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप और फेलोशिप राशि जारी की। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 21 करोड़ रुपए से अधिक राशि सीधे 6000 से ज्यादा विद्यार्थियों के खातों में भेजी गई। कृषि विद्यार्थियों को अब स्कॉलरशिप हर महीने सीधे बैंक खातों में मिलेगी। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा को आधुनिक चिकित्सा का पूरक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीमारी से बचाव, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, जीवन शैली में बदलाव, पुनर्वास और आरोग्य पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उन्होंने नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की 5वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होंगे। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है और दोनों पूल से शीर्ष दो टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेगी। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि भारतीय महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेंगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त के बीच बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है, फिर 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है आज का चिंतन।
2: गुरु नानक ने कहा था, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेगा, समझो उसने विश्व पर विजय प्राप्त कर ली। आपा चिन्हना एक महान गुण है। इस बात का अनुभव महात्मा गांधी को उस समय हुआ जब वे बैरिस्टरी की विद्या प्राप्त कर रहे थे। आपा चिन्हना मनुष्य को अपने अंदर की कमजोरियों से अवगत कराता है तथा जब वह उन्हें देखकर लज्जित होता है और हृदय से उनसे छुटकारा पाने की चाह रखकर प्रयास करता है, तब उसे अपने अंदर विद्यमान प्रभु ज्योति से प्रकाश मिलता है तथा उन पर विजय पाने में सक्षम होता है। धीरे धीरे आगे चलकर स्वयं को पूरी तरह से जानने के कारण उसे प्रभु की असीम शक्ति का वह स्रोत उपलब्ध हो जाता है कि वह आत्मबल द्वारा महामानव बन जाता है। गांधी जी का जीवन इसी का ज्वलंत उदाहरण है। कहते हैं गांधी जी पहले स्वभाव से संकोची थे, 10 आदमियों के सामने बोलने से घबराते थे। दूसरा, असत्य भाषण उनकी प्रकृति के विरुद्ध था। इन कारणों से उनकी वकालत नहीं चली। इसी बीच दक्षिण अफ्रीका के एक बड़े व्यापारी सेठ अब्दुल्ला ने अपने व्यापार की देखरेख की सहायता के लिए गांधी जी को वहां बुलाया। इस प्रकार गांधी जी डरबन शहर पहुंचे। पर जब उन्होंने भारतीयों के प्रति गोरों के अत्याचार को देखा तो वे सिहर उठे। उनकी आत्मा ने उन्हें ललकारा, उठो, जागो, अपनी शक्ति को पहचानो, शोषण के विरुद्ध आवाज लगाओ, पीड़ितों के मुक्तिदाता बनो। क्योंकि गांधी जी आपा चिन्हने का सबक सीख चुके थे, उन्हें आत्मा की आवाज सुनने में देर नहीं लगी। अपने अंदर की प्रभु की शक्ति के भंडार को पहचान कर उनमें अंग्रेजी साम्राज्य से टकराने का अदम्य साहस पैदा हो गया। झेपू और संकोची गांधी अब शक्तिवान बन चुके थे। गांधी जी पगड़ी उतारे बिना ही बाहर चले गए, पर यह अपमान उनके हृदय को बेध गया तथा उन्होंने अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने की ठानी। दक्षिण अफ्रीका में

0: दूसरी हृदय विदारक घटना तब घटी जब गांधी जी वहां रेल यात्रा कर रहे थे। रात के 9 बजे एक अंग्रेज उनके डिब्बे में आया तथा एक हिंदुस्तानी को वहां देख बहुत क्रोधित हुआ। उसने रेल कर्मचारियों को बुलाकर गांधी जी को उस डिब्बे से उतारने को कहा, जबकि उनके पास प्रथम श्रेणी का टिकट था, तथा उनके द्वारा इनकार किए जाने पर उन्हें धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया। साथ ही उनका सामान भी नीचे फेंक दिया गया। गाड़ी चली गई और गांधी जी रात भर शीत में ठिठुरते रहे, पर उनके आत्मबल ने, जो आपा चिन्हने द्वारा उन्हें प्राप्त हुआ था, उन्हें गर्मी प्रदान की। उन्होंने इस अत्याचार के विरुद्ध अपने मन में योजना बनाई। नेटाल सरकार एक ऐसा बिल पास करना चाहती थी जिससे भारतीयों के अधिकार छीनते थे। गांधी जी ने इस बिल के विरुद्ध जनमत तैयार किया, पर फिर भी वह बिल पास हो गया। फिर भी वे हतोत्साहित नहीं हुए, क्योंकि उन्हें आत्मबल पर भरोसा था। उन्होंने आंदोलन कायम रखा। अंततः उनकी जीत हुई जब ब्रिटिश सरकार द्वारा वह बिल स्वीकृत न हो सका। फिर दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों को नागरिक अधिकार दिलाने हेतु उन्होंने वहां सत्याग्रह प्रारंभ किया, जिससे उनकी स्थिति में काफी सुधार हुआ। इस प्रकार गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे एक व्यापारी की सहायता के लिए, पर शोषण अत्याचार व दमन के विरुद्ध निहत्थे अपने आत्मबल से संघर्ष करते हुए वे पीड़ितों के नेता बन गए। इसका कारण ये था कि उन्होंने अपने आप पर विजय प्राप्त कर ली थी। शोषकों के विरुद्ध संघर्ष छेड़ने से पहले उन्होंने स्वयं से अपनी कमजोरियों से संघर्ष किया था। अपने भीतर के असत्य से जूझे थे, अपने भीतर के दबूपन व कायरता पर विजय पाई थी। इस प्रकार स्वयं पर विजय पाकर वे एक महामानव बन गए थे तथा उनमें जादुई शक्ति आ गई थी।
1: श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम आज का चिंतन। आकाशवाणी का यह हजारीबाग केंद्र है, फिर 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, 6:10 होने को हैं। वक्त हो चला है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना का। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

महेंद्र कपूर, उषा मंगेशकर और साथियों को इस भजन के बाद श्रोताओं आप सुन रहे हैं अजीज नाज के स्वर में यह खूबसूरत सा भजन कार्यक्रम है भक्ति संगीत का वंदना।

मुकेश के स्वर में आप सुन रहे थे ये भक्ति रचना, और अब अनूप जलोटा के स्वर में हम आपको कुछ भक्ति रचनाएं सुनवा रहे हैं। कार्यक्रम है भक्ति संगीत का वंदना।

श्रोता साथियों, अनूप जेलोटा के गाए इसी भक्ति रचना के साथ अब आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना समाप्त होता है।

0: श्रोता सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:40 हो चुके हैं। लीजिए वक्त है श्री रामचरित मानस गान की आज की कड़ी।
1: नंबर 58 58।

श्री राम अवतार की कई कथाओं में एक कथा आदि पुरुष मनु तथा उनकी पत्नी शत्रुपा से संबंधित है, जिन्हें प्रभु ने एक अद्भुत वरदान दिया था। हजारों वर्षों की कठोर तपस्या के फलस्वरूप मनु को भगवान के दर्शन प्राप्त हुए। भक्त ने भगवान से अपनी मनोकामना प्रकट करते हुए उनके चरणों में ऐसी प्रीति मांगी जैसी पिता के हृदय में पुत्र के लिए होती है। उन्हें ये वांछित वरदान मिला। वर देते हुए श्री हरि ने कहा, स्वर्ग के बहुत से सुख भोग कर कुछ काल बीत जाने पर आप अवध के राजा होंगे और तब मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। एक अन्य कथा राजा प्रताप भानु की है। उसके दो पुत्र हुए, प्रताप भानु और अरिमर्दन। राजा ने ज्येष्ठ पुत्र प्रताप भानु को राज्य सौंपकर भगवत भजन के लिए वन की राह ली।

श्रोता सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान की आज की कड़ी। आकाशवाणी का यह हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। श्रोताओं 6:50 और 36 सेकंड हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा।

अब से थोड़ी देर बाद यानी कि सुबह 7 बजे आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। 7:20 पर वक्त होगा कार्यक्रम स्वास्थ्य वार्ता का। 7:30 पर सुनिए गैर फिल्मी एल्बम के गीतों का कार्यक्रम गीत संगीत। सुबह 8 बजे समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज रिले करेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। 8:30 पर प्रादेशिक समाचार रिले होगा हमारे रांची केंद्र से। 8:45 पर सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी।

श्रोताओं, समय 9 बजे से सुबह के 10 बजे तक आप सुन सकते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से रिले किया जाएगा। सुबह 10 बजे सुनिए कार्यक्रम, हमारा दैनिक कार्यक्रम हेलो हजारीबाग, और 11 बजे से विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे संध्या 4:30 पर। 4:30 पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की आज की कड़ी। 5:02 पर होगा कार्यक्रम इवनिंग मेलोडी। 5:30 पर सुनिए कृषकों के लिए कार्यक्रम खेती बारी।

शाम 6 बजे होगा युवाओं को संबोधित हमारा कार्यक्रम युववाणी। 6:30 पर होगा कार्यक्रम फिल्म संगीत। 7 बजे प्रादेशिक समाचार और 7:10 पर जिले में आज के रिले करेंगे हमारे रांची केंद्र से। 7:15 पर होगा विधानसभा समीक्षा। 7:20 पर सुनिए कार्यक्रम झनकार। 7:30 पर होगा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। 8 बजे होगा संसद समीक्षा और 8:15 पर सुनिए फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत। आठ पर समाचार संध्या और 9 बजे न्यूज 9 रिले होगा हमारे दिल्ली केंद्र से। 9:15 पर सुनिए कार्यक्रम स्पॉटलाइट। रिले करेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम मुंबई से रिले किए जाएंगे 9:30 से। और 10 बजे संसद में प्रश्नकाल की दौरान हुई रिकॉर्डिंग का आप प्रसारण सुन सकेंगे और प्रसारण न मिलने पर 10 बजे रजनीगंधा और 10:30 पर आज के फनकार। रात्रि 11 बजे हिंदी समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी समाचारों के साथ होगा हमारे आज के प्रसारण का समापन। तो ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। 6:55 होने को है। अब संस्कृत में समाचार होंगे हमारे दिल्ली केंद्र से बस कुछ ही पलों में।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: लोकरंग कार्यक्रम में अब श्रद्धा सिन्हा के गाए कुछ भोजपुरी लोकगीत।

श्रोताओं, शारदा सिन्हा के गाए इसी लोकगीत के साथ अब आज का लोकरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

श्रोता सुन रहे थे लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। आकाशवाणी का यह हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:20:47 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य वार्ता। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं बहरापन कारण लक्षण और बचाव, इस विषय में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर जीसी वर्मा और इनसे बातचीत कर रहे हैं अशोक कुमार। तो आइए सुनते हैं ये पूर्व प्रसारित भेंट वार्ता।

0: श्रोताओं, आज के स्वास्थ्य वार्ता कार्यक्रम में हमारे बीच है ENT सह जनरल फिजिशियन डॉक्टर गिरीश चंद्र वर्मा जी। सर, आप आकाशवाणी के कार्यक्रम से पहली बार मुखातिब है, आपको बहुत बहुत स्वागत, साथ ही साथ नमस्कार।
1: नमस्कार सर।
0: सर, संक्षेप में सबसे पहले आप अपना परिचय दें।
1: मेरा नाम डॉक्टर GC वर्मा है, मैं बिहार सरकार में मैं डॉक्टर था, अलग अलग जगह पर पोस्टिंग मेरी हुई जी। लास्ट में मैं इचाक हजारीबाग CSC से परवाई MOIC के पद से रिटायर किया 19 में अक्टूबर में रिटायर किया हूँ। तब से मैं और यहाँ पर बिहार का रहने वाला हूँ, लेकिन घर हजारीबाग में ही बना लिया, यही प्रैक्टिस में कर्म भूमि मेरा यही है, इसलिए मैंने यही प्रैक्टिस शुरू किया। मैं जनरल फिजिशियन हूँ और साथ में ENT का भी कार्य।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, आज का जो हमारा टॉपिक है वो विषय है एक बहुत आम जेंडर समस्या आजकल बनता जा रहा है, क्योंकि शोर शराबा बाजार में बहुत ज्यादा है। शादी ब्याह का अवसर हो तो बड़े बड़े DJ बजते हैं, अगर उसके बगल से आप गुजर जाएंगे तो कभी कभी हार्ट बीट भी बढ़ जाता है और कई लोगों का हियरिंग लॉस भी हो जाता है उस वजह से, खासतौर से। तो ये एक बड़ी आम समस्या बनती जा रही है, हियरिंग लॉस यानी कि बहरापन। तो आज के तारीख में क्या कारण हो सकते हैं और उसके उपाय क्या है, इस विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। पहले कारण पे थोड़ा सा विस्तार से चर्चा की
1: जो है। ये तो आपने ठीक कहा कि ज्यादा DJ और ज्यादा साउंड से भी हियरिंग लॉस होता है, लेकिन आज जनरली जो मुख्य कारण है आपको डायबिटिक है, हाई ब्लड प्रेशर है, चोट लगने के कारण भी हो सकता है, और पुराना जिसे किसी का कान बह रहा है, पुराना बचपन से कान बहते आ रहा है, उसका भी हियरिंग लॉस होने के चांसेस बढ़ जाता है। चोट लगने का भी कारण हियरिंग लॉस हो सकता है, और एजिंग फैक्टर भी एक ठो है। एज जैसे से बढ़ता है उसके बाद भी धीरे धीरे वो टिम्पनिंग मेम्ब्रेन का पोजीशन कम होने लगता है, जिसकी वजह से हियरिंग लॉस होता है। मेन कारण डायबिटिक है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट का प्रॉब्लम है, और कान का इन्फेक्शन हो उसके कारण भी है। आज ज्यादा शोर शराबा जो आपने बताया उसके कारण
0: फैक्स जो है हमारे कानों में जो जमे होते हैं बहुत दिनों से, खासतौर पर उस पर ध्यान नहीं जाता है। तो क्या वो भी एक बहरापन का कारण बन सकता है?
1: बहुत कम चांसेस है, लेकिन है वो भी एक कारण है, लेकिन कम चांसेस है, लेकिन वो भी है एक कारण, लेकिन उसको तो आपको वैक्स या ड्रॉप और जो इन्फेक्शन मैंने कारण हो ज्यादा कारण वो है, डायबिटिक प्लस हार्ट प्लस चोट लगना प्लस कान बहने का मेन कारण होता है।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक्चुअली कान में जो वैक्स जमे होते हैं उन्हें निकालने का क्या तरीका होता है? मेरे उससे आजकल लोग एक हाइड्रोजन प्रोक्साइड लेकिन उसका भी प्रयोग कान के लिए शायद
1: नहीं। हाइड्रोजन प्रोक्साइड तो हम लोग कभी भी यूज नहीं करना चाहिए कान के लिए, कभी यूज नहीं, इसलिए कि हाइड्रोजन प्रोक्साइड में जो जाता है वो टेम्परिंग में बहुत सेंसिटिव एरिया होता है, वो जलने का चांस रहता है। उससे अच्छा है कि हम लोग बहुत लोग डॉक्टर लोग हम लोग जो है सो डिस्टिल वाटर के प्रेशर देकर करते हैं, और दूसरा एक और जो है सो वैक्स को हिसाब से अपने उसको निकाल देते हैं। वो निकालने का तरीका अलग है, सब नहीं निकाल सकते, देहात में भी आजकल देखे हुएगा, बहुत जगह देखिएगा निकाल देता है, चिमटा से निकालता है, कभी कभी टेम्परिंग में टच कर जाने से इंजुरी हो जाता है। उस सावधानी पूर्वक उसको निकाला, सब कोई नहीं निकाल सकता, ट्रेंड आदमी को ही निकालना चाहिए ज्यादा मुश्किल। आप अपने हिसाब से कॉटन से बर्ड से धीरे से निकाल सकते हैं, एडवेक्स या ड्रॉप ये सब देखकर जब डायल्यूट हो जाए, थोड़ा सा मुलायम हो जाए, तो धीरे धीरे करके निकाला जा सकता। वाटर डिस्टिल वाटर से भी स्प्रे करके उसको किया सकता है, और वैक्स या ड्रॉप डालकर 2-4 दिन के बाद वैक्स को जब डायल्यूट हो जाए, थोड़ा सा मुलायम हो जाए, तो अपने घर पर भी बर्ड से आप निकाल सकते हैं, या फिर ट्रेंड डॉक्टर हैं वो निकाल दे।
0: कभी कभी कानों से अचानक देखने में आता है कि मवाद टाइप से कुछ निकल रहा है, जख्म की संभावना भी बनती है, क्या भी उसका वजह क्या है, और क्या वो भी एक हियरिंग लॉस का कारण बन सकता है?
1: हाँ, वो भी हियरिंग लॉस, ओटाइटिस मीडिया उसको बोलते हैं। और कभी कभी क्रोनिक होता है, जो बहुत पुराना चला आ रहा है, धीरे धीरे बीच बीच में दवाई खाने से बंद हो गया, या ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक्स इस तरह जो जनरली लोग ठंडा पानी पीते हैं, वो धीरे धीरे इन्फेक्शन हो जाता है, कान में ही चला जाता है, कभी कभी देखे हुए गला में थोड़ा शोर हो जाता है, तो उसके लिए भी ठंडा पानी से परहेज करना चाहिए, एकदम चिल्ड पानी को नहीं पीना चाहिए। आप ट्रीटमेंट तो अलग अलग है, आप ओटाइटिस कान का बहरापन है या डिस्चार्ज हो रहा है, उसके लिए अलग एंटीबायोटिक है, देखने को पड़ेगा। मान लीजिए ज्यादा पुराना हो गया तो फिर ऑपरेशन करना पड़ता है, लेकिन ऑपरेशन कितना सक्सेस होता है बहुतों को देखते हैं हम लोग, कभी सक्सेस होता है कभी नहीं होता है, चांसेस 40-60 का रहता है कि चांस बहरापन ठीक भी हो सकता है नहीं भी हो सकता।
0: अच्छा, अब हेयरिंग लॉसेस के आपके पास केसेस अगर आते हैं और मान के चला जाए कि कान में जैसे जख्म है और वैक्स भी भरा हुआ है, तो फिर पहले उस जख्म को
1: पहले हम लोग जख्म को ठीक करते हैं
0: जी।
1: और जब जख्म एकदम सूख जाता है देख लेते हैं हम लोग, देखने के बाद लगता है कि जख्म सूख गया तो धीरे धीरे करके उसको वैक्स को निकालने की कोशिश।
0: तो उसके फिर मरीज ठीक हो जाते हैं?
1: हाँ, मरीज करीब करीब।
0: और क्या इस तरीके का अगर सावधानियां है, इस तरीके का अगर केसेस आता था और क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए लोगों को घर में?
1: पहला है कि चिल्ड पानी नहीं पीना चाहिए
0: जी।
1: और कान में गरम तेल डाल लेता है उस सबको नहीं डालना चाहिए
0: जी।
1: कभी कभी सुनते हैं सरसों तेल को लोग गरम करके डाल कान में डाल लेता
0: हाँ,
1: है
0: हाँ।
1: तो वो तो और इन्फेक्शन का कारण बन जाता है।
0: गरम करके ठंडा
1: करके लोग डाल लेता है हाँ। कभी कभी हल्का गरम करके डालता है, नॉर्मल मतलब हल्का गरम रहता है वो डालता है लोग, तो क्या होता है टेम्परिंग में और इफेक्ट पड़ता है और उससे जलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो तो बहुत सेंसिटिव मेम्ब्रेन रहता है तो उसको दिक्कत करता है।
0: कान के पर्दे आमतौर पर बहुत सेंसिटिव होते हैं, लोग उस समझते नहीं है कि अंदर क्या कोई भी खुरदरा चीज हो मिले माचिस का
1: तिल्ली उससे नहीं करिए, उसमें ऑक्साइड रहता है माचिस तिल्ली जुल्ली तो दम नहीं करें। बर्ड से आप ज्यादा ज्यादा कर सकते हैं, बर्ड से बहुत रगड़ना नहीं है, कभी कभी कॉटन बर्ड जो होता है वो भी रगड़ के।
0: और डॉक्टर साहब इस तरीके के जो भी मरीज आते हैं तो उन्हें खान पान में भी कुछ
1: खान पान में हम लोग कहते हैं कि हमारा अपना अपना रहता है कि आप ज्यादा शुगर देख लें, शुगर कंट्रोल करके रखें, यदि चीनी की बीमारी है शुगर कंट्रोल करके रखें, और हार्ट की बीमारी है तो उसके प्रिकॉशन लें अपना। अदर्स जो भी आपको लगता है कि ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर के लिए आप दवाई रेगुलर खाएं, उसका भी इफेक्ट पड़ता है। हाई ब्लड प्रेशर होने से कान, आप कभी सुने हुए कि ब्लीडिंग कान से हो जाती है, नाक से ब्लीडिंग हो जाती है, तो इस सब को परहेज करना है, अपना रेगुलर दवाई खाना है, बीपी ओपी रेगुलर चेक कराना है, ब्लड शुगर रेगुलर चेक।
0: अच्छा, ये हियरिंग लॉस जो है ये क्या ये पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाले?
1: ऐसा नहीं, तो एजिंग फैक्टर है धीरे धीरे एज में, हर आदमी की एज में उम्र होने के बाद, इसलिए इसका ये बोलते हैं हेरिडिटरी नहीं,
0: हेरिडिटरी रोग
1: नहीं।
0: तो श्रोताओं, ये थे डॉक्टर जीसी वर्मा, जिनके माध्यम से आज हमने जाना कि हियरिंग लॉस यानी कि अगर बहरापन है तो उसे किस प्रकार से ठीक किया जाए, और इसके बारे में काफी संक्षेप में डॉक्टर साहब ने काफी कुछ हमें बता दिया है। और उम्मीद यही है कि आप सब अगर हियरिंग लॉस की परेशानी से जूझ रहे हैं तो आप डॉक्टर साहब से संपर्क करें और जो बातें इन्होंने कहा है उस पर अमल करेंगे, और निस्संदेह रूप से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपकी बीमारी स्वतः ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब, आकाशवाणी के कार्यक्रम में पहली बार आप मुखातिब हुए और इतनी अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बात कर
2: बहरापन कारण लक्षण और बचाव, इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर गिरीश चंद्र वर्मा जी, जीसी वर्मा जी, और इनसे बातचीत कर रहे थे अशोक कुमार। तो श्रोताओं, इसके साथ ही अब आज का स्वास्थ्य वार्ता का ये सफर यहीं पर ख़त्म होता है। अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

आकाशवाणी का यह हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। 7:31:22 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत संगीत। गैर फिल्मी के गीतों के इस कार्यक्रम में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

हिमेश रेशम या गेश्वर में आप सुन रहे थे गैर फिल्मी रचना। गैर फिल्मी एल्बम के गीतों का कार्यक्रम की संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से।

श्रोताओं, सोनू निगम की गाए इसी गैर फिल्मी रचना के साथ अब आज का गैर फिल्मी एल्बम के गीतों का कार्यक्रम की संगीत समाप्त होता है। आकाशवाणी का यह हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज के आज का अंक हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे और 8:30 पर प्रादेशिक समाचार होगा हमारे रांची केंद्र से। तो समाचारों के लिए कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने स्पष्ट किया, उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल भुगतान निशुल्क रहेगा। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए। झारखंड विद्यार्थी विरोध प्रदर्शन नेता देवेंद्र नाथ महतो तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती। विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज के बाद आज भाजपा का बंद का आह्वान। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 132 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की और नाइजीरिया के लेगोस में राष्ट्रमंडल अंडर 23 तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 4 स्वर्ण सहित 17 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण तंत्र को मजबूत करना, अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में डिजिटल भुगतान पर कोई कर या लेन देन शुल्क नहीं लगाया गया है।
4: छोटे मर्चेंट्स और किराना स्टोर्स हमारे इंक्लूसिव फाइनेंशियल स्कीम्स और सरकार के ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है फाइनेंशियल इंक्लूजन का। स्मॉल मर्चेंट्स रिमेन सेंट्रल टू यूपीआई इंक्लूसिव ग्रोथ। उनके ऊपर हम कोई एमडीआर लगाने वाले नहीं है, इरादा नहीं है, इनेबलिंग प्रोविजन का हम ध्यान रखना है।
3: गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 चर्चा और पारित करने के लिए पेश करेंगे। राज्यसभा में अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा होगी। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए हैं।
5: गृह मंत्रालय की अधिसूचना में 9 जमीनी बंदरगाह और 2 हवाई अड्डे शामिल हैं। इनमें भोपाल और तिरुपति के हवाई अड्डे और अटारी व अगरतला के जमीनी बंदरगाह शामिल हैं। भारत में लगभग 95% ई वीजा आवेदनों को 72 घंटे से भी कम समय में मंजूरी दे दी जाती है। अब ई वीजा वाले विदेशियों के प्रवेश के लिए उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों की संख्या बढ़कर 88 हो गई है। इनमें 37 हवाई अड्डे, 38 समुद्री बंदरगाह और 13 जमीनी बंदरगाह शामिल है। समाचार कक्ष से अमीषा।
3: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल पर उत्तम गुणवत्ता के सही कीमत वाले उत्पाद की सही समय पर खरीद होती है। उन्होंने कल नई दिल्ली में जेम पोर्टल के 10 वर्ष पूरे होने के उत्सव में ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि जेम पोर्टल शुरू होने से पहले सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा था, खरीद में पारदर्शिता नहीं थी और शासन की कमी थी। उन्होंने कहा कि जेम पोर्टल ने देश भर के सभी लोगों के लिए सरकारी खरीद में हिस्सा लेने के लिए निष्पक्ष और समान अवसर उपलब्ध कराए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड की राजधानी रांची में कल विद्यार्थियों के नेतृत्व में विधानसभा मार्च के दौरान छात्र आंदोलन के नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ब्लड शुगर लेवल में गिरावट के बाद चिकित्सकों ने श्री महतो की हालत गंभीर बताई है।
6: कल करीब 10 घंटे तक चले विधानसभा घेराव के दौरान प्रदर्शनकारी विधानसभा गेट नंबर 1 के पास पहुंच गए। उन्हें हटाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन, आंसू गैस और लाठी चार्ज का इस्तेमाल किया। पिछले 9 दिनों से अनशन पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की विधानसभा घेराव के दौरान तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें रांची के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस कार्रवाई के विरोध में बीजेपी ने आज राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है और कथित परीक्षा अनियमितताओं की सीबीआई जांच की अपनी मांग दोहराई है। रांची के उपायुक्त नाथ भजंत्री ने लोगों से आज के बंद को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की है। प्रशासन ने रांची के प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
3: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार दिल्ली में हुए प्रदर्शन और देशभर में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन तथा इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में श्री रिजिजू ने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं।
7: मैं बहुत साफ शब्दों से सरकार के ओर से कहना चाहता हूं, सरकार पूरा छात्र का मामले को लेकर के चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। गृह मंत्री जी विस्तार से जवाब देने के लिए तैयार है। मैंने पिछले एडवाइजरी में भी सार्वजनिक महासभा के सामने में कह दिया है कि सरकार छात्र को लेकर के पूर्ण रूप से विस्तार से चर्चा के लिए तैयार है।
3: पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के भूकंप के कारण 132 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। कई लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की खबर है। कोलंबिया के राष्ट्रपति एबेलार्डो दे लास प्रिएजा ने राहत कार्यों के लिए धन तेजी से जारी करने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी है। भूकंप का केंद्र राजधानी बोगोतो से लगभग 400 किलोमीटर पश्चिम में चोको क्षेत्र के सैन होस डेल पालमार में था। भूकंप के झटके पड़ोसी देशों इक्वाडोर और पनामा में भी महसूस किए गए, हालांकि वहां बहुत कम नुकसान की खबर है। हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान लगाया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि हिमाचल प्रदेश के अधिकतर भागों में कल रात से ही रुक रुक कर वर्षा जारी है।
8: हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण 106 सड़कें अभी भी अवरुद्ध हैं, जबकि 66 बिजली ट्रांसफार्मर और 19 पेयजल योजनाएं प्रभावित हैं। हालांकि संबंधित विभागों के कर्मचारी इन व्यवस्थाओं को बहाल करने में जुटे हैं। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आगामी 24 घंटों के दौरान 3 जिलों कांगड़ा, सिरमौर व मंडी में भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट, जबकि 6 अन्य जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, शिमला व सोलन में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने भारी वर्षा की आशंका के चलते लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
3: देश भर में हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन हो रहा है। उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों में हर घर तिरंगा अभियान से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
9: अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश अंसारी ने निर्देश दिए हैं कि मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों और युवाओं को इस अभियान में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर जिले में तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को श्रद्धांजलि है और लोगों से अपने घरों में गर्व और सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराने का आग्रह किया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
3: राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के 119वें बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। बंगाल के क्रांतिकारी खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को अंग्रेजों ने फांसी दी थी। इस युवा क्रांतिकारी के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए देशभर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। और अब खेल समाचार के साथ हैं सरफिरोजी। नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल अंडर 23 तलवारबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक सहित 17 पदक जीते। पुरुषों की सेबर स्पर्धा में निखिल वाघ ने स्वर्ण और लक्ष्य बटसेर ने रजत पदक हासिल किया। अश्विनी आर्य और लैशराम मोरांबा ने कांस्य पदक जीते। पुरुषों की फाइल स्पर्धा में तेजस पाटिल ने रजत और हिमांश सनासम ने कांस्य पदक प्राप्त किया। पुरुषों की एपी स्पर्धा में लोकेश विमानी ने रजत और शौर्य अश्विनी तथा गॉडविन एंकबेस ने कांस्य पदक हासिल किया। महिला वर्ग में जॉयस अशिता ने फाइल स्पर्धा में स्वर्ण और कनाग लक्ष्मी ने रजत पदक प्राप्त किया। प्राची लोहान ने एपी स्पर्धा का स्वर्ण और निवेद्या नायर तथा अनुप्रिया ने कांस्य पदक हासिल किए। सेबर स्पर्धा में जेफरलिन ने स्वर्ण और आखिरी शर्मा ने रजत तथा श्रेया गुप्ता ने कांस्य पदक जीता। उधर FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होंगे। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त के बीच बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में आयोजित की जाएगी। कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कल शाम तक 4,43,78,000 से अधिक श्रद्धालु पवित्र गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्यों के लिए रवाना हो चुके थे। सावन शिवरात्रि के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव को जल अर्पित कर कांवड़ यात्रा का समापन कर रहे हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
10: धन्यवाद प्रियंका। झारखंड में युवाओं का अगस्त क्रांति मार्च। राज्य में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ विद्यार्थियों के उग्र होते आंदोलन को अमर उजाला सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, पहली बार विधानसभा की चौखट तक पहुंचे आंदोलनकारी। दैनिक जागरण के शब्द हैं, लाठी चार्ज और आंसू गैस के गोलों के बीच विद्यार्थियों ने घेरी विधानसभा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सरकार ने कहा विद्यार्थियों के मुद्दे पर चर्चा को तैयार, गृहमंत्री अमित शाह देंगे जवाब। वही अमर उजाला ने अपने संपादकीय में लिखा है, पूरे मॉनसून सत्र के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच बढ़ते मतभेदों ने संसद की कार्यवाही को जिस बुरी तरह से प्रभावित किया है वे वाकई चिंताजनक है। सभी को समझना होगा कि संसद का समय राष्ट्रीय संपत्ति है, उसे गंवाना किसी पक्ष के लिए गर्व का विषय नहीं हो सकता। जीन्स पहनना लड़कियों की अपनी पसंद, दखल का किसी को अधिकार नहीं। दिल्ली उच्च न्यायालय के इस अहम फैसले को पंजाब केसरी सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की खबर है, अमेरिका में H-1B और L-1 वीजा धारकों को वीजा विस्तार के लिए अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा। नए नियम 9 सितंबर से लागू होंगे। हॉर्मुस जलमार्ग की नाकेबंदी से मंडरा रहा पर्यावरणीय खतरा। जनसत्ता ने लिखा है, फारस की खाड़ी में फरवरी से खड़े हैं 1,500 से अधिक जहाज। जहाजों के बाहरी हिस्सों पर समुद्री जीवों और वनस्पतियों की परतें हो रही जमा। बंदूक छोटी, हुनर चमका। राजस्थान पत्रिका ने अपने छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के सम्मेलन में सुकमा जिले की आत्मसमर्पण कर चुकी 9 महिला नक्सलियों की पारंपरिक हथकरघा वस्त्र पहनकर रैंप वॉक करने की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। पत्र की एक और खबर ध्यान खींचती है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद रूस के अंतरिक्ष यात्रियों ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम बधाई दी। संदेश में भारत के गगनयान मिशन का जिक्र करते हुए भारत रूस की दोस्ती की सराहना की।
3: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

0: enabling e-visa holder foreigners to enter India. Jharkhand student protest leader Devendranath Mahato hospitalized after his health deteriorates. BJP calls for Jharkhand bund today over lathi charge on students. At least 132 people killed following 7.4 magnitude earthquake in western Colombia. IMD issues orange alert for heavy rainfall in Himachal Pradesh and East Rajasthan today. And India wins 17 medals, including 4 gold at Under 23 Commonwealth Fencing Championship in Lagos, Nigeria. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: श्रोताओं, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 8:30 हुए हैं। आप थोड़ी देर में सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, उससे पहले लेते हैं छोटा सा विराम।
2: श्रावणी मेले का पावन त्योहार, हर दिल में गूंजे बम बम की पुकार, हर हर महादेव जय भोलेनाथ।
3: श्रावण मास के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का संदेश।
4: जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड के इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर, दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। धन्यवाद। जोहार, जय भोले।
3: श्रावणी मेला में लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर तक की यात्रा करते हैं। आस्था, सेवा और अध्यात्मिक का ये अनोखा संगम आपको भी दे रहा है निमंत्रण। इस सावन आइए झारखंड और बनिए श्रावणी मेला का हिस्सा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा और आजसू का आज झारखंड बंद, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों को परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाने का दिया भरोसा, विपक्ष पर लगाया राजनीति करने का आरोप। लातेहार से पीएलएफआई उग्रवादी गिरफ्तार, दलमा के जंगलों से हथियारों का जखीरा बरामद और आज चाईबासा में होगा माओवादियों का आत्मसमर्पण। रांची मौसम केंद्र ने आज राजधानी रांची सहित राज्य के 14 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश और वज्रपात की जताई आशंका, अलर्ट जारी। और रांची में आयोजित डूरंड कप फुटबॉल में एससी दिल्ली की धमाकेदार जीत, भारतीय वायुसेना को 7-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में किया प्रवेश। और अब समाचार विस्तार से। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं को लेकर कल राजधानी रांची में करीब 10 घंटे तक छात्रों का जोरदार आंदोलन चला। विधानसभा घेराव के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में आज भाजपा का राज्यव्यापी बंद जारी है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: राजधानी रांची की सड़कें कल शाम उस वक्त अखाड़ा बन गईं जब विधानसभा घेराव के बाद छात्रों और पुलिस के बीच नोकझोंक हो गई। दिन भर विधानसभा के बाहर जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थियों का जोरदार प्रदर्शन जारी रहा। शाम को प्रदर्शन समाप्त होने के बाद लौट रहे छात्रों की पुलिस से भिड़ंत हुई। कथित पत्थरबाजी और नारेबाजी के बाद पुलिस ने बल प्रयोग किया। भगदड़ और लाठीचार्ज में कई छात्रों के घायल होने की सूचना है। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो की भी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें इलाज के लिए रांची सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद रांची जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। प्रशासन वीडियो फुटेज खंगाल रहा है ताकि प्रदर्शन के दौरान माहौल बिगाड़ने वाले लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके।
2: जितने भी छात्र इसमें आंदोलनरत है उन्होंने अपना संयमता का परिचय दिया। पुलिस भी विधि व्यवस्था को नियंत्रण में रखने के लिए और किसी तरह का कोई भी दुर्घटना न हो उसको बनाने के लिए उन्होंने अपना कम से कम बल का प्रयोग किया और असामाजिक तत्व जो थे उन्होंने उकसाने को प्रयास किया। अनुरोध है कि उनको चिन्हित करें और पुलिस भी उनको चिन्हित करने की आगे की कार्रवाई करेगी।
1: घटना के बाद झारखंड की सियासत भी गर्मा गई है। छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में भारतीय जनता पार्टी और आजसू पार्टी ने आज झारखंड बंद का आह्वान किया है। बंद सुबह 8 बजे से प्रभावी रहेगा। हालांकि आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं के साथ साथ सावन के मद्देनजर देवघर जाने वाले कांवरियों को बंद से मुक्त रखा गया है। आजसू प्रमुख सुदेश कुमार महतो आज रांची के मोराबादी मैदान स्थित बापू वाटिका में धरने पर बैठेंगे।
3: भारतीय जनता पार्टी 11 तारीख को प्रातः 8 बजे से संध्या देर रात्रि तक झारखंड बंद बुला रही है, लेकिन आवश्यक सेवाएं वो मुक्त रहेंगी। साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं हो, जो अन्य सेवाएं हैं, सारी सेवाएं बंदी से प्रभावित नहीं होंगी। मैं कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूँ वैसे लोगों को सहयोग करने का काम करें।
1: इधर चौतरफा घिरी हेमंत सोरेन सरकार अब डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों को भरोसा दिलाया है कि परीक्षा प्रणाली में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी और उनकी मांगों को गंभीरता से सुना जाएगा। मुख्यमंत्री ने युवाओं से राजनीतिक साजिशों से बचने और शांति बनाए रखने की अपील की है। अब नजर इस बात पर है कि मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद छात्रों का आंदोलन किस दिशा में जाता है और आज का झारखंड बंद सरकार के लिए क्या नई चुनौती लेकर आता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: इस बीच ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर भाजपा पर तीखा पलटवार किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा छात्रों के वास्तविक मुद्दों का राजनीतिकरण कर रही है और अपने फायदे के लिए युवाओं के आंदोलन को भटकाने की कोशिश में जुटी है।
4: भाजपा की क्या भूमिका है, किस तरीके से छात्रों के मुद्दों को विषय से भटकाने के लिए उसका राजनीतिकरण किया गया है और राजनीति की वजह से छात्रों का जो मेन मुद्दा है या उनके कॉज है वो किसी तरह से प्रभावित न हो, राज्य सरकार की यही मंशा है। और छात्रों से आह्वान करना चाहते हैं कि आप लोगों के समाधान के लिए सरकार तैयार है।
0: झारखंड में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। राज्य सरकार ने जिला मुख्यालयों में ध्वजारोहण के लिए मंत्रियों की सूची जारी कर दी है। इसके तहत पलामू में राधा कृष्ण किशोर और दीपक बिरवा जबकि जामताड़ा में इरफान अंसारी तिरंगा फहराएंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news@air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।

0: श्रावण मास के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का संदेश।
1: जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड के इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। धन्यवाद, जोहार, जय भोले।
0: श्रावणी मेला में लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर तक की यात्रा करते हैं। आस्था, सेवा और अध्यात्मिक का ये अनोखा संगम आपको भी दे रहा है निमंत्रण। इस सावन आइए झारखंड और बनिए श्रावणी मेला का हिस्सा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: रामगढ़ व्यवहार न्यायालय में झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने मुख्य प्रवेश द्वार और लिटिगेंट शेड की आधारशिला रखी, साथ ही पार्किंग शेड और कोर्ट रूम में माइक साउंड सिस्टम का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि न्याय प्रक्रिया को सुगम और प्रभावी बनाने के लिए अदालतों में बेहतर बुनियादी सुविधाएं होना बेहद जरूरी है।
3: लिटिगेंट्स सिटिंग का इनॉग्रेशन हुआ, उसके बाद लॉयर्स का पार्किंग शेड ये भी इनॉग्रेट हुआ। साथ में हमारे यहाँ माइक्रोफोन लगाया गया जिससे आर्गुमेंट में क्लियरिटी रहेगा। उसके बाद मेन गेट का सेंटर कुछ पॉजिटिव होना चाहिए तो उसका भी इनॉग्रेशन हुआ। तो ये सारे समझिए कि अल्टीमेटली लिटिगेंट के हेल्प के लिए हुआ है।
2: राज्य में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का बड़ा अभियान जारी है। लातेहार पुलिस ने कस्तूरबा विद्यालय के संवेदक से लेवी वसूलने की हिंसक योजना को नाकाम करते हुए पीएलएफआई नक्सली लालदेश्वर यादव को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं सरायकेला के सिकम्बरा और दलमा जंगलों से भारी मात्रा में अत्याधुनिक हथियार, राइफलें और आईईडी बरामद की गई हैं। इस बीच सुरक्षा बलों के बढ़ते दबाव के कारण आज चाईबासा पुलिस केंद्र में एक महिला उग्रवादी सहित कई अन्य माओवादी आत्मसमर्पण करेंगे। मौसम। रांची मौसम केंद्र ने आज राजधानी रांची, खूंटी, गुमला, रामगढ़ और बोकारो सहित राज्य के 14 जिलों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने इस दौरान येलो अलर्ट जारी किया है। रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में खेले गए 135वें डोरंट कप फुटबॉल मुकाबले में एससी दिल्ली ने भारतीय वायुसेना को 7-1 से हरा दिया है। इस शानदार जीत के साथ एससी दिल्ली ने लगातार तीसरी जीत दर्ज की और 9 अंकों के साथ ग्रुप सी में शीर्ष पर रहते हुए क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं को लेकर छात्रों के आंदोलन की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, विधानसभा पर छात्र सैलाब, रण क्षेत्र बनी रांची। प्रभात खबर की सुर्खी है, परीक्षा घोटाले में पूर्व जेपीएससी अध्यक्ष खियांगते को सीआईडी ने किया गिरफ्तार। दैनिक जागरण लिखता है, सीएम ने की छात्रों से शांतिपूर्ण विधानसभा मार्च की सराहना, कहा उनकी आवाज का सम्मान करेगी सरकार। हिन्दुस्तान के शब्द हैं, लाल किले से पहली बार वंदे मातरम गाया जाएगा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों

आकाशवाणी का यह हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में 8:46 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी।

कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी सुन रहे सभी श्रोताओं को अशोक का नमस्कार। शुरुआत कर रहे हैं बचपन फिल्म के इस खूबसूरत से गीत के साथ, जिसे गाया मोहम्मद रफी ने और शानदार अभिनय किया था पर्दे पर संजीव कुमार ने।

0: दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

दोस्तों, ऐसे खूबसूरत गीत के साथ जिसे गाया मोहम्मद रफ़ी ने, अब आज का मॉर्निंग मेलोडी का सफर यहीं पे ख़त्म होता है। अनुमति दीजिए अशोक को नमस्कार। मगर चलते चलते आपको बता दें, आज के इस कार्यक्रम में आपने जिन फिल्मों के नाम गीत सुने उनके नाम इस प्रकार हैं, बचपन, भाभी और आया सावन, झूम के।

श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी, आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, सुबह के 9 बजने को हैं। अब विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम होंगे हमारे मुंबई केंद्र से बस कुछ ही पलों में।

मुबारक फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मीका सिंह और साथियों की आवाजें थी कुमार के बोल थे और गौरव रोशन का संगीत था। आज वर्ल्ड स्टील पैन दिवस है, विश्व स्टील पैन दिवस हर साल 11 अगस्त को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। स्टील पैन दुनिया का अनोखा एक वाद्य यंत्र है जिसे पैन या स्टील ड्रम भी कहते हैं। इस वाद्य यंत्र के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व, इसकी परंपरा को मान्यता देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। स्टील पैन की उत्पत्ति कैरेबियाई सागर में स्थित त्रिनिदाद और टोबैगो में हुई और इसे 20वीं सदी में विकसित किया गया। ये वाद्य यंत्र स्टील के ड्रम से तैयार किया जाता है और इसकी ध्वनि में एक अलग ही मिठास और ऊर्जा महसूस होती है। इसकी खासियत यह है कि साधारण दिखाई देने वाली धातु को कलाकार अपने हुनर से, अपनी कला से मधुर संगीत में बदल देते हैं। स्टील पैन का विकास कैरेबियाई और वहां के रचना धर्मिता से जुड़ा है। धीरे धीरे इसकी धुनें द्वीपीय देश त्रिनिदाद और टोबैगो की सीमाओं से निकलकर दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंची। आज स्टील पैन का इस्तेमाल पारंपरिक और आधुनिक संगीत में भी किया जाता है। इस दिवस को मनाने का संदेश यह है कि संगीत की कोई सीमा नहीं है, अथाह है संगीत, सागर की तरह, नदी की तरह, धरती की तरह, आकाश की तरह। एक ध्वनि पूरी दुनिया के दिलों को जोड़ता है। ये तमाशा फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहित चौहान की आवाज में। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर चित्रलोक कार्यक्रम में समय सुन रहे हैं।

0: मोहित चौहान की आवाज में तमाशा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। इरशाद कामिल के बोल थे, ए आर रहमान की तर्ज थी।
1: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
2: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं थी।
1: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
2: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
1: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
2: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
1: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
3: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
4: सखी सहेली।
3: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी, यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
5: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों।
3: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
6: मैं अगले दिन आशुतोष गुवारिकर से मिलने गया,

बागी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें थी मोनाली ठाकुर और मीत ब्रदर्स के कुमार के बोल थे। मीत ब्रदर्स का संगीत था।

फिल्म आरआरआर का ये गीत आप सुन रहे थे। आवाजें थी विशाल मिश्रा, राहुल सिपलीगुंज की, रिया मुखर्जी ने बोल लिखे थे, एमएम क्रीम का संगीत था।

हाफ गर्लफ्रेंड फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। ऐश किंग और शाशा तिरुपति की ये आवाजें थीं। संगीतकार थे तनिष्क बागचे। इस गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त करने की सविता सिंह को इजाजत दीजिए। आप स्वस्थ और समृद्ध रहिए। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था, एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं गुजरे जमाने के दिग्गज अभिनेता पी जयराज की।

0: पी जयराज का पूरा नाम था पैडी जयराज। आपको ये बता दें कि उनका जन्म 28 सितंबर 1909 को करीमनगर में हुआ था, जो उस जमाने में हैदराबाद स्टेट का हिस्सा था। पैडी जयराज जानी मानी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और लेखिका सरोजिनी नायडू के संबंधी थे। उन्होंने अपनी जीवन यात्रा की शुरुआत की थी फिल्मों में सन 1929 में मूक फिल्मों के जरिए। आज के इस कार्यक्रम में हम विस्तार से आपको बताएंगे पी जयराज के बारे में। पी जयराज के करियर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उन्होंने मूक फिल्मों से लेकर मॉडर्न टाइम तक अनेक फिल्मों में काम किया। हिंदी सिनेमा के पर्दे पर सबसे ज्यादा राष्ट्रीय और ऐतिहासिक नायकों की भूमिका निभाने का कीर्तिमान पैडी जयराज के नाम है। यहां आपको ये भी बता दें कि संगीतकार नौशाद जैसे कलाकारों को मौका देने का श्रेय भी पी जयराज को जाता है। 28 सितंबर 1909 को निजाम स्टेट के करीमनगर में जन्मे पी जयराज का पूरा नाम था पैदी पाटी जयरूला नायडू। ये उनका आंध्र का नाम था। हैदराबाद में पले बढ़े, इसलिए उर्दू और दक्कनी पर उनकी पकड़ बहुत अच्छी थी और आगे चलकर ये उनके करियर में बहुत ज्यादा काम आई। आपको बता दें कि उनके पिता एक सरकारी दफ्तर में अकाउंट्स देखा करते थे। पी जयराज की शुरुआती तालीम हैदराबाद के रोमन कैथोलिक स्कूल में हुई और उसके बाद 3 साल के लिए उन्हें एक बोर्डिंग हाउस में पढ़ाया गया, वुड नेशनल कॉलेज के बोर्डिंग हाउस में, जहां उन्होंने संस्कृत की शिक्षा ली। इसके बाद पी जयराज पढ़े हैदराबाद के निजाम हाई स्कूल में। बीएससी करने के बाद उनकी तमन्ना थी कि वो नेवी में जाएं, लेकिन उनके बड़े भाई सुंदर राज इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए उन्हें लंदन भेजना चाहते थे। पी जयराज की खुद की भी यही इच्छा थी कि वो इंग्लैंड जाकर अपनी आगे की पढ़ाई करें, पर परिवार ने उन्हें इस बात की इजाजत नहीं दी। अब हुआ ये कि सन 1929 में पी जयराज अपने घर से विद्रोह करके मुंबई आ गए। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 19 साल की थी। दरअसल मुंबई में उनके हैदराबाद का एक दोस्त जे हॉस्पिटल में हॉस्टल में रहकर डॉक्टरी पढ़ रहा था। वो उसके पास आकर रुक गए। बड़ी मुश्किल से हॉस्टल में 1 महीने रहने की व्यवस्था हुई। पी जयराज को समुन्द्र से बे इंतहा प्यार था, बस इसीलिए उन्होंने डॉकयार्ड यानी बंदरगाह में नौकरी कर ली। वहां दोस्त बने रंगिया के सहयोग से उन्होंने पोस्टर रंगने का काम भी किया। उन्हीं पोस्टरों की बदौलत पी जयराज पहुंच गए फिल्में बनाने के स्टूडियो तक। चूंकि बहुत ही मजबूत कदकाठी, बहुत ही नफासत से भरी भाषा, बहुत गजब का फिजीक, संवाद अदायगी में बड़ी कुशलता, तेलुगु थिएटर में काम करने का अनुभव और इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये कि तलवार चलाने की कला तक उन्हें आती थी। जाहिर है कि फिल्म स्टूडियो में पहुंचते ही फिल्में बनाने वाले निर्माताओं को लगा कि ये लड़का तो बहुत काम का है। ये वो जमाना था जब डुप्लीकेट नहीं हुआ करते थे और चाहे घोड़े पर दौड़ना हो, उछल कूद मचानी हो, चलती ट्रेन पर चढ़ जाना हो, ये सारे कारनामे अभिनेता खुद किया करते थे। ये वो दौर था जब एक जाबाज हीरो की निर्माताओं को सख्त जरूरत थी। फिल्म स्टूडियोज में आते ही जयराज को काम मिलने लगा। 30 का दशक था, भारत अंग्रेजों का गुलाम था और स्वदेशी आंदोलन जोरों पर था। सन 1932 में पी जयराज ने स्वदेशी आंदोलन में भी हिस्सा लिया। मामा वरेरकर उनके आकर्षक शरीर को देखकर बहुत ही प्रभावित हुए और पी जयराज को उन्होंने अपनी पहली फिल्म में नायक की भूमिका के लिए चुन लिया। पर हुआ ये कि ये फिल्म बन न सकी। इस तरह से पी जयराज के करियर की गाड़ी आगे बढ़ती उससे पहले ही ब्रेक लग गया। पर पी जयराज को तो मुंबई में टिके रहना था। उन्होंने मुंबई के भाईखला में एक स्टूडियो में निर्देशक नगेंद्र मजूमदार के साथ सहायक निर्देशक की नौकरी ले ली। ये एक बड़ा मौका था क्योंकि यहां पी जयराज ने न केवल सहायक निर्देशक के काम को समझा बल्कि एडिटिंग और उसके अलावा सिनेमेटोग्राफी को भी समझा। आगे चलकर पी जयराज फिल्मों का निर्देशन भी करने लगे। बतौर निर्देशक पी जयराज की पहली फिल्म थी प्रतिभा, जिसकी प्रोड्यूसर थी देविका रानी। अभिनेता के रूप में मजूमदार ने पी जयराज को अपनी फिल्म जगमगाती जवानी में अवसर दिया, जिसके नायक माधव काले थे। नायक को घुड़सवारी और फाइटिंग नहीं आती थी, इसलिए पी जयराज ने मास्क लगाकर नायक के बदले में सारे स्टंट किए। ये मराठी फिल्म साहित्यकार मामा वेरेरकर द्वारा निर्मित स्मार्कलिंग यूथ पर आधारित थी। इसमें जैबुन्निसा के साथ पी जयराज की जोड़ी काफी कामयाब रही। यंग इंडिया पिक्चर्स ने पी जयराज को 35 रुपए महीने के तनख्वाह, खाने और चार लोगों के साथ गिरगांव में रहने की सुविधा देते हुए नौकरी पर रख लिया। आगे चलकर पी जयराज को भारत और जर्मनी के संयुक्त रूप से सहयोग से बन रही फिल्म शिकारी में एक्टिंग करने का मौका मिला। इसकी शूटिंग हैदराबाद में हुई थी। इसके बाद उन्होंने पतित पावन फिल्म में काम किया और यहां से आगे पी जयराज का करियर तेजी से बढ़ा। सुरैया के साथ उन्होंने 7 फिल्में की, हमारी बात, सिंगार, अमर कहानी, राजपूत वगैरह, ललिता पवार, शकीला, देविका रानी, नूरजहां और सितारा देवी जैसी अभिनेत्रियों के साथ पी जयराज ने काम किया।
1: राजू, ये क्या हालत बना रखी है तुमने? जरा अपनी तरफ तो देखो, कैसा फूल सा चेहरा तुमने खाक में मिला दिया है। भगवान ने जीवन इसलिए नहीं दिया है कि इसे रो पीट कर काटा जाए। हम जो कुछ चाहते हैं सब तो हमें नहीं मिल जाता। मैं तुमसे कम दुखी नहीं हूं राजू। जिस तरफ निकलता हूं लोग उंगलियां उठाते हैं और कहते हैं ये पापी है, इसने एक मासूम लड़की को झूठा सहारा देकर कहीं का ना रखा, ये उसका कातिल है। ये सब कुछ हमें और कौशल्या को सुनना पड़ता।
0: यहाँ सुनते हैं फिल्म सिंगार का ये गाना।

सन 1931 में आलम आरा के साथ बोलती फिल्मों का दौर शुरू हुआ तो पी जयराज ने बदलते हुए दौर के मुताबिक खुद को ढाल लिया था। उनकी पहली बोलती हुई फिल्म थी शिकारी। 1932 में प्रदर्शित इस फिल्म में पी जयराज ने एक बौद्ध भिक्षु की भूमिका निभाई थी। जब फिल्में बोलने लगी तो अभिनेताओं को अपने गाने खुद गाने पड़ते थे। पी जयराज को इस दौर में गाना भी सीखना पड़ा था। फिल्म हमजोली में पी जयराज और मलिका तरन्नुम नूरजहां की जोड़ी नजर आई थी। बॉम्बे टॉकीज के मालिक हिमांशु रॉय ने अपनी कंपनी की फिल्म भाभी के लिए पी जयराज को साइन कर लिया और इस तरह मुंबई में पी जयराज की कामयाबी का परचम लहराने लगा। फ्रेंड्स ऑस्टिन फिल्म भाभी के निर्देशक थे। ये फिल्म बेहद कामयाब रही थी। 80 हफ्ते तक कलकत्ता के एक थिएटर में ये फिल्म चलती रही थी।

आपको बता दें कि पी जयराज ने मराठी और गुजराती फिल्मों में भी काम किया था। वैसे पी जयराज ने अपने करियर में 300 से ज्यादा फिल्में की, जिसमें से तकरीबन 160 फिल्मों में उन्होंने नायक की भूमिका निभाई। सन 1956 में पी जयराज ने फिल्म हातिम ताई में काम किया था।

जैसा कि हमने आपको बताया, पी जयराज राष्ट्रीय और ऐतिहासिक फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। सन 1960 में उन्होंने फिल्म लाल किला में काम किया, 1961 में रजिया सुल्ताना,

श्री जयराज ने बाद के जमाने में कुछ चरित्र भूमिकाएं की और फिल्मों में कुछ छोटी मोटी भूमिकाएं भी की। सन 1975 में आई फिल्म शोले में उन्होंने पुलिस कमिश्नर की भूमिका निभाई थी। सन 1978 में फिल्म डॉन में उन्होंने जो किरदार निभाया था वो था दयाल का किरदार। सन 1970 फिल्म जीवन मृत्यु में पी जयराज ने रॉय की भूमिका निभाई थी। सन 1978 में फिल्म मुकद्दर का सिकंदर में पी जयराज बने थे डॉक्टर कपूर। 1981 में फिल्म क्रांति में उन्होंने महाराजा लक्ष्मण सिंह की भूमिका निभाई थी। बतौर नायक उनकी आखिरी फिल्म थी खूनी कौन मुजरिम कौन। अब आपको बताएं कि बतौर निर्माता पी जयराज ने कौन कौन सी फिल्में बनाई। पी जयराज ने भारत भूषण, नरगिस और अपने खुद के अभिनय के साथ एक फिल्म लॉन्च की जिसका नाम था सागर। सन 1939 में पी जयराज ने अपने घनिष्ठ मित्र और अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के कहने पर सावित्री नाम की एक युवती से विवाह किया था। सावित्री के कन्यादान की रस्म खुद पृथ्वीराज कपूर ने निभाई थी। पी जयराज की 5 संतानें थीं, 2 बेटे दिलीप राज और जय तिलक और 3 बेटियां जयश्री, दीपा और गीता। उनके सबसे बड़े बेटे दिलीप राज एक्टर बने। ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म शहर और सपना में उन्होंने एक्टिंग की थी। सन 1950 के जमाने में पी जयराज को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था। सन 1982 में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पी जयराज एक कड़ी थे, एक ऐसे अभिनेता जिन्होंने मूक फिल्मों से लेकर आधुनिक फिल्मों तक लगातार काम किया और जबरदस्त काम किया। बाद के जमाने में वो फिल्मों में चरित्र भूमिकाएं और कुछ छोटे मोटे रोल निभाया करते थे। जब सेहत ने साथ देना छोड़ दिया तो उन्होंने फिल्मों का दामन छोड़ दिया। 11 अगस्त सन 2000 को मुंबई के लीलावती अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। पी जयराज एक पुल थे, मूक फिल्मों से लेकर आज की फिल्मों के बीच का पुल। ये एक कड़ी टूट गई, रह गई तो बस पी जयराज की यादें।

0: शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

श्रोता सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। आकाशवाणी का यह हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। 10 बज चुके हैं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो हजारीबाग।

0: हेलो हजारीबाग प्रत्येक दिन के इतिहास, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जन्मदिन, मृत्यु और महत्वपूर्ण दिवस का संपूर्ण ब्यौरा मिलेगा डे टू डे। हेलो हजारीबाग मिलेगी मौसम की जानकारी, साथ ही हजारीबाग के अस्पताल के ओपीडी अपडेट्स मिलेंगे, हजारीबाग के ट्रैफिक अपडेट्स, लोकल नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स के कर्टन रेजर रोजाना, लोकल इवेंट्स के ग्राउंड रिपोर्ट्स का खजाना, सिटी के इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज में हजारीबाग के यूनिवर्सिटी की गतिविधियों और स्पोर्ट्स के ताजे हाल का हेलो हजारीबाग, और अंत में आज के विचार को सुनकर कर देंगे दिन की पॉजिटिव शुरुआत। गीतों संगीत से सजा सवरा जीवन के प्रत्येक आवश्यक गतिविधियों के संग हेलो हजारीबाग।
1: कार्यक्रम हेलो हजारीबाग सुन रहे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत आज इस कार्यक्रम में। अभिवादन स्वीकार कीजिए अशोक की ओर से। नमस्कार श्रोताओं, खुशनुमा माहौल है और बाहर मौसम का हाल भी बेहतर है, कृषक भी खुश हैं चूंकि इधर बारिश भी है और रोपनी का कार्य खेतों में लगभग पूरा हो चुका है। कुछ लोगों का बचा है वो भी एक दो दिन में पूरा हो जाएगा। मिला जुला कर शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि बारिश ना होने की वजह से अकाल की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और बारिश हुई। कुछ क्षेत्रों में ऐसी शिकायतें मिली है कि बारिश अभी भी नहीं हो रही है, तो वहाँ स्वतः अपने साधन से ही सिंचाई का समुचित व्यवस्था करके खेतीबाड़ी करनी होगी। चूंकि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और अधिकांशतर लोग कृषि पर ही निर्भर हैं। चलिए अब कार्यक्रम शुरू हो चुका है हेलो हजारीबाग, तो सबसे पहले आपको आज के सुविचार बता दें। आज का सुविचार है जिंदगी का कोई रिमोट नहीं होता, इसे खुद अपने हिसाब से बदलिए। जी हाँ, इस पे थोड़ा सा विस्तृत रूप से सोचिए कि अगर आप चाहेंगे कि जिंदगी खुद ब खुद बदल जाए, ऐसा कतई नहीं होगा। आपको जिंदगी को अपने हिसाब से बदलना होगा, आपकी खुद की आदतों को समझना होगा कि आप में क्या कमियां हैं और क्या खूबियां हैं। अगर जो खूबियां हैं उसे आप और सुधारिए, कमियां हैं उसे पूरी करने की चेष्टा कीजिए। औषधों शहर में आज भी ये न्यूनतम तापमान रहा 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस। आज भी बादल छाए रहेंगे, बारिश की संभावना बनी हुई है, तापमान में ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। मुख्य आयोजनों में कहा जाए प्रमुख इवेंट में तो भगवद गीता पाठ का आयोजन किया जाएगा झील सेंटर में संध्या 6:30 से, और महावीर मंदिर में पूजा अर्चना की जाएगी सुबह 7 से। कुछ और बातों का जिक्र करेंगे मगर सबसे पहले एक खूबसूरत सा गीत।

कार्यक्रम हेलो हजारीबाग में एक बार फिर से मैं अशोक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है, 11 अगस्त। जी हाँ, और आज है महान क्रांतिकारी खुदीराम बोस की पुण्यतिथि। खुदीराम बोस एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे, जब बच्चे का समय होता है, 18 वर्ष की उम्र ही क्या होती है, खेलने कूदने और खाने पीने के दिन होते हैं। लेकिन भारत जब गुलाम था, अंग्रेजों के अधीन था, अंग्रेजों का अत्याचार बढ़ रहा था, ऐसे में वो आगे बढ़कर अंग्रेजों से लुहा लिया खुदीराम बोस ने। जी हाँ, खुदीराम बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम उम्र के महान क्रांतिकारियों में से एक थे, जिन्होंने मात्र 18 वर्ष की आयु में 1908 को देश के लिए हंसते हंसते फांसी को गले लगा लिया था। उन्होंने बंगाल विभाजन के विरोध, गुप्त क्रांतिकारी संगठनों से जुड़कर ब्रिटिश राज के खिलाफ सीधा संघर्ष किया और मुजफ्फरपुर बम कांड में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनका जन्म बंगाल के मिदनापुर जिले में हुआ था। बचपन में ही माता पिता का निधन हो गया तो इनकी बहन ने इनका लालन पालन किया। 1905 के बंगाल विभाजन के समय स्वदेशी आंदोलन से इन्हें गहरी प्रेरणा मिली। वंदे मातरम के नारे और भगवत गीता के विचारों ने इन्हें क्रांतिकारी बनाया। 15 वर्ष की आयु में एंटी ब्रिटिश पर्चे वो बांटा करते थे और विभिन्न पुलिस स्टेशनों के पास बम रखने और सरकारी ठिकानों पर वार करने के लिए इन्हें इन गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए इन्हें गिरफ्तार किया गया था। मुजफ्फरपुर बम कांड क्या था, इसके बारे में जाने। साथ ही प्रफुल्ल चाकी के साथ मिलकर क्रूर ब्रिटिश जज किंग्सफोर्ड की हत्या की योजना बनाई। किंग्सफोर्ड समझकर उसकी बगधी पर बम फेंका, लेकिन उस समय बगधी में 2 ब्रिटिश महिलाएं थीं जिनकी मृत्यु हो गई। गिरफ्तारी के दौरान प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार ली, जबकि खुदीराम गिरफ्तार कर लिए गए और अदालत में हंसते हुए देश के लिए फांसी का फंदा चुना और कहा कि वे देश के लिए फिर से जन्म लेना चाहेंगे। अगर 11 अगस्त 1908 को उन्हें मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दी गई, उनके बलिदान ने पूरे देश और बंगाल के युवाओं में देशभक्ति की नई लहर जगाई, तो ऐसे थे हमारे देश के युवा। और इन्हीं युवाओं के बदौलत चंद्रशेखर आजाद का नाम करें ले या फिर सुभाष चंद्र बोस का नाम ले, इन सभी ने मिलकर हमारे देश को गुलामी के जंजीरों से मुक्त कराकर आज स्वतंत्रता दिलाई।

कार्यक्रम हेलो हजारीबाग आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। श्रोताओं, एक और चर्चा का विषय है आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से। देखिए, आप में जितनी ज्यादा दया, करुणा और मानवता की भावनाएं रहेगी, आप उतने ही अच्छे इंसान माने जाएंगे। जी हाँ, क्रोध तो बिल्कुल ही ना करें। अब ऐसी जगह नहीं है

तो कोई आपके क्रोध ना करने की वजह से कोई आपके एक गाल में थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी उसकी ओर कर दीजिए। जी नहीं, ये कतई नहीं होनी चाहिए। इतनी ज़्यादा भी करुणा और दया नहीं दिखानी चाहिए। जहाँ बहुत ज़्यादा उचित हो, जैसे बच्चों के प्रति थोड़ा सा सख्त भी होना जरूरी होता है, तो वहाँ थोड़ा सा क्रोध भी दिखाइए, लेकिन ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि प्यार से बात मान ली जाए। तो दया, करुणा और मनोहरता वे मूल नैतिक मूल्य हैं जो समाज को जोड़े रखते हैं और मनुष्य को दूसरों से अलग करते हैं। भगवद गीता जैसे महान ग्रंथ भी दया को एक श्रेष्ठ गुण बताते हैं जो न सिर्फ दूसरों का जीवन संवारता है बल्कि हमारे अपने मन को भी शांति और सच्ची सुख देता है। दया दूसरों पर कृपा करना या किसी बेसहारा को मदद करना सिखाता है। वहीं करुणा किसी के दुख को देखकर दिल में पीड़ा महसूस होना और उसे दूर करने के लिए हमें सहारा देता है, बात सिखाता है। सहानुभूति हर जीव के प्रति प्रेम और आदर का भाव रखना में हमारी मदद करता है। मानवता के महत्व की बात करें तो समाज में एकता जो है मानवता से ही आती है। ये गुण समाज से नफरत और द्वेष को मिटाकर भाईचारा बढ़ाते हैं और मानसिक शांति भी हमें देते हैं। दूसरों की भलाई करने से हमारे मन का तनाव कम होता है और आत्मसंतोष मिलता है। सच्चा धर्म भी यही है कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। जो दूसरों के काम आए वही असली इंसान है। छोटे छोटे दयालु कार्य भी पूरी दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते थे। तो श्रोताओं, ये थी छोटी सी जानकारी कि दया, करुणा और मानवता का महत्व। तो आपके अंदर ये तीनों चीजें अगर है तो आप एक श्रेष्ठ इंसान हैं। एक गीत के बाद फिर वापस आते हैं। जाहिर सी बात है ये गीत भी भक्ति भावना से ओतप्रोत है।

श्रोताओं, अब अखबारों की सुर्खियों पर कुछ नजर डालते हैं। दैनिक भास्कर की खबर है, बुढ़वा महादेव में कल यानी सोमवार को, दूसरी सोमवार को सुबह 4 बजे से दोपहर 3 बजे तक लगी रहे कतारें, और खाद्य सुरक्षा टीम ने प्रतिष्ठानों का किया निरीक्षण, दुकान से 25 किलो बासी व फफूंद लगी मिठाई को नष्ट किया गया। विस्तृत विवरण के लिए आप दैनिक भास्कर के पहले पेज को पढ़ें। शिक्षक और छात्रों में नशे से हमेशा दूर रहने की शपथ ली। महत्वपूर्ण खबर है, थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। दादी प्रकाश मणि की स्मृति में इंटर साइंस कॉलेज में 10 करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा अभियान आयोजित किया गया। इससे शिक्षक शिक्षकेतर कर्मियों व छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इसके साथ ही नशा से दूर रहने का शपथ भी ली। विकसित भारत के निर्माण की दशा की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में नशा मुक्त भारत अभियान मिशन स्पंदन के अंतर्गत कार्यालय का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर सभी उपस्थित जनों ने सामूहिक रूप से नशा मुक्त समाज के निर्माण का संकल्प लेते हुए नशा मुक्ति की शपथ ग्रहण की। उन्होंने यह भी प्रतिज्ञा ली कि वे अपने महाविद्यालय परिसर को पूर्णतः नशा मुक्त बनाएंगे तथा समाज में जागरूकता फैलाकर युवाओं को

0: नशे जैसी बुराइयों से दूर रहने के लिए प्रेरित करेंगे। ये खबर तो हमने पढ़ लिया, लेकिन अगर आप भी इस तरह के झांसे में फंसे हैं, चंगुल में फंसे हैं, ऐसे मित्रों से दोस्ती कर रहे हैं जो आपके नशे के प्रति प्रेरित करते हैं, तो तुरंत उनका साथ छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी आपके पढ़ने लिखने के समय हैं, भविष्य बनाने का वक्त है, और हजारीबाग खासतौर से ऐसे में थोड़ा सा ज़्यादा संलिप्त पाए जा रहे हैं युवा वर्ग, इसलिए स्कूलों में भी खास जो है शिक्षक प्रतिदिन स्टूडेंट्स के बैग चेक करते हैं। तो अभी वक्त है, आप सुधर जाइए, आने वाला दिन आपका ही होगा। कुछ और खबरों का जिक्र करेंगे मगर एक खूबसूरत गीत के बाद। हमारे कुछ श्रोताओं की शिकायत रहती है कि हम बातें ज़्यादा करते हैं, गीत कम सुनवाते हैं। चलिए ये शिकायत दूर कर देते हैं, क्योंकि कुछ कार्यक्रम का जो कैरिकुलम है उसे भी हमें देखना होता है, तो बातचीत के साथ साथ गीत संगीत तो आवश्यक है। आइए सुनते हैं ये गीत।
1: अरे चुपके से दिल दे दे,
2: नहीं ते
1: नहीं ते

0: कार्यक्रम हीरो हजारीबाग में एक बार फिर से मैं शोक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कुछ और खबरों का जिक्र करते हैं। हर घर तिरंगा अभियान का संदेश, 203 कोबरा वाहिनी ने निकाली बाइक रैली। रिटायर्ड 11 फुटबॉल टूर्नामेंट में 40 की उम्र पार कर चुके खिलाड़ियों का मैदान पर दिखा जुनून। कटकम संडी ने हजारीबाग को 5-3 से हराया। गुरुबहन भारती देवी के आवास पर साप्ताहिक सत्संग गोष्ठी आयोजित की गई और गृहमंत्री से मिले सांसद, जेपीएससी, जेएससीसी भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता का मुद्दा उठाया। कटघरा की टीम ने धनबाद को 42 रन से हराकर खिताब अपने नाम किया। ये चल कुत्सा की खबर है। नई विद्यालय प्रबंधन समिति ने दी शपथ। अध्यक्ष बोले, मिलकर बनाएंगे विद्यालय को और भी बेहतर बेहतर। ये कटकम संडी की खबर है। कुछ और खबरों का जिक्र करेंगे, यानी इतिहास के पन्नों में झांकेंगे और देखेंगे आज के दिन कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी, एक गीत के बाद।
1: हाँ तो नैनों में
2: बिंदिया है,
1: माथे पे
2: बिंदिया है,
1: तो बालों में
2: गजरा है,
1: आँखों में
2: गजरा है।
1: ओहो।

खूबसूरत संगीत के बाद वापस लौटते हैं कार्यक्रम की ओर और बताते हैं कि आज के दिन यानी कि 11 अगस्त को महत्वपूर्ण घटनाएं कौन कौन सी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। 1999 की बात करें तो यूरोप और एशिया में सदी का अंतिम सूर्य ग्रहण लगा था। 2000 में आज के दिन फिजी के विद्रोही नेता जॉर्ज स्पेट के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने का निर्णय लिया गया था। 2001 में आज के दिन उत्तरी आयरलैंड विधानसभा भंग किया गया था। आयरिश विद्रोहियों ने मिस्त्रीकरण के लिए 2 सप्ताह का समय दिया गया था। 2004 में आज के दिन चीनी कंप्यूटर उद्योग के पितामह चेन चुनचान सिंगयान का 70 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। भारत और पाकिस्तान ने वांछित अपराधियों की सूचियों की अदला बदली की थी। और भारत और पाकिस्तान के मध्य आतंकवाद और मादक द्रव्यों की तस्करी सहित 8 मुद्दों पर इस्लामाबाद में वार्ता संपन्न हुई थी। संयुक्त राष्ट्र परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने ईरान को पाकिस्तान द्वारा परमाणु मदद दिए जाने की पुष्टि की थी। 2006 में पाकिस्तान ने 3 अगस्त 90 श्रेणी की पनडुब्बी का जलावतरण किया था। 2007 में आज के दिन मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के 13वें उपराष्ट्रपति बने थे। 2008 में एकीकृत इस्पात मैन्युफैक्चरर्स गोदावरी पावर एंड इस्पात ने छत्तीसगढ़ सरकार के साथ 1570 करोड़ रुपए के एक सहानुभूति पत्र पर हस्ताक्षर किए। आरजे नायक पार्श्वनाथ रिटेल में स्वतंत्र निदेशक नियुक्त हुए थे। एक गीत के बाद आज के दिन जन्म लेने वाले व्यक्तियों की सूची भी हम आपको बताएंगे।

तो श्रोताओं, 11 अगस्त को जन्म लेने वाले व्यक्तियों की सूची भी हम आपको बता दें। आज के दिन 1961 में चंद्रशेखर बोल्लाना, जो कि भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश के राजनीतिज्ञ हैं, उनका जन्म आज के दिन हुआ था। आज के ही दिन जन्म लेने वालों की सूची में 1892 में जन्मे आर्ची विलियम्स, जो कि पश्चिम भारतीय क्रिकेटर थे, उनका भी जिक्र है। 1949 में आज के दिन पैदा हुए थे डी सुब्बाराव, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के 22वें गवर्नर थे। 1954 में आज के दिन यशपाल शर्मा, जो कि प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर, जो 1983 में पहली बार क्रिकेट विश्व कप विजेता भारतीय टीम के सदस्य थे, उनका जन्म आज के दिन हुआ था। 1954 में एस वी नरसिम्हा राव, जो कि भारतीय क्रिकेटर थे, उनका जन्म आज के दिन हुआ था। 1974 में अंजू जैन, भारतीय क्रिकेटर, और 1937 में निर्देशक जॉन अब्राहम, जो कि लघु कथा लेखक, मलयाली भारतीय फिल्म निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक थे। और 1924 में लालमणि मिश्र, जो कि भारतीय संगीत जगत के ऐसे मनीषी थे जो अपनी कला के समान ही अपनी विद्वता के लिए भी जाने जाते थे, उनका जन्म आज के दिन हुआ था। और चलिए लगे हाथ आपको आज के दिन निधन जिनका हुआ था उनके नाम भी हम आपको बता दें। आज के दिन यानी कि 11 अगस्त को निधन लेने वाले व्यक्तियों की सूची में 2020 में राहत इंदौरी, जो कि प्रसिद्ध उर्दू शायर और हिंदी फिल्मों के गीतकार थे, उनका निधन आज के दिन हुआ था। 2018 में वी एस नॉयपॉल, जो कि भारतीय मूल के प्रसिद्ध अंग्रेजी साहित्यकार थे, उनका निधन आज के दिन हुआ था। 2000 में आज के दिन पी जयराज, जो कि भारतीय फिल्मकार और अभिनेता थे, जिन्हें हम लोगों ने बहुत सारे फिल्मों में देखा है, जी हाँ, उनका निधन भी आज के ही दिन हुआ था। 1967 में नंद दुलारे वाजपेयी, जो कि हिंदी के प्रसिद्ध पत्रकार, समीक्षक, साहित्यकार और आलोचक एवं संपादक थे, उनका निधन आज के दिन हुआ था। जैसा कि हमने आरंभ में ही जिक्र किया, आज के दिन 1908 में खुदीराम बोस, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, उनका निधन आज के दिन हुआ था। 2019 से वीर सपूत को हम सलाम करते हैं। 2007 में ब्रिटेन के महान संगीतज्ञ एंथनी विल्सन का भी निधन तो ये हुआ था। तो श्रोताओं, ये थी संपूर्ण जानकारी इतिहास के पन्नों की। एक गीत के बाद कुछ और खबरों का जिक्र करेंगे।

श्रोताओ, कार्यक्रम में कम समय बचा है तो चलते चलते कुछ खेल से जुड़ी खबरों का भी हम जिक्र कर दें। राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दो टीमें, दो कप्तान, एक सपना, हॉकी विश्व कप हो अब अपना। 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड में होगा टूर्नामेंट। 17 किलो वजन घटाया, 2 साल के बाद सरफराज की टेस्ट टीम में वापसी होगी। राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग में पथरादू की अंजलि ने जीते 3 स्वर्ण और वर्ल्ड एथलीट्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत का अभियान 3 मेडल संग खत्म। सिमडेगा ने रामगढ़ को 18-0 से रौंदा। ये सब जूनियर हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन सिमडेगा में किया गया था उसकी खबर है। और श्रेयस रॉयल ने भी जीता पुरुष वर्ग का खिताब। भारतीय मूल के दोनों खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। 11 साल की प्रतिभा बोधना शिवानंद नंदन ने रचा इतिहास। ब्रिटिश शतरंज चैंपियनशिप का जीता खिताब। तो और डेविस कप में कोरिया से मुकाबले के लिए भारतीय टीम बरकरार। तो ये थी खेल की कुछ खबरें और इन्हीं खबरों के साथ आज का हेलो हजारीबाग का आज का ये अंक समाप्त होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ बने रहें और आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अनुमति दीजिए, फिर मिलेंगे इस वादे के साथ अपने दोस्त अशोक को। आपका आज के दिन शुभ हो, मंगलमय हो और अच्छे काम के साथ आज के दिन की शुरुआत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। छोड़े जा रहे हैं एक और खूबसूरत गीत के साथ।

श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो हजारीबाग, आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 11 बजने को हैं। अब विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम होंगे हमारे मुंबई केंद्र से बस थोड़ी ही देर में।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।
1: रंग तरंग
0: रंग तरंग कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का स्नेहिल अभिवादन। आप सभी का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं उषा अमोनकर के गाए इस भजन के साथ।

उषा अमोनकर की आवाज में अभी आपने ये भक्ति गीत सुना। आइए अब सुनते हैं हालिम साबिर का कलाम। इसे आवाज दी है भूपिंद्र ने, संगीत मधु मुखर्जी का है।

0: 12 अगस्त दिन में और रात में 11 बजे
1: और आइए अब सुनते हैं शुभा मुदगल की आवाज में ये गैर फिल्मी गीत।

शुभा मुदगल की आवाज में अभी आपने ये गैर फिल्मी गीत सुना। और आइए आप सुनते हैं गुरु रंधावा और निकिता गांधी की आवाजें। गीतकार और संगीतकार हैं तनिष्क बागची।

0: पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है
1: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
0: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
1: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
0: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
1: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: वाणिज्य राम की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं दानिश बरेलवी का ये कलाम।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। अरिजीत सिंह की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं कुमार का लिखा ये औकार फिल्मी गीत। इसे संगीत में ढाला है अमाल मलिक ने।

0: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं है।
0: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम रंग तरंग की अगली पेशकश असिस कौर की आवाज है, जानी का लिखा ये औगार फिल्मी गीत है और बी प्राक का संगीत है।

0: पहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय के साथी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष तिवारी से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जयो कहा हुजूर।
3: सिद्धांत महादेव की संगीत निर्देशन में हम आपको मोती सुल्तानपुरी का लिखा एक और फिल्मी गीत सुनवा रहे हैं, आवाज जावेद अली की।

0: और अब आज का रंग तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: रंग तरंग,
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। इस वक्त दोपहर के 12 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारी दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बाद स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक और राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। दिन में 11 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्ष के सदस्य इस संबंध में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने की अपील की।
1: सदन में चर्चा हो, प्रश्नकाल हो और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होना चाहिए। ये विधेयक देश और राष्ट्र के साथ बहुत बड़े परिवर्तन लाने के विधेयक होते हैं, इस पे अच्छी चर्चा संवाद होना चाहिए। लेकिन कल बीएससी की मीटिंग में भी आग्रह किया, आज फिर आग्रह कर रहा हूँ कि जिस विषय पर आप छात्रों के विषय पर मांग कर रहे थे, सरकार संसदीय कार्य मंत्री ने कल बीएससी की बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि गृह मंत्री इस बात पर जवाब देने को तैयार, सदन चलना चाहिए।
0: श्री बिरला ने संसद में बार बार हो रहे व्यवधान पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सदन में लगातार इस तरह की स्थिति से वे व्यक्तिगत रूप से आहत हैं। हंगामा जारी रहने पर श्री बिरला ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। उधर राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। विपक्ष के हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। इस समय सदन की कार्यवाही जारी है। गृहमंत्री अमित शाह आज लोकसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेंगे। राज्यसभा में अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा होगी। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विधेयक पेश करेंगे। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरण के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, सेवानियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। इस विधेयक में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण तंत्र को मजबूत करना, अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में डिजिटल भुगतान पर कोई कर या लेनदेन शुल्क नहीं लगाया गया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में हुई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और अन्य नेताओं ने तिरंगा लहराया। झारखंड की राजधानी रांची में कल विद्यार्थियों के नेतृत्व में विधानसभा मार्च के दौरान छात्र आंदोलन के नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि झारखंड विधानसभा के पास कल हुई झड़प में कई प्रदर्शनकारी और 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए।
2: कल करीब 10 घंटे तक चले विधानसभा घेराव के दौरान प्रदर्शनकारी विधानसभा गेट नंबर 1 के पास पहुंच गए। उन्हें हटाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन, आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। पुलिस कार्रवाई के विरोध में बीजेपी ने आज राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है और कथित परीक्षा अनियमितताओं की सीबीआई जांच की अपनी मांग दोहराई है। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने लोगों से आज के बंद को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: महाराष्ट्र के सतारा जिले में एक सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मृत्यु हो गई और 2 घायल हो गए। आज तड़के पुणे बंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक कार डिवाइडर से टकराने के बाद ट्रक से जा टकराई। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के 119वें बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस युवा क्रांतिकारी के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए देशभर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों, आज अभिनेता सुनील शेट्टी और अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस का जन्मदिन है। विविध भारती परिवार की ओर से हम उन्हें देते हैं ढेरों शुभकामनाएं और इस कार्यक्रम में हमने उन्हीं की फिल्मों से कुछ गीत आपके लिए चुने हैं। तो शुरू करते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: बस तुम रहते हो।
1: नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में अभी आपने समीर का लिखा ही गीत सुना। मुख्य स्वर अभिजीत का था और फिल्म का नाम था धड़कन। आइए सुनते हैं पंकज उदास, साधना सरगम और साथियों की आवाजें। फिल्म का नाम मोहरा, गीतकार इंदिवर, संगीतकार विजू शाह।

कुमार सानू की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फिल्म टक्कर का गीत। गीतकार थी माया गोविंद और संगीतकार थे अनु मलिक। और ये आवाजें हैं मीका सिंह और साथियों की। फिल्म का नाम है दे दनादन। इशाद कामिल के बोल, प्रीतम की धुन।

0: और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं आई,
0: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला गीत हिमेश रेशमिया का संगीत, समीर के बोल, फिल्म का नाम है फिर हेरा फेरी और गायक स्वर हिमेश रेशमिया का।

0: जागे तेरे वास्ते सोनिए।
1: ये आवाज थी हिमेश रेशमिया की। और आइए अब सुनते हैं अनु मलिक के संगीत निर्देशन में जावेद अख्तर के बोल, आवाज रूप कुमार राठौड़ की। फिल्म का नाम है बॉर्डर।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष तिवारी से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जीतवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जयो कहा से हुजूर।
3: कार्यक्रम का अगला गीत नीति मोहन और साथियों की आवाजों में, फिल्म का नाम है किक।

0: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं है।
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

साजिद वाजिद के संगीत निर्देशन में समीर अंजान का लिखा गीत सुनिए, आवाजें नीरज श्रीधर और साथियों की, फिल्म का नाम हाउसफुल 2।

कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद इरफान, अरिजीत सिंह और सेम भट्ट की आवाजों में, फिल्म का नाम है मर्डर 2। इस गीत को लिखा है सईद कादरी ने और धुन बनाई है मिथुन ने।

0: कॉमिक क्रिएटर है।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी उन्होंने। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।

0: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
1: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
2: 4 औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं थी।
1: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
2: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
1: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: और अब आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। I want full newspaper coverage. I want magazine stories. I want books. I want films. I want TV. I want radio.

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम। सुरीला सफर लेकर हम उपस्थित हो रहे हैं बस कुछ ही पलों में।

लीजिए सुनिए आपका पसंदीदा कार्यक्रम सुरीला सफर। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। तो बताइए कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे हैं और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आज के कार्यक्रम सुरीला सफर का। क्यों, है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही सोचा है हमने और यही हो भी रहा है। हमारे श्रोता रेडियो की उस ओर बैठे हैं हमसे बात करने के लिए, हमसे संवाद करने के लिए, क्योंकि

0: कहते हैं जिंदगी में कोई भी रिश्ता तभी कायम रह सकता है जब जहां वहां कुछ संवाद हो, है ना। हाँ ठीक है, कई बार हम ऐसा कहते हैं कि संवाद से ज्यादा आपसी समझ होनी बहुत जरूरी है, लेकिन संवाद के बिना जीवन बिल्कुल नीरस लगता है। क्यों? जैसे कि सुरीला सफर में हम आपके लिए आते हैं और बहुत सारी बातें आपसे करते हैं। सोचिए अगर हम इधर बात न करें तो आपको कितना बुरा लगेगा, है ना। और उधर से आप अपने संवाद, अपनी बातें, अपने विचार हम तक न पहुंचाएं तो ये कार्यक्रम कितना अधूरा होगा। इसलिए जीवन में संवादों का महत्व बहुत जरूरी है। तो आज हम ऐसे ही कुछ गीत आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें किसी भी गीत में आरंभ में या बीच में कहीं भी छोटे छोटे संवाद हमें सुनने को मिल सकते हैं। और इन गीतों को सुनते सुनते जब बीच में हमें कोई छोटा सा संवाद सुनने को मिलता है ना, तो पता है क्या होता है, एक पल के लिए हम उस संवाद को सुनने लग जाते हैं कि अरे ये अभिनेता या ये अभिनेत्री क्या कह रही है, ये गायक या ये गायिका क्या बोल रही है बीच में। होता है ना ऐसा? बिल्कुल होता है। तो वो संवाद हमें बहुत कुछ कह जाते हैं गीतों के जरिए कि इस गीत में ये संवाद किस लिए रखे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुरीला सफर। और यकीनन जब आज हम सुरीला सफर पर निकल चुके हैं तो संवाद करते रहेंगे, है ना, आपस में बातचीत हम करते रहेंगे। हमारी इबारत भी आपने पढ़ ली है, लेकिन जो श्रोता फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं उनके लिए हम अपनी इबारत को आपके सामने रख देते हैं। आज हमने लिखा है कि रिश्तों में संवाद बनाकर रखिए, संवाद हमें एक दूसरे से जोड़े रखते हैं। आज के गीत केवल पुराने गीत समझकर मत सुनिएगा, इनमें छिपी बातचीत को सुनिएगा। किसी में प्रेम मिलेगा, किसी में बिछड़ने का दर्द, किसी में शिकायत, किसी में उम्मीद, किसी में रिश्तों की मिठास और किसी में जिंदगी की सच्चाई। और शायद किसी संवाद को सुनते सुनते आपको भी अपने जीवन का कोई संवाद याद हो आए जो आपने किसी खास व्यक्ति से किया था, है ना। कोई व्यक्ति याद हुआ है जिसे बहुत कुछ कहना था लेकिन आपने कहा नहीं। तो आज के इस कार्यक्रम की तरफ से एक छोटी सी बात यही है कि रिश्तों को हमेशा मजबूत बनाकर रखिए, उनके बीच संवाद कभी बंद मत होने दीजिए, क्योंकि जहां संवाद जीवित रहता है वहां रिश्ते जीवित रहते हैं, और जहां रिश्ते जीवित रहते हैं वहीं जिंदगी सचमुच एक खूबसूरत गीत बन जाती है। तो इसी एहसास के साथ सुनिए आज का ये कार्यक्रम। और हां, इन गानों में आने वाला संवाद शायद आपको भी अपने जीवन की कोई कहानी याद दिला दे। तो समझ आया कुछ कि आज कैसे होंगे गीत? भाई हमारे श्रोता तो समझ चुके हैं कि आज के गीतों में आरंभ में या बीच में यानी पूरे गीत में कहीं ना कहीं छोटा या बड़ा कोई ना कोई संवाद जरूर होगा, है ना। तो शुरू करते हैं आज का ये सुरीला सफर। बताइएगा इस गाने में जो संवाद बोले जा रहे हैं वो फिल्मी पर्दे पर किस अभिनेता और अभिनेत्री ने किए हैं।
1: अरे देख रहे हैं?
2: तो देखने दो।
1: जल भी रहे हैं?
2: अरे तो जलने दो।
1: खुली सड़क है बाबा।
2: तो क्या हुआ भाई?
1: तो हो जाए।
2: खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों।

वाह, हमारे श्रोता ने फटाफट जवाब भी दे दिया है कि ये है ऋषि कपूर और नीतू सिंह पर्दे पर। फिल्म का नाम भी लिख दिया है आपने, खेल खेल में।

0: जी तो अभी आपने सुना फिल्म खेल खेल में का ये गाना युगल स्वर किशोर कुमार और आशा भोंसले के थे। गुलशन बावरा की रचना थी राहुल देव बर्मन की धुन। जी तो इस गाने के आरंभ में जो संवाद कर रहे थे आपने बिल्कुल सही कहा, ऋषि कपूर और नीतू सिंह। और वैसे देखा जाए तो किशोर कुमार और आशा भोंसले ये संवाद कर रहे थे गाने के तौर पर। एक श्रोता लिखते हैं कि आज आप रिश्तों की गहराइयों और इसे जीवंत करने वाले संवाद को लेकर आई हैं। आज का संवाद सच में सुंदर होना चाहिए। रिश्ते भावनाओं की वो नाजुक डोर है जिन्हें सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि दिल के संवाद से संजोया जाता है। संवाद किसी भी रिश्ते की वो जीवनदायिनी सांस है। शब्द रिश्तों के वो मोती हैं जिन्हें यदि सही समय और सही आदर के साथ पिरोया जाए तो वो जिंदगी को एक बेहद खूबसूरत माला बना देते हैं। संवाद वो खुशबू है जो रिश्ते के गुलशन को हमेशा महकाए रखती है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि क्या बात है, आज के सुरीला सफर कार्यक्रम में हम ऐसे पुराने गीतों से रूबरू होंगे जिनमें जिंदगी से जुड़े दिलचस्प संवाद हैं। आपकी इस मेहनत को दिल से सैल्यूट। और आप सभी सुनने वालों को भी हम सैल्यूट करते हैं कि लगातार आप इस सफर में हमारे साथ बने रहेंगे, इसलिए है ना। एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत से समझ में आ गया है कि धुनों को सुनते सुनते शायद आपको भी कोई भूला हुआ चेहरा याद आ जाए, कोई ऐसा जिसे आप कुछ जरूरी बात बताना चाहते थे पर तब वक्त ने साथ नहीं दिया, इसलिए आज ही अपने अपनों से दिल की बात कहिए, दूरियों को मिटा दीजिए।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। रांची में जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी। छात्र नेताओं ने प्रदर्शन और तेज करने का किया ऐलान। विधानसभा के मॉनसून सत्र के चौथे दिन छात्र आंदोलन पर सदन के बाहर और भीतर विपक्ष का हंगामा। कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित। जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा का राज्यव्यापी बंद। रांची समेत विभिन्न जिलों के प्रमुख चौक चौराहों पर प्रदर्शन। कोल्हान और सारंडा क्षेत्र पूरी तरह नक्सल मुक्त घोषित। चाईबासा में 10 लाख रूपये के इनामी सहित 4 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। और रिम्स में एनएमसी मानकों के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर और चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार पर जोर। उच्च स्तरीय बैठक में लंबित निर्माण कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। रांची में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में सुधार की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन आज 18वें दिन भी जारी है। कल विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने देर रात घोषणा की कि वे अपनी मांगों को लेकर आंदोलन और तेज करेंगे। उनका कहना है कि जब तक सरकार लिखित आश्वासन नहीं देती प्रदर्शन समाप्त नहीं होगा। आंदोलन के कारण राजधानी के प्रमुख चौराहों पर पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। विधानसभा के मॉनसून सत्र के चौथे दिन आज सदन में जेपीएससी और जेएसएससी छात्र आंदोलन का मुद्दा छाया रहा। सुबह कार्यवाही शुरू होते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक वेल में आकर एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। सदन में जारी भारी शोर शराबे और हंगामे को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष रवीन्द्रनाथ महतो ने सदन की कार्यवाही को पहले दोपहर 12 बजे तक और फिर गतिरोध कम न होने पर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। विधानसभा के मॉनसून सत्र के चौथे दिन आज सदन के बाहर भाजपा विधायकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित धांधली तथा आंदोलनकारी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विधायक राज सिन्हा ने परीक्षा प्रक्रिया की सीबीआई जांच की बात दोहराई।
2: और ये सारा हरकत उन लोगों ने किया बदनाम करने के लिए छात्रों को, पत्रकारों को, और जिस प्रकार से बाउंड्री तक आने दिया छात्रों को और रात के अंधेरे में घेर करके उनको पीटा, खुद हरकत करके और भारतीय जनता पार्टी पर इल्जाम लगा रही है। यह कहता है सरकार की बर्बरता की कहानी, यह कहता है कि सरकार अहंकार में डूबी हुई है।
1: इस बीच डॉक्टर अंसारी ने कहा कि भाजपा छात्रों के नाम पर केवल राजनीति कर रही है।
3: सारा मार्केट खुला है, हम तो देख के आ रहे हैं, पूरा घूम के आ रहे हैं, बांस लगा दिया है, तोड़ दे रहे हैं बांस। आज युवाओं की मांग है, हम लोग समर्थन कर रहे हैं, हम लोग उनको चाहते हैं, उनकी बात, उनकी जो भी मांग है हम लोग पूरा कर रहे हैं। बंदी का असर क्यों होगा, जनता नहीं चाहती है, यहाँ जनता हमारे साथ है। ये जब जब विधानसभा चलेगा तब तक ये लोग कुछ न कुछ नौटंकी करेंगे।
1: जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के विरोध में आज भाजपा का झारखंड बंद सुबह से ही प्रभावी है। राजधानी रांची के अल्बर्टिका चौक, रातू रोड और कोकर सहित तमाम प्रमुख चौराहों पर व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे और यातायात पर असर देखा गया। प्रदर्शन में शामिल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने आरोप लगाया कि वर्तमान शासनकाल में युवाओं की नौकरियां बेची जा रही हैं और प्रशासन आमरण अनशन पर बैठे छात्रों पर दबाव बना रहा है।
4: यही तो दुर्भाग्य है कि जिन बच्चों ने इनको वोट देकर के इनको सत्ता के सिंहासन पर बैठाया, नौकरी दे नहीं पाए, लेकिन एक दिन में चार चार बार लठिया बरसाने का काम किया, पानी के फैवारे छोड़ने का काम किया, कह कह बच्चे लापता हैं कि जवाब सरकार को देना पड़ेगा।
1: रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने जेपीएससी परीक्षा विवाद और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोला है। संसद परिसर में आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री सेठ ने आरोप लगाया कि वर्तमान राज्य सरकार युवाओं की जायज मांगों और उनकी आवाज को दबाने के लिए दमनकारी बल प्रयोग कर रही है।
5: देखो, आज पूरा झारखंड बंद है। जो दमनकारी नीति झारखंड की पुलिस ने किया, जो बर्बरता हेमंत सोरेन के निर्देश पे हुआ, इतना संवेदनहीन कोई मुख्यमंत्री हो सकता है क्या? आपने दिन में तो लाठी चार्ज किया ही, रात में लाठी चार्ज किया, सैकड़ों बच्चे घायल हैं, बेटियों को पे लाठी चार्ज किया, और बच्चों से माफी मांगने के बदले आप पुलिस प्रशासन को बधाई दे रहे हो, लेकिन ये झारखंड के बच्चे हैं, एक एक लाठी की कीमत आपको चुकानी होगी।
1: केंद्रीय मंत्री ने परीक्षा धांधली की सीबीआई जांच कराने और दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग दोहराई है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस ने सारंडा, कोल्हान और पोड़ाहाट को पूरी तरह नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। चाईबासा पुलिस केंद्र में सिंहभूम रेंज के डीआईजी अनुरंजन किस्पोट्टा और वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष 10 लाख के इनामी नक्सली सालुका कायम सहित 4 उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया। डीआईजी ने बताया कि पिछले एक साल में 52 नक्सलियों ने सरेंडर किया है और अब जिले में ऑन रिकॉर्ड कोई नक्सली नहीं बचा है।
6: हमारे यहाँ गंगा जल है, उसका डिमांड बढ़ा।
7: स्पष्ट शब्दों में कहा कि ऑन रिकॉर्ड आपको वैसे नक्सली नहीं बचे इस जिला में जिसकी गिरफ्तारी या फिर और सरेंडर बाकी। मैंने आपको उसमें भी बताया था कि अब हमें बेहतर पुलिसिंग देना है ताकि ये जो नागरिक और हमारे जो पुलिस के बीच संबंध है वो स्थापित रहे।
1: रांची के रिम्स में चिकित्सा सेवाओं और शैक्षणिक सुविधाओं के विस्तार को लेकर स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। संस्थान में एमबीबीएस सीटों की संख्या 180 से बढ़ाकर 250 किए जाने के बाद एनएमसी मानकों के अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर

0: रहे हैं। 30 रुपया में लगभग 250 ml गंगा जल का बोतल है वो सेल कर रहे हैं। ऑफिस में सेल करने के अलावा शिवालय है वहाँ भी उपलब्ध करवा रहे हैं ताकि इसका डिमांड को फुलफिल किया जा सके।
1: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज आधा प्रतिशत की कमी देखने को मिली। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 431 अंक फिसलकर 78,111 पर और निफ्टी 135 अंक गिरकर 24,449 पर आ गया। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,42,200 रुपये प्रति 10 ग्राम है जबकि चांदी की कीमत 2,42,000 रुपये प्रति किलो है। मौसम। रांची मौसम केंद्र ने संथाल परगना के देवघर सहित 5 जिलों के लिए तात्कालिक चेतावनी जारी की है। अगले 1 से 3 घंटों में देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज के कुछ भागों में बादल गर्जन और वज्रपात के साथ मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है और इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार। रांची में जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी। छात्र नेताओं ने प्रदर्शन और तेज करने का किया ऐलान। विधानसभा के मॉनसून सत्र के चौथे दिन छात्र आंदोलन पर सदन के बाहर और भीतर विपक्ष का हंगामा। कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित। जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा का राज्यव्यापी बंद। रांची समेत विभिन्न जिलों के प्रमुख चौक चौराहों पर प्रदर्शन। कोल्हान और सारंडा क्षेत्र पूरी तरह नक्सल मुक्त घोषित। चाईबासा में 10 लाख रुपए का इनामी सहित 4 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण और रिम्स में एनएमसी मानकों के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर और चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार पर जोर। उच्च स्तरीय बैठक में लंबित निर्माण कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: साहब।
1: कौन? मैं?
0: जी हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। यहाँ आएंगे आप?

जिंदगी की बातें, प्यार भरी शिकायत या मायूस भरी या फिर आने वाले सुखद कल्पनाओं की जिसे हम साकार रूप देना चाहते थे, ऐसी बहुत सी बातें हम संवादों के जरिए कह सकते हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि संवाद केवल बातचीत करने का या आपसी बोलचाल ही नहीं है, ये दिल को दिल से जोड़े रखता है। संवाद हमेशा बनाए रखना चाहिए। प्रेम विरह शिकायतों से जीवन के सत्य जो है जीवंत बने रहते हैं। ध्यान रहे कि संवाद जारी रखने वाली स्थिति में भी जो मौन की गहराई और शब्दों की पवित्रता के माध्यम से रिश्तों की डोर जुड़ी रहती है, संवाद प्रेम को प्रकट करता है और रिश्तों में दूरी नहीं आने देता। विरह में संवाद की तड़प होती है, यादों के जरिए संवाद जारी रहता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पिछले कुछ दिनों से रोज ही सावन आया, घटा छाई, सुहाना मौसम, हरियाली, बस इन्हीं पर संवाद हो रहा था। आज आप आए और आपने भाई बहन के संवाद सुनने का इंतजार है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज हमने इस कार्यक्रम को आपके साथ अंत तक सुनना है और आज की इबारत बहुत दिलचस्प लिखी है। इसमें गानों का संग्रह बहुत अच्छा है, लेकिन उन्हें सुनकर और महसूस करके अधिक आनंद आएगा। हमारे रिश्तों में मधुर मिठास घोलने वाले गानों को सुनने से आसपास के वातावरण में संगीत गूंजने लगता है और जो भी हम कहना चाहते हैं वो सब गीतों के माध्यम से हम कह सकते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैं बहुत उत्साहित हूँ रिश्तों में संवाद बनाए रखने के लिए, इस महत्व को समझाने के लिए आज का ये कार्यक्रम है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि रिश्ते मजबूत रखने के लिए संवाद होना बेहद जरूरी है। आपसी मनमुटाव को सुलझाने के लिए संवाद ही एकमात्र उपाय है। संवाद न होने पर छोटी समस्या विकराल रूप धारण कर लेती है। संवाद वाले गीत बहुत से हैं पर मुझे अभी कुछ याद नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल सही है श्रोताओं, हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही तो है। हम दिन रात अपनी जिंदगी का गीत गाते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, है ना। सुबह से शाम तक काम, जिम्मेदारियां, रिश्ते निभा तो रहे हैं हम, ऐसी बात नहीं है, परिवार, भागदौड़, लेकिन जिंदगी के बीच में कभी कभी कोई संवाद आ जाता है। किसी अपने की कही भी कोई एक बात, माँ की कोई सीख हमें मिल जाती है, पिता की कोई डांट मिल जाती है, जीवन साथी का कोई सवाल मिल जाता है, बच्चे की कोई मासूम बात सुनने को मिल जाती है और हम अचानक रुक जाते हैं, सोचते हैं क्या मैं सच में यही जिंदगी जी रहा हूँ जो मैं जीना चाहता था। तो इसीलिए फिल्मी जो गाने हैं इनके बीच में आने वाला संवाद भी केवल ये मनोरंजन नहीं है, ये हमें ठहरने का एक अवसर देता है। हाँ, कि क्या कहा जा रहा है इस गीत में जो नायक और नायिका एक दूसरे से कह रहे हैं। तो यही इसीलिए आज हमने इन गीतों को चुना ताकि हम एक पल के लिए ठहरे, कुछ सुने, कुछ समझें, कुछ सोचें कि रिश्तों में संवाद कितना जरूरी है। और इसलिए इन गीतों के बीच आने वाले संवाद एक बहुत बड़ी सीख हमें दे जाते हैं कि रिश्तों में केवल प्यार होना काफी नहीं है, प्यार को शब्द देना भी बहुत जरूरी हो जाता है, है ना। बताइए किस फिल्म का गाना है और पर्दे पर कौन अभिनेता और कौन नायिका है। इस गीत में भी आपको संवाद सुनने को मिलेंगे, है ना, और बताइएगा कौन ये संवाद कह रहा है किसे।

जी, हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आज के सफर में बातचीत या कहीं संवाद के माध्यम से हम सब एक दूसरे को जाने समझ पाएंगे। वो भूली बिसरी यादें, वो सामने की

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

जी हमारे श्रोताओं ने कहा कि ये फिल्म आंधी का गीत है और इसमें संजीव कुमार और सुचित्रा सेन आपस में संवाद कर रहे थे। बिल्कुल सही लिखा आपने। और हम आपको बता दें आवाजें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की थी। गीतकार जो गीतकार थे गुलजार साहब।

थी और संगीत राहुल देव बर्मन का था। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि विविध भारती की आवाज हमेशा दिल को छू जाती है, आज के कार्यक्रम का इंतजार रहेगा। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि डायलॉग वाले गीत से सजी हुई सुरीला सफर की संगीतमयी सफर में हम सभी आपको धन्यवाद देते हैं। एक श्रोता कहते हैं कि संवाद जरूरी नहीं मुंह से बोले, मगर आपको किसी से कुछ कहना है तो सबसे पहले आंखें चेहरे के भाव बोलने से ज्यादा बहुत कुछ कह देते हैं। और आपने सही कहा, रिश्तों को जीवित रखने के लिए संवाद जरूरी है। मुझे भी कुछ कहना है, पहले आप शायद ये गीत शामिल हो सकता है। वैसे हम आपको बता दें, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी अपनी तरफ से बहुत सारे ऐसे गीत लिखे हैं जिनमें संवाद है, लेकिन हमारे कार्यक्रम का एक समय जो है निश्चित है, तो हमने उसी अर्थ में हमने जो गाने चुने हैं, आपके गानों से हमारे गाने कितना मेल खा रहे हैं ये आप देखिएगा। लेकिन हाँ, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने कई अन्य गानों का जिक्र भी किया है जिनमें संवाद हमें सुनने को मिलते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो फेसबुक खोलने से पहले अच्छा मुझे याद किया आपने और पोस्ट देखकर खुश हो गई, क्योंकि आज भगवान जी से शायद कुछ और मांगते वो भी मिल जाता। गीतों में जो बात होगी, तकरार होगी, वो तो होगी, पर आप जो कुछ बातें करेंगी, दो प्रश्न करेंगी, उनके बहुत सारे उत्तर भी देने होंगे। अरे तो आज आपने इतना हल्का क्यों मांगा, बहुत कुछ मांगना था आपको, है ना। ये कार्यक्रम तो रोज होता है और इस कार्यक्रम के जरिए तो आप हर वक्त हर किसी उद्घोषक से किसी न किसी रूप में जुड़े ही होते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज के जो गानों में थोड़ा सा अलग हमें सोच मिल रहा है, वो बहुत अच्छा लग रहा है। अक्सर क्या हो रहा है कि इन दिनों झूलों और सावन पर कार्यक्रम ज्यादा केंद्रित हमें सुनाई दे रहा है, आपने कुछ थोड़ा इसको बदला है, बहुत अच्छा लग रहा है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत से बिल्कुल साफ है कि आज के गीतों का केंद्र संवाद है, यानी ऐसे पुराने गीत जिनमें दो लोगों के बीच बातचीत, सवाल जवाब, मन की बात, शिकायत, प्यार या कोई अनकहा एहसास है। हमें कुछ गीत समझ आए, आपने भी कुछ गीतों का जिक्र किया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बीच में चल रही मीठी बातचीत है तो रूठना मनाना भी है इन गानों में, बल्कि प्यार है, गहरा करने का बहाना भी है। एक तरफ से शिकायत है, दूसरी तरफ मनुहार है और इस तरह से जो गीत पिरोए गए हैं वो बहुत ही सुंदर लगते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि खूब लड़ लो, झगड़ लो, लेकिन बातचीत बंद नहीं करा करो, क्योंकि बातचीत से ही समस्या का निदान होता है। एक श्रोता ने कहा है कि सफर में आप काफी समय बाद आई हैं। ऐसी बात तो नहीं है, हम तो सफर में आते ही रहते हैं और आप हर दिन एक न एक सफर तो तय करती है ना अपनी जिंदगी का। एक श्रोता ने लिखा है कि संवाद ही एक ऐसा माध्यम है जिससे सभी प्रकार के हल निकल सकते हैं, मन मुटाव दूर हो जाता है। वहीं एक श्रोता ने कहा है, जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए रिश्तों को संवाद से जोड़कर जरूर रखिए। और एक श्रोता ने कहा है कि हमारे प्रांत बिहार में लोग संवाद करते हैं जिसे हम बोलचाल की भाषा में बतरस या बतकुचन कहते हैं। बातों का सिलसिला शुरू होता है सुबह के दिनचर्या से, महंगाई से, बच्चों और घर की समस्याओं, शारीरिक तकलीफ से, उसके बाद पॉलिटिक्स पर बात चली जाती है और वहीं संवाद फिर बदकुचन पर चली जाती है। इसलिए अगर किसी को बुरा लग गया तो वो मुंह बनाकर उठकर चल भी देता है। हो सकता है दो तीन दिन बाद फिर किसी से बात नहीं करें, मिले भी नहीं, पर इस तरह जो बदकुचन होता है उसमें बहुत आनंद भी आता है। तो हम भी आपसे जब संवाद कर रहे हैं तो ये पूछना हम चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में ऐसा कौन सा संवाद रहा है जिसे आप आज तक नहीं भूल पाए। मतलब आपने किसी से कभी कोई अच्छा संवाद किया होगा, या आपको लगा होगा कि नहीं, मैंने जरूरत से ज्यादा किसी को गलत कह दिया है। तो क्या आपको लगता है ऐसा कोई संवाद जिसे आप नहीं भूल पाए, बस उस घटना का जिक्र आप कर सकते हैं। और हाँ, हम ये भी जानना चाहते हैं कि कभी ऐसा कोई संवाद आपने किया हो कि आपके कुछ शब्दों ने आपके और किसी अपने के बीच की दूरी कम कर दी हो, बड़ा नहीं दी हो बल्कि कम कर दी हो। याद कीजिए वो घटना, वो शब्द, वो लम्हे जब आपको लगा होगा कि हम बहुत दूरी पर थे, लेकिन जब हमने प्यार भरे शब्दों का इस्तेमाल किया, आपस में प्यार भरी संवाद की अदायगी की, तो हम कहीं थोड़ा करीब आ गए। सुनते हैं राजेश रोशन का संगीत, आनंद बख्शी के बोल, अमिताभ बच्चन, मास्टर रवि और साथियों की आवाजें। फिल्म का नाम है मिस्टर नटवरलाल।

0: नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ।
1: बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय।
0: खड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई दस सवा दस का बस वक्त था।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो झपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे, अरे बचाओ, अरे बचाओ। मैं डाल डाल, वो पान पान, मैं पसीना, वो दाल दाल, मैं चुरमे, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ बचाओ, अरे भागो रे भागो, अरे।

हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया। आपने कहा कि नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं। ये गाना देवानंद साहब ने हेमा मालिनी जी के लिए गाया था फिल्म जॉनी मेरा नाम के लिए। बिल्कुल सही कहा। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत सारे श्रोताओं ने इसका सही जवाब दिया है कि देवानंद है पर्दे पर और हेमा मालिनी से वो ये बात कह रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आप कुछ नया सब्जेक्ट लेकर ही आती हैं जो मनोरंजन भी करता है और एक संदेश भी देता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि संवाद बहुत जरूरी है लेकिन बस संवाद विवाद में नहीं बदलना चाहिए और अपनी बात कहना सही है पर सामने वाले की भी तो सुनना जरूरी है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि वाणी ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आप हूँ शीतल खोए।

0: आइए थोड़ा सा आगे और चलते हैं और सुनते हैं अमिताभ बच्चन के साथ लता मंगेशकर जी की आवाज, फिल्म का नाम है सिलसिला, जावेद अख्तर के बोल और शिव हरी का संगीत। आपको बताना है, बिल्कुल सीधा साधा जवाब देना है कि पर्दे पर किस नायिका को ये बात कही जा रही है।
1: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है,

ये स्वर थी लता मंगेशकर और अमिताभ बच्चन की, फिल्म का नाम था सिलसिला। दोस्तों कहते हैं कि कितने ही रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि लोगों के बीच प्रेम नहीं था। ना ना ना, ऐसी बात नहीं है। प्रेम तो बहुत था लेकिन वहाँ संवाद नहीं था। जो लोग एक दूसरे से प्यार करते थे लेकिन बात नहीं करते थे, मन में शिकायतें थी लेकिन कहते नहीं थे, दर्द था लेकिन बताते नहीं थे, समझाते भी नहीं थे। इसलिए पुराने फिल्मी गीतों में जब अचानक किसी कलाकार की आवाज आती थी तो दर्शक केवल गीत नहीं सुनता था बल्कि उस किरदार के साथ उस पल को जीने लगता है, है ना। कई बार फिल्मों में होता है, आज भी होता है, जब हम इन गीतों को सुनते हैं तो इस किरदार को जीने लग जाते हैं कि क्या कह रहे हैं ये। तो हमें लगता है कि ये सिर्फ फिल्म की कहानी नहीं है बल्कि ये तो मेरी भी कहानी हो सकती है। और अक्सर हम उस कहानी को अपनी कहानी समझकर या अपनी जिंदगी से जोड़कर सुनना पसंद भी करते हैं। क्यों, आपके साथ भी ऐसा ही होता है ना। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि हिंदी सिनेमा में बहुत सारे गीतकारों ने ऐसे बहुत सारे गीत लिखे हैं जिनको अभिनेता अभिनेत्री

द्वारा संवाद करते करते गाया गया। आपने बहुत सारे गीतों का जिक्र भी किया है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में संवाद रिश्तों को और मजबूत बनाते हैं। संवाद होना बहुत जरूरी होता है, आज के गाने भी उतने ही अच्छे लगेंगे। एक सवाल के जवाब में इन्होंने कहा, एक श्रोता ने, जब हमने आपसे पूछा था संवाद के बारे में सवाल, आप लिखते हैं कि मुझे अपने पापा से बात करना अच्छा लगता है क्योंकि आजकल वो थोड़ा भूलने लगे हैं, तो जब हम उनसे संवाद करते हैं उन्हें याद आ जाता है, नाम याद आने लगते हैं, पुरानी बातें वो याद करने लगते हैं, फिर वो किससे सुनाने लगते हैं और डॉक्टर ने भी उनसे बहुत बात करने को कहा है। बिल्कुल आपने सही कहा। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि यादों की बारात फिल्म का गीत आपने तारिक और जिनत अमान के बीच का संवाद था वो सुनवाया। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी, जब बात संवाद पर आ ही गई है तो मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बात सिलसिला फिल्म का गाना सुनवा दीजिए। अरे हमने तो आपको सुनवा भी दिया है। कहाँ है आप, सुन लिया ना आपने, जवाब दीजिएगा हमें हाँ या ना में। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज मैं अकेले ही ये प्रोग्राम सुन रही हूँ, वो भी आपकी संवाद अदायगी के साथ। मैं तो बचपन से रेडियो सुन रही हूँ जब भी समय मिलता है, मगर कुछ समय से मेरी बेटी भी सुनने लगी है, उसे आपकी आवाज पसंद है, मुझे भी, तो कहती है जब आप आए तो मुझे बताना, आज वो कॉलेज नहीं गई और मैं उसे बताऊंगी तो उसे गुस्सा आएगा। अरे इतना प्यार, इतना स्नेह है ना सर माथे पर। वही एक श्रोता लिखते हैं कि संवाद एक अद्भुत शैली है, अपने आप से बात करना भी एक प्रकार का संवाद ही तो है। मैं जब 20 साल का था तब भीतर एक बात मेरे मन में आई, उद्भव हुई कि गुलाब जामुन में सुख नहीं है, फिर अंदर ही संवाद हुआ कि सुख सबको मिल रहा है तो किधर से आ रहा है। इस तरह साबित करने का मौका कुछ महीने बाद संवाद करने का मिला। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हद से ज्यादा संवाद भी रिश्ते बिगाड़ देते हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि संवाद सदा मधुर और मीठे हो तब तो अच्छे है, वरना चुप ही सही है। वैसे जहां प्रेम और दिल मिले होते हैं वहां अधिक संवाद की आवश्यकता होती भी नहीं है, वहां मौन में भी दिल की बातें दिल से हो ही जाती हैं। एक श्रोता ने कहा, संवाद हमेशा प्यार से होना चाहिए, चाहे कोई भी रिश्ता हो, बड़ों का सम्मान, बच्चों से प्यार। और एक श्रोता लिखते हैं कि मैं मेरे मैरिज से पहले एक बार मैं और मेरी होने वाली वाइफ घूमने गए थे। एक गार्डन में बैठकर मैंने मेरे और मेरे परिवार के बारे में उन्हें बहुत कुछ बताया। मुझे अचानक ख्याल आया कि वो तो कुछ बोल ही नहीं रही है। मैंने कहा, आप क्यों कुछ नहीं बोल रही है? तो उन्होंने बताया कि आप ही बोले जा रहे हो, मुझे तो बोलने का आपने मौका दिया ही नहीं, तो क्या बोलूं। फिर हम दोनों बहुत हंसे। वही एक श्रोता लिखते हैं कि यूं तो जिंदगी में संवाद बहुत है, संवाद वही होना चाहिए जिसमें सुगंध और प्यार हो, तभी मजा आता है। एक श्रोता कहते हैं कि मैं संवाद गीतों की एक अलग से लिस्ट बना रखी है मैंने, जिसमें अभी तक लगभग 30 गीतों के नाम शामिल हो चुके हैं, क्या बात है। और एक श्रोता लिखते हैं कि बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा में हम दर्शन करने गए हैं धर्म पत्नी के साथ, और वहां से आपके सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं, और आप पवित्र गुफा से ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, बाबा अमरनाथ की सभी को ढेरों आशीर्वाद देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अब कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, शिव हरि का संगीत, आनंद बख्शी के बोल, श्रीदेवी और जॉली मुखर्जी की आवाजें, फिल्म का नाम चांदनी।

जी तो सुरीला सफर कार्यक्रम में बस आज यही तक। इतना ही कहेंगे कि सहमति असहमति के बीच भी हमें हर इंसान से, हर व्यक्ति से संवाद करना बेहद जरूरी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए बस इस कार्यक्रम से अब मंदाकिनी जोशी को दे दें इजाजत। फिर मिलेंगे, नमस्कार।

खत लिखवाने में जब संतोष नहीं होता तब हम खुद लिखने बैठ जाते हैं अपने दिल की भावनाएं और पन्ने दर पन्ने भर देते हैं। फिर भी लगता है कि जो बताना चाह रहे हैं वो बात तो लिखी ही नहीं। तब उस खत के साथ कुछ चीजें भेजी जाती हैं जो शायद वो काम कर जाए जो पत्र में लिखे शब्द नहीं कर पा रहे हैं। जी हाँ, आप समझ गए ना। खत के भीतर रखा गया एक सूखा फूल या कोई छोटा सा हाथ से बना कार्ड या कढ़ाईदार रुमाल, ये चीजें गवाह बन जाती है कि दूर बैठा व्यक्ति आपको कितना याद कर रहा है। ये उस सुनहरे दौर की बातें हैं साथियों, जब दो प्रेम से भरे दिल आसानी से मिल नहीं पाते थे, तब ये खत उनके स्पर्श का एहसास कराता था। किसी संजीवनी बूटी का काम कर जाती थी चिट्ठी। बार बार पढ़ना, सीने से पत्र को लगाना या उसे ऐसी जगह छुपा देना जहाँ कोई उसे देख ना पाए। कल की भूली बिसरी बातें हो गई है ना, लेकिन ये भी सच है कि खत पढ़कर सामने वाले की यादों में खो जाने का एहसास, उसके होने का कोमल अनुभव, वो आज के इमोजी या मैसेज में कहाँ। हाथ से लिखा खत अपनेपन, समर्पण और गहरे प्रेम का एक दस्तावेज बन जाता है, जैसे कि दिल ही साथ भेज दिया हो।

आज के इस युग में डिजिटल वर्ल्ड में अपनी बात कहना पलक झपकने जैसा हो गया है। जहां प्रेम दर्शाना मिनटों में हो सकता है, वहीं द्वेष जताना भी आसान हो गया है, लेकिन हम उसकी बातें नहीं करेंगे। तो चलिए चलते हैं उस दौर में जब चिट्ठी आना एक उत्सव की तरह होता था। घर का हर सदस्य उस चिट्ठी को बार बार पढ़ता, अपने ढंग से उसका अर्थ समझता और एक दूसरे को समझाता। खत लिखा जाता था, भेजा भी जाता था और उसे मंजिल तक पहुंचाने वाले उस खाकी वर्दी पहने, कंधे पर थैला लटकाए, साइकिल पर सवार, गली गली खत को घुमाने वाले को हम कैसे भूल सकते हैं भला? डाकिया बाबू। पूरा मोहल्ला उसका बेसब्री से इंतजार करता था, क्योंकि उसके थैले में सिर्फ कागज नहीं, किसी की तकदीर, किसी की खुशी या किसी का गम छुपा होता था। आज के समय ने भले ही उस नीले रंग के अंतरदेशीय पत्र या पोस्टकार्ड की जगह ले ली हो, वीडियो कॉल से आसानी से देखा बोला जा सकता हो, लेकिन डाकिया के उस थैले से निकलती खुशियां, आंसुओं, जज्बातों की जगह कोई नहीं ले सकता, क्योंकि इंसानी रिश्तों को जोड़ने वाली मजबूत डोर है डाकिया और खत उस डोर की पतंग।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया, हर लापता व्यक्ति के संबंध में तत्काल प्राथमिकी दर्ज होना जरूरी, चाहे उसकी उम्र या लिंग कुछ भी हो। यूक्रेन में रात भर हुए रूस के हवाई हमलों में 9 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों और ओडिशा में अगले 3 दिन के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी किया। और कनाडा ओपन टेनिस प्रतियोगिता में पोलैंड की इगा स्वियातेक ने रूस की डायना श्नाइडर को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। दिन में 11 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्ष के सदस्य संबंध में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने की अपील की।
1: सदन में चर्चा हो, प्रश्नकाल हो और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होना चाहिए। ये विधेयक देश और राष्ट्र के साथ बहुत बड़े परिवर्तन लाने के विधेयक होते हैं, इस पे अच्छी चर्चा संवाद होना चाहिए। लेकिन कल बीएससी की मीटिंग में भी आग्रह किया, आज फिर आग्रह कर रहा हूँ कि जिस विषय पर आप छात्रों के विषय पर मांग कर रहे थे, सरकार संसदीय कार्य मंत्री ने कल बीएससी की बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि गृह मंत्री इस बात पर जवाब देने को तैयार, सदन चलना चाहिए।
0: राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे। विपक्ष के हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया, लेकिन केवल बीजेडी के डॉक्टर संतृप्त मिश्रा ने ही सार्वजनिक महत्व के मुद्दे उठाए। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही इस समय जारी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने आज संसद परिसर में झारखंड में छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में मार्च निकाला। सांसदों ने आरोप लगाया कि सरकार के इस आश्वासन के बावजूद कि गृह मंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिक्रिया देने के तैयार हैं, विपक्ष चर्चा से बच रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने विपक्ष पर जानबूझकर संसद का कामकाज बाधित करने का आरोप लगाया।
2: पेपर लीक को लेकर भी जो तमाम बातें हुई, सरकार ने हर मांग को स्वीकार किया, एक नया कड़ा कानून बनाया। गृह मंत्री जी के वक्तव्य को लेकर लगातार ये मांग करते रहे हैं और हमारी सरकार ने स्पष्ट

0: सील हो सकता है। मुख्यमंत्री ट्वीट कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं किसको, झारखंड पुलिस को, बधाई दे रहे हैं जिला प्रशासन रांची को कि आपने बहुत शांति पूर्वक बहुत धैर्य से काम लिया।
1: नई दिल्ली में आकाशवाणी से बातचीत में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने, चर्चाओं का रुख बदलने और दोहरा राजनीतिक रवैया अपनाने का आरोप लगाया। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया कि कांग्रेस चर्चा नहीं चाहती और अपनी मांगे बदल रही है। कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने कहा है कि विपक्ष लगातार गृहमंत्री अमित शाह से प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई पर बयान की मांग कर रहा है। श्री खेड़ा ने आरोप लगाया कि गृहमंत्री इस मामले पर बयान देने से बच रहे हैं।
2: सदन में फिर से हमारी मांग वही रही, गृहमंत्री आए, चंदा चोरी जो छात्रों पर अत्याचार हुआ वो उन सब पे बयान दें, प्रधानमंत्री आकर माफी मांगे। लगातार विपक्ष यह मांग पिछले 17-18 दिन से कर रहा है लेकिन गृहमंत्री किसी वजह से डरे हुए हैं।
1: उधर झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर राजनीति तेज हो गई है। इस मुद्दे पर हंगामे के कारण विधानसभा की कार्यवाही भी बाधित हुई है। एक रिपोर्ट।
3: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। परीक्षाओं में सुधार की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन आज 18वें दिन भी जारी है। कल विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने का ऐलान किया है। छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा का झारखंड बंद आज रांची समेत कई इलाकों में प्रभावी रहा। प्रमुख बाजारों में प्रतिष्ठान बंद रहे और यातायात प्रभावित हुआ। राजधानी में पुलिस गश्त भी बढ़ा दी गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने सरकार पर युवाओं के साथ अन्याय का आरोप लगाया है। इधर झामुमो नेता मनोज पांडे ने छात्रों पर लाठीचार्ज से इनकार करते हुए कहा कि पुलिस ने आत्मरक्षा में न्यूनतम बल का इस्तेमाल किया। उन्होंने भाजपा पर छात्रों के मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। उधर विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन भी ये मुद्दा छाया रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों की नारेबाजी और हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेंगे। राज्यसभा में न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 विचार विमर्श और पारित करने के लिए पेश किया गया। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और सेवा में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज नई दिल्ली के संसद भवन परिसर में हुई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और अन्य नेताओं ने तिरंगा लहराया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि गुमशुदा व्यक्तियों की उम्र या लिंग चाहे जो हो उसके गुमशुदगी पर तुरंत प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य है। न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्ला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने इसका पालन न करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
4: शीर्ष न्यायालय ने इसका अनुपालन न करने वाले राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों को अदालत के समक्ष पेश होकर ये बताने का निर्देश दिया है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। न्यायालय ने इससे पहले पुलिस को सभी गुमशुदा व्यक्तियों के मामलों में बिना किसी प्रारंभिक जाँच के तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। अदालत ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने और उनकी सुरक्षा के लिए भी उपाय लागू किए थे। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज निर्वाचन आयोग से पश्चिम बंगाल की मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के दौरान मतदाताओं के नाम हटाए जाने से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई की। न्यायालय ने नियुक्त न्यायाधिकरणों द्वारा निपटाई गई अपीलों का विवरण देने को कहा। अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी ई मार्केटप्लेस जेम व्यापक भागीदारी, पारदर्शी खरीद और बेहतर अवसरों के माध्यम से सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में बदलाव ला रहा है। श्री मोदी ने ये बात वाणिज्य तथा उद्योग

0: मंत्री पीयूष गोयल द्वारा जेम के 10 वर्ष पर लिखे गए एक लेख को साझा करते हुए कही। शहरी विकास विभाग के सचिव सत्येंद्र सिंह ने कहा है कि किफायती आवास व्यवस्था को योजना आधारित दृष्टिकोण से विकसित करके एक सतत व्यवस्था में बदलना होगा, जिसमें स्वामित्व और किराए सहित आवास के लिए विभिन्न विकल्प हों। नई दिल्ली में आज आयोजित किफायती आवास की पुनर्कल्पना योजना से सतत व्यवस्था तक विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही। इस अवसर पर नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने कहा कि आवास को एक अलग कल्याणकारी उपाय के बजाय शहरी नियोजन और आर्थिक विकास के अभिन्न अंग के रूप में देखा जाना चाहिए। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT ने भारत के GI टैग प्राप्त उत्पादन के व्यवसायीकरण और वैश्विक बाजारों तक उनकी पहुंच को गति देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य GI उत्पादों की गुणवत्ता मानकीकरण, व्यापक बाजार पहुंच और डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देना और एक जिला एक उत्पाद तंत्र को मजबूत करना है। सरकार ने कहा है कि फरवरी 2024 में शुरू हुई प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से अब तक 5 लाख से अधिक परिवारों को लाभ मिला है। आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने ये बात कही। सरकार ने कहा है कि मौसम विभाग के समन्वय से मॉनसून की बदलती स्थिति और एलनीनो के कृषि पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों की लगातार निगरानी की जा रही है। कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये बात कही। झारखंड में राज्य पुलिस ने पश्चिम सिंहभूम जिले के सारंडा, कोल्हान और पुराहट वन प्रभागों को पूर्णतः नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। उप महानिरीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा ने बताया कि पिछले एक वर्ष में 52 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। स्वतंत्रता दिवस से पहले राष्ट्रव्यापी अभियान हर घर तिरंगा के अंतर्गत पंजाब में तिरंगा यात्रा निकाली गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा में सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया।
1: पंजाब भाजपा प्रधान केवल सिंह ढिल्लों की अगुवाई में कल शाम रोपड़ जिले में सैकड़ों युवाओं ने हाथ में तिरंगा लेकर देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। श्री ढिल्लों ने कहा कि पंजाब का इतिहास देश की आजादी के लिए दिए गए अनगिनत बलिदानों से भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा युवा पीढ़ी में देशभक्ति की भावना जगा रही है, राष्ट्रीय एकता को मजबूत कर रही है और आजादी की लड़ाई के दौरान सबसे बड़ी कुर्बानी देने वाले महान शहीदों को याद कर रही है। चंडीगढ़ प्रशासन ने हर घर तिरंगा वंदे मातरम के 150 वर्ष कैंपेन के तहत एक सांस्कृतिक प्रोग्राम आयोजित किया। आकाशवाणी समाचार के लिए जलंधर से मैं राजेश बाली।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और अन्य विधायकों ने दिल्ली विधानसभा परिसर में तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के 119वें बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। बंगाल के क्रांतिकारी खुदीराम बोस को सबसे पहले 1908 में आज ही के दिन अंग्रेजों ने फांसी दी थी। इस युवा क्रांतिकारी के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने ओडिशा में अगले 3 दिन के दौरान तेज बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। अगले 2 दिन में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और राजस्थान में भी तेज बारिश और बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
2: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू उपमंडल में आज भारी बारिश की संभावना को देखते हुए सभी शिक्षण संस्थानों को आधिकारिक तौर पर बंद रखा गया है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में भूस्खलन और बारिश के कारण 259 सड़कों पर यातायात बंद है। इसके अलावा 161 बिजली ट्रांसफार्मर और 54 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हैं। मंडी कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग 21 झलोगी के पास शूटिंग स्टोन गिरने से अवरुद्ध है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश के 5 जिलों शिमला, सिरमौर, कांगड़ा, हमीरपुर मंडी में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, जबकि 4 अन्य जिलों चंबा, कुल्लू, सोलन और बिलासपुर में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: यूक्रेन में रूस के हमलों में 9 लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबर है। क्षेत्रीय गवर्नर इवान फेडोरोव ने बताया कि ज़ापोरिज़्या में 6 लोग मारे गए और 19 घायल हुए। निप्रो पेत्रोवस्क क्षेत्र में 3 लोग मारे गए और 5 घायल हुए। कीव में भी हमला हुआ है। विश्व की पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी इगा स्वियातेक कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। स्वियातेक ने रूस की डायना श्नाइडर को पराजित किया। 6 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता स्वियातेक का सामना यूक्रेन की 9वीं वरीयता प्राप्त एलिना स्वितोलिना से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया, हर लापता व्यक्ति के संबंध में तत्काल प्राथमिकी दर्ज होना जरूरी, चाहे उसकी उम्र या लिंग कुछ भी हो। यूक्रेन में रात भर हुए रूस के हवाई हमलों में 9 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों और ओडिशा में अगले 3 दिन के लिए तेज बारिश की चेतावनी जारी की। और कनाडा ओपन टेनिस प्रतियोगिता में पोलैंड की इगा स्वियातेक ने रूस की डायना श्नाइडर को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

सदाबहार नगमे इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, फिल्म का नाम उड़न खटोला, गीतकार शकील बदायूनी, संगीतकार नौशाद साहेब।

0: लता मंगेशकर और सखियों को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था उड़न खटोला।
1: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
2: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं आती,
1: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
2: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
1: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: सलिल चौधरी की संगीत निर्देशन में शैलेंद्र की रचना सुनिए। गायिका है आशा भोंसले और फिल्म का नाम है जागते रहो।

0: 12 अगस्त दिन में और रात में 11 बजे
1: और लीजिए अब सुनिए फिल्म वचन का गीत आवाज आशा भोंसले की। इस गीत को संगीत दिया है रवि ने।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष तिवारी से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जीतवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जयो कहासे हुजूर।
3: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म का नाम है यास्मीन, आवाज लता मंगेशकर की, शब्दकार जानिसार अख्तर और संगीतकार सी रामचंद्र।

0: और आइए अब सुनते हैं फिल्म बारिश का दो गाना, आवाजें आशा भोसले और चितलकर की, शब्द राजेंद्र कृष्ण के हैं और धुन चितलकर यानी सी रामचंद्र की है।
1: जो सीने में दिल होता तो फिर हम तुम पे क्यों मरते, हाँ?

जैसा घटिया काम करते भी तो क्यों करते। हाय रे, हाय रे, डॉज गाड़ी के इंजन की कसम,

0: कभी हुआ है और न होगा देखो मेरे जैसा।
1: पहले तो दिल फेंक कभी ना देखा ऐसा वैसा।
0: कभी हुआ है और न होगा देखो मेरे जैसा। मानो या

0: हाय हाय रे।
1: वो कॉमिक क्रिएटर है।
2: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
1: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
2: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था, तो बहुत गाली दी उन्होंने। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
1: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
2: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस छिपका दी जाती।
1: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: और लीजिए अब सुनिए A.R. कुरैशी का संगीत, शिवान रिजवी का गीत, आशा भोसले की आवाज, फिल्म का नाम आलम आरा।

0: आकाशवाणी के रांची केंद्र से हम बोल रहे हैं।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। विधानसभा के मॉनसून सत्र के चौथे दिन आज सदन में जेपीएससी और जेएसएससी छात्र आंदोलन का मुद्दा छाया रहा। सुबह कार्यवाही शुरू होते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक वेल में आकर एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। सदन में जारी भारी शोर शराबे के और हंगामे को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने सदन की कार्यवाही को पहले दोपहर 12 बजे तक और फिर गतिरोध कम करने पर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के विरोध में आज भाजपा का झारखंड बंद सुबह से ही प्रभावी है। राजधानी रांची के अल्बर्ट टिक्का चौक, रातू रोड और कुकर सहित तमाम प्रमुख चौराहों पर व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे और यातायात पर असर देखा गया। प्रदर्शन में शामिल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने आरोप लगाया कि वर्तमान शासनकाल में युवाओं की नौकरियां बेची जा रही है और प्रशासन आमरण अनशन पर बैठे छात्रों पर दबाव बना रहा है। जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल में हुए गड़बड़ी को लेकर रांची में छात्रों के द्वारा पिछले 18 दिनों से किए जा रहे आंदोलन और झारखंड विधानसभा के घेराव पर पुलिस लाठीचार्ज की कार्रवाई को लेकर आज साहिबगंज जिला भाजपा की ओर से जिला मुख्यालय के सभी दुकानों को बंद कराया गया। राज्य व्यापारी बंद के समर्थन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला। राजमहल के पूर्व विधायक अनंत ओझा ने कहा कि राज्य सरकार अपने निकम्मेपन को छुपाने के लिए और इस गड़बड़ी में संलिप्तता को छुपाने के लिए छात्रों और मीडिया कर्मियों पर कार्रवाई कर रही है। उन्होंने इसकी जांच सीबीआई से कराने की मांग की।
2: छात्रों की मांग सीबीआई जांच होती है तो जांच का आज सरकार में बैठे हुए जो रहनुमा है जिनके इशारे पर इस प्रकार का चोरी हुआ है, छात्रों का हक मारी हुआ है, नौकरियां बेची गई है, नौकरियों का नीलामी हुई है, ये इस प्रकार का नीलामी का सच सामने आएगा, इसीलिए सरकार पीछे हट रही है और सीबीआई जांच कराने से कतराती है।
1: वहीं बोकारो जिले में भी भाजपा नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा नेताओं ने धनबाद पुरुलिया मुख्य मार्ग को जोदाडी मोड़ के पास जाम कर दिया। रांची में जेपीएससी समेत अन्य परीक्षाओं में गड़बड़ी दूर कराने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा द्वारा आहूत झारखंड बंद का खूंटी में व्यापक असर देखने को मिला। प्रदर्शन के दौरान पूर्व मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने राज्य सरकार से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। लोहरदगा में भाजपा द्वारा आहूत झारखंड बंद का लोहरदगा शहर में आंशिक प्रभाव देखा गया। कुछ समय के लिए भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने रेलवे साइडिंग के पास सड़क जाम कर नारेबाजी की। इधर भाजपा द्वारा आहूत झारखंड बंद का गिरिडीह में आंशिक असर देखने को मिला। सड़क पर वाहनों का परिचालन सामान्य है, ट्रेन सेवाएं प्रभावित नहीं हुई हैं। भाजपा नेताओं ने टावर चौक पर प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस ने सारंडा, कोल्हान और पोड़ा हाट को पूरी तरह नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। चाईबासा पुलिस केंद्र में सिंहभूम रेंज के डीआईजी अनुरंजन कसपुट्टा और वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष 10 लाख के इनामी नक्सली सालू का कायम सहित 4 उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया। डीआईजी ने बताया कि पिछले एक साल में 52 नक्सलियों ने सरेंडर किया है और अब जिले में ऑन रिकॉर्ड कोई नक्सली नहीं बचा है।
3: बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि ऑन रिकॉर्ड आपको वैसे नक्सली नहीं बचे इस जिला में जिसकी गिरफ्तारी या फिर और सरेंडर बाकी। मैंने आपको उसमें भी बताया था कि अब हमें बेहतर पुलिसिंग देना है ताकि ये जो नागरिक और हमारे जो पुलिस के बीच संबंध है वो स्थापित रहे।
1: रांची के वन्य मुख्यालय परिसर में प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजीव कुमार की अध्यक्षता में आदिवासी वन महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में वन विभाग के लगभग 500 पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान वन भवन परिसर में आदिवासी लोक जीवन और संस्कृति को दर्शाती एक विशेष प्रतिमा का अनावरण किया गया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। मंजरी जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपको और सुनने वाली सभी सखियों और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
1: क्यों क्या कैसे कहाँ
2: बस ऐसे ही जैसे
1: अब ये जो शब्द है आप चौंक गई ना अचानक।
2: बिल्कुल एकदम चौंक।
1: लेकिन आपने पूछा मन में सवाल आया होगा कि अचानक ये क्यों पूछ रही है।
2: बिल्कुल इसीलिए तो बोल रही है ऐसा वैसा जैसा कह के।
1: तो बस होता क्या है कि ये जो सवाल है ना जो मन में सवाल पैदा होते हैं यही जिज्ञासा पैदा करते हैं। अगर हमारे मन में सवाल खत्म हो जाए तो जिज्ञासा खत्म हो जाएगी। जहां से सृजन की यात्रा शुरू होती है तो अगर आपके मन में कौतूहल हो रहा है जिज्ञासा हो रही है तो समझ लीजिए कि आप कहीं जानकारियों का खजाना अपने भीतर पैदा करेंगे।
2: बिल्कुल और आपका ये अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगा ममता जी क्योंकि हमारे अंदर एकदम से लगा कि क्या पूछ रही है। तो थोड़ा मजा भी आता है जब ऐसी दो सखियां मिलके ऐसी मस्ती करती है।
1: बिल्कुल और ये कहा जाता है ना जिज्ञासा जितनी ज्यादा होगी जितनी गहरी होगी सृजन की यात्रा भी उतनी ज्यादा होगी।
2: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आज का हमारा विषय भी यही है सृजन का स्रोत और जिज्ञासा।
1: बिल्कुल
2: और सखी विशेष के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे महिला उद्यमी ऋचा कर जीवामे की संस्थापक है इनके बारे में बात करेंगे और मुहावरों की दुनिया में घोड़े बेचकर सोना तो इसके बारे में बात किया जाएगा और हल्की फुल्की बातें में चले मेला देखने यानी कि हमारे जो साथी हैं वो घोड़े बेचकर सोना के बारे में अपने अपने अनुभव लिखें और कुछ बातें भी लिखें और मेला देखने कब गए क्या खरीदा क्या देखा वहां की कुछ ऐसी किस्से याद हो तो वो छोटी छोटी सी उसमें लिखे चार चार लाइनों में पांच पांच लाइनों में तो मजा आएगा।
1: वैसे तो विषय में ही शब्द छुपे पड़े हैं घोड़े बेचकर सोना घोड़ा है। जब मेला देखने जाते थे तो हाथी घोड़े मिट्टी के हाथी घोड़े होते थे ना और वो ढेर सारे खरीद के लिए आते थे और उसमें शक्कर की मिठाइयां जो होती थी उसमें हाथी घोड़ा और वो अलग अलग आकृतियां बनी होती थी तो उसमें चुना जाता था कि हाथी लेंगे या घोड़ा लेंगे या हंस और चिड़िया बनी रहती थी।
2: बिल्कुल
1: और वो दिवाली पर खासतौर से
2: दिवाली प्रसाद के रूप खिलौने मिट्टी के
1: चढ़ाए जाते
2: थे खिलौने आते थे
1: और मेले में वो मिट्टी के खिलौने की खोज जरूर होती थी जब हम छोटे थे कि वो चक्री होती थी और जात छोटे छोटे चिमटे बेलन
2: और रसोई का जो छोटे छोटे सामान होता था वो लकड़ी के भी बिकते थे और
1: मिट्टी के भी बिकते थे और बाद में चीनी मिट्टी के
2: और बड़े सुंदर रंग भी होते थे गुलाबी सफेद पे गुलाबी हरा ऐसे लाइन करके
1: बड़ा। आप कौन सा रंग खरीदती थी
2: जो वहाँ पे मिल जाते थे गुलाबी हरा इसलिए क्योंकि वही
1: जाहिर सी बात है जो रंग
2: बोला है वही
1: पसंदीदा रंग होता है उसी को हम जाके चुनते थे और कई बार रंग उस रंग का न मिलने के कारण मेले में भटकते भी थे और ऐसा भी था कि मेले में जा रहे तो सिर्फ खिलौने ही नहीं मिलेंगे हर चीज मिल जाती थी।
2: बिल्कुल
1: अब तो जो मेला है वो मोबाइल पर और स्क्रीन पर होता है
2: लेकिन उन मेलों की यादें बहुत अच्छी हैं ताजी हो जाएंगी सबकी आज जब बातें करेंगे है ना।
1: और मेले में और भी तो कुछ होता था वो तो हिंडोला झूला होता था
2: तरह तरह के झूले होते थे तो उसका भी एक अलग मजा आता
1: और मेले में एक डर भी होता था अपने बड़ों का हाथ छूट जाने का माता
2: जाने का फिर जब अनाउंसमेंट होता था तो फिर ढूंढाई मस्ती थी कि कौन का ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे हादसे हुए हैं लेकिन फिर भी मेला जाना तो
1: एक मिनट के लिए भी अगर हाथ छूट जाए तो बस डर का ज्वार मन में आ जाता था कि अरे माँ कहाँ गई अभी हम कहीं खो न जाए गुम न जाए भीड़ में। तो मेले का एक अलग अनुभव होता है सबके भीतर एक मेला होता है उन मेले का अनुभव होता है उन अनुभवों को हमारे श्रोता साझा करें और कोई एक छोटी सी घटना याद हो तो लिखें विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/vbsmumbai टाइप करेंगे तो विविध भारती के फेसबुक पेज पर पहुंच जाएंगे। और घोड़े बेचकर सोना ये मुहावरा है मुहावरे बहुत सारे हैं दिन भर चले अढ़ाई कोस या फिर ऐसे बहुत सारे मुहावरे
2: जो नावे आंगन टेढ़े बहुत सारे हैं तो
1: और बड़े बुजुर्ग हमें याद है कि दादी नानी मुहावरों में लोकोक्तियों में बात किया करते थे लेकिन अब ये समय जैसे खत्म हो रहा है तो इन्हें जिंदा रखने के लिए कभी चर्चा तो करनी चाहिए। तो किन्हें कितने मुहावरे याद हैं लिख भेजे हमें
2: क्या
1: और अब हम क्या करें बताइए
2: हम तो गीत सुनते हैं
1: चलिए।

0: मंजरी जी, देखिए अपने पास विविध भारती के फेसबुक पेज पर श्रोताओं की टिप्पणियां लगातार आ रही हैं और एक हमारी सखी हैं जो लिख रही हैं कि मैं बेटी के घर बर्लिन से सखी सहेली सुन रही हूं। क्या बात है, अभी यहां सुबह का टाइम 11:33 है, हल्की सी ठंड है, दिन में थोड़ा गर्म हो जाएगा।
1: क्या बात है, आप इतनी दूर से सुन रही तो मेरा हम दोनों की तरफ से आपको बहुत बहुत नमस्कार
0: और शुक्रिया सुन रही है। और बहुत अच्छा लगता है जब इतनी दूर तक विविध भारती की आवाज गूंजती है।
1: सही बात है,
0: और जिज्ञासाएं भी बहुत सारी पैदा होती हैं जब हम कहीं दूर होते हैं तो और जिज्ञासा का घर होता है।
1: और जिज्ञासा में उन्होंने देखिए, हम लोग सोच ही सकते थे कि बर्लिन में क्या क्या मौसम है, कैसा मौसम है, तो उन्होंने बता ही दिया तो हमारी जिज्ञासा जो थी उठी थी, वो शांत हो गई।
0: बिल्कुल सही बात है। और अब तो जिज्ञासा शांत करने का बहुत बड़ा अपने पास औजार है, वो है गूगल मास्टर। जैसे मन में कोई कौतूहल होता है तुरंत गूगल पर जाकर लोग जानकारी हासिल कर लेते हैं, लेकिन एक समय था जब आपके भीतर कोई जिज्ञासा है तो उसको शांत करने के लिए बड़ों की शरण में जाना पड़ता था, टीचर्स की शरण में जाना पड़ता था।
1: और साथ साथ हम लोग किताबों में भी पढ़ा करते थे, ढूंढ के पढ़ते थे कि इसमें क्या है, किसके बारे में क्या लिखा गया है, तो किताबों को पढ़ने का एक अलग ही।
0: और किताबें पलटते हुए हम जब एक दो पन्ने पलटते तो उसमें और भी चार जानकारियां मिल जाती थी।

0: और जब हम अपने आसपास की चीजों और वस्तुओं, पेड़ पौधों और पशु पक्षियों और लोगों को देखते हैं ना ममता जी, तो कभी कभी लगता है कि उनका आकार कैसा है, रंग रूप, बोली भाषा और छोटी बड़ी सभी वस्तुओं के बारे में सोचते हैं कि ये क्या है, कैसी है, कैसे बनी है, कब बनी है, किसने बनाया और कहाँ से आई, क्यों जैसे सवाल मन में उठते हैं, तब जिज्ञासा का जन्म होता है। जिज्ञासा होने से ही सृजन के स्रोत का जन्म होता है, जैसे आपने शुरू में पूछा ही था कि क्यों कब, तो वही चीज है।
1: और ये जो सृजन का जन्म होता है तो जिज्ञासा से, तो इस जिज्ञासा को शांत करना बहुत जरूरी है, खासतौर से बच्चों की जिज्ञासा को शांत करना चाहिए। और एक जिज्ञासा मेरे मन में भी उठी है कि इस समय 3:15 होने को है, तो क्या किया जाए,
0: अंतराल लिया जाए,
1: देते हैं।

0: विविध भारती से यह कार्यक्रम सखी सहेली और बात जिज्ञासा की चल रही थी। मंजरी जी, जब जिज्ञासा की बात हम कहते हैं तो छोटे बच्चों में बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं और कई बार माता पिता अपनी व्यस्तता के चलते उन्हें शांत नहीं करते बल्कि इग्नोर कर देते हैं और टाल देते हैं, कई बार डांट देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उनकी जिज्ञासाएं शांत नहीं की गई तो फिर आगे चलकर वो पूछना ही बंद कर देंगे।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसे बच्चे पूछते भी ना कि मम्मी देखिए आसमान में चांद क्यों निकला है, रात में क्यों निकलता है, तारे क्यों झिलमिला रहे हैं, इस तरह के बच्चे बातें पूछते हैं, और सूरज इतना गर्म क्यों होता है। तो अगर आप उन बच्चों को सही से जवाब देंगे तो वो उनको बहुत समय तक याद रहेंगे और उनके मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं वो भी उस समय उनको उत्तर जब मिल जाता है तो वो खुश हो जाते हैं। तो कहना चाहिए जिज्ञासा हर किसी में होनी चाहिए किसी भी विषय को जानने की, और अगर वो प्रश्न करते हैं किसी सामने वाले से तो उसको भी सही जवाब देना चाहिए।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं। हमारे श्रोता बहुत सारी बातें लिख रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि सृजन का स्रोत जिज्ञासा, ये सत्य है कि कुछ नया रचने जानने या आविष्कार करने की प्रेरणा हमेशा मन की उत्कंठा या सवाल पूछने की आदत से ही पैदा होती है। जब तक मन में ये क्या है, ये काम कैसे करता है जैसे भाव नहीं उठते, तब तक किसी नए विचार या कला का जन्म संभव नहीं है। जिज्ञासा और सृजन का संबंध मन में उठने वाला एक छोटा प्रश्न नए रास्ते खोलता है। जिज्ञासा इंसान को उत्तर तलाशने के लिए प्रेरित करती है।
1: बिल्कुल। और ममता जी, इसी तरह एक साथी हमारे लिखते हैं कि जिज्ञासा ही सृजन की पहली सीढ़ी है। जब मन में किसी बात को जानने और कुछ नया खोजने की चाह जागती है तभी नए विचार जन्म लेते हैं। जब मन में सवाल आते हैं तो दिमाग जवाब ढूंढने लगता है, यहीं से सृजन की शुरुआत होती है। कुछ नया रचा जाता है, फिर वह कविता का रूप हो चाहे विज्ञान के रूप में आता है। जिज्ञासा ही नई कल्पनाओं को जन्म देता है और वही साकार रूप लेकर हमारे सामने आती है।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि जिज्ञासा जन्मजात गुण है, हर इंसान के भीतर होता है। यह न केवल ज्ञान के बंद दरवाजों को खोलने वाली पहली चाबी है बल्कि जीवन को रोमांच, नए अनुभवों और अंतहीन संभावनाओं से भरने का एकमात्र जरिया भी है। और आगे इन्होंने लिखा है कि विविध भारती से प्रसारित होने वाला कार्यक्रम जिज्ञासा इसीलिए ही हमें बहुत पसंद है।
1: क्या बात है, इतनी बढ़िया से उन्होंने तारीफ करी है। और जिज्ञासा सृजन का मूल स्रोत है, लिखते हमारे साथी। और सुरीली धड़कन विविध भारती पर भी जिज्ञासा से भरी सृजन रूपी गंगा

0: विविध भारती से ये है कार्यक्रम सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम में हम बातें करते हैं शिक्षा की, सेहत की, खेलकूद की और महिला उद्यमी की, और कई बार रसोई की भी बातें करते हैं। गांव से शहर तक, शहर से महानगर तक, महानगर से विदेशों तक भी हमारी आवाज गूंजती है।
1: बिल्कुल, और बड़ा अच्छा लगता है जब इस तरह की बातें होती है ना, तो जो हमारी महिलाएं जो निराशा की उसमें चली जाती है, तो वो ये सुनकर के बहुत उत्साहित होती है कि उन्हें हमारी बातों से उन्हें कुछ ना कुछ नया करने की एक सीख मिली है,
0: हौसला अफजाई भी करती है सखी सहेली, है ना। तो अब हम अगले विषय पर पहुंचते हैं और विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाते हैं कि देखते हैं कि हमारी सखियों ने और हमारे सखाओं ने क्या लिखा है, क्योंकि सखियों के साथ साथ सखा भी हमारे ये कार्यक्रम सुनते हैं,
1: बहुत रोचक तरीके से सुनते हैं हमारे सखा
0: जी। तो हमारे एक सखा

0: की टिप्पणी आई है, जिन्होंने लिखा है कि भाई सखी सहेली कार्यक्रम हमें बहुत पसंद है और मेले के बारे में अपने जज्बात साझा किए हैं। हमारी एक सखी हैं जो लिख रही हैं कि मेले को आज भी मनोरंजन का विशुद्ध साधन माना जाता है। बचपन में पापा की उंगली थाम कर न जाने कितने मेले देखे और जरा जरा सी चीजें खरीद कर जो मन को तसल्ली मिलती थी। मेले में देहाती फनकारों के हुनर काबिलियत की पेशकश देखना एक अलग ही आनंद देता था। पहली बार कठपुतली का नृत्य मैंने मेले में ही देखा था। मनोरंजन का ये खेल तमाशा दुनिया के किसी भी मेले में आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं। बचपन छूटने के साथ ही मेला देखने जाने का उत्साह भी पीछे छूट गया, मगर मेरे शहर में पुराने संग्रहालय की चीजों का और पुस्तक मेला समय समय पर लगता रहता है।
1: बिल्कुल, मेले की बात ही कुछ और होती है क्योंकि वहाँ पे इतनी सारी चीजें होती हैं, खाने पीने से लेकर के घर गृहस्थी के सामान हैं और बहुत सारी हस्तकला भी जो होती है वहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो जिसको जैसी जरूरत होती है वो वहाँ से उसी हिसाब से खरीद के लाता है, चाहे वो रसोई से जुड़ा हुआ सामान और कपड़े भी बहुत होते हैं, चटाइयां दरी हैं, तरह तरह के कपड़े वो भी वहाँ बने बनाए मिलते हैं मेलों में। तो सब लोग बहुत शौक से मेला देखते हैं और खरीदते हैं
0: और मेले में जगहों के बारे भी पूछते हैं। अब हमारे कुछ श्रोता जिज्ञासा की ओर फिर पहुंच गए हैं जो हमने सब्जेक्ट दिया था। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरा 7 साल का पोता है, मुझसे बड़े सवाल पूछते रहता है। मुझे पता होता है तो बता देती हूँ, पता नहीं होता तो तुरंत गूगल में सर्च करके बताती हूँ। इससे मेरे पोते की जिज्ञासा तो शांत हो जाती है लेकिन मेरा भी सामान्य ज्ञान बढ़ता रहता है।
1: बिल्कुल, और इसी तरह एक लिखते हैं कि जिज्ञासा हर प्रकार के सृजन आविष्कार और ज्ञान की मूल आंतरिक प्रेरणा है। जब मन में क्यों क्या और कैसे जैसे प्रश्न उठते हैं तभी किसी नए विचार विज्ञान या कला का मार्ग खुलता है।
0: और अब एक गाना सुनते हैं फिर और बातें करते हैं।

0: विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली। और मंजरी जी, इसमें कितनी सारी बातें होती हैं सखी सहेली में, शिक्षा की बातें, खेल की बातें और महिला उद्यमी की बातें करते हैं। अब देखिए ना, आज हमने विषय मेला भी दिया है, तो मेले की कितनी सारी टिप्पणियां श्रोताओं की आई हैं। हमारे कुछ श्रोता लिख रहे हैं कि हम मेले में जाते थे, गुम हो जाते थे। कुछ श्रोता लिख रहे हैं कि मेले का इंतजार रहता था साल भर, और गांव में जब मेला लगता था तो बाकायदा ऐलान किया जाता था कि मेला लगने वाला है, तो वहां से खिलौने खरीदेंगे, कपड़े खरीदेंगे, किताबें, और अब तो किताबों का भी मेला लगता है।
1: और मेले में ममता जी, वहां पर गुड़ के सेव है, चक्की है, लड्डू है, लैया के लड्डू, खील के लड्डू, ये सब भी बहुत बिका करते थे। और आइसक्रीम खाने का चाट के ठेले लगते थे, तो उसका भी एक अलग मजा आता था। और मिट्टी के बर्तन, लकड़ी के खिलौने, श्रृंगार के कितने सारे सामान होते थे, चूड़ी बिंदी। और मुझे याद है कि वो जो बड़े बड़े रिबन हुआ करते थे, वो उस समय भी खरीद के लाते थे।
0: और एक चीज की हिंडोला होता था, और बड़े वाले हिंडोले पर बैठने पर डर बहुत लगता था।
1: जी,
0: हमारी एक सखी ने लिखा है कि मैं सिर्फ एक बार ही मेला गई थी मेरे दोस्तों के साथ, करीब 4 साल पहले दशहरे के मेले में। वहां से मैंने एक लकड़ी की हेयर स्टिक ली थी, जो अभी भी मेरे पास है। और वहां मैंने एक छोटे बच्चों का टी शर्ट देखा था, जिसके लिए मैंने बहुत जिद की थी, पर मुझे मेरे दोस्तों ने नहीं लेने दिया।
1: और देखिए, हमारे एक साथी लिखते हैं कि मेले की बात कर अपनी बचपन की बहुत यादें सामने से गुजरी हुई दिखाई दी। हमारे जमाने में मेला देखने जाना ऐसा होता था कि कहीं कोई दूसरी ही दुनिया में घूमने जा रहा है। मैं अपने चाचा जी के पास रहती थी, तो वहां मेला लगता था मेरे घर के सामने ही, रोज ही देखती थी। और दशहरा का मेला तो देखने हम सब भाई बहन चाचा जी के साथ देखने जाते थे। वाकई में मेले से बहुत सारी यादें जुड़ी है। बाइस्कोप होता था, वो घिसी हुई आइसक्रीम होती थी, है ना, जो बर्फ का गोला, जिसे
0: बर्फ का गोला, और उसमें रंगीन मांगते थे कि ऑरेंज नारंगी कलर का दो, और कोई काले काला खट्टा काला वाला लेते थे, और वो पूरे ओठ रंग जाते थे। तो उसमें फिर उस समय तो मोबाइल था नहीं कि तस्वीर खींची जाए, पर किसी गांव में किसी के पास कैमरा हुआ करता था बड़ा वाला, तो कैमरा ले आके उसके पास जाते थे कि उस कैमरे से फोटो ले ली जाए, फिर वो फोटो प्रिंट करवा के मिलती थी बहुत मिन्नत करने पर।
1: बिल्कुल, और कई कई मेलों में होता भी था ममता जी, पर्दे लगा करके, वो चांद तारा है, और क्या कहते हैं, मोटरसाइकिल रखी है, उस पर फोटो खींचने के लिए सुविधा बनी रहती थी। तो हम लोग ने भी बहुत इस तरह से कि ऐसे चांद है, उसके ऊपर बैठ के फोटो खींचा रहे, जैसे लग रहा हम आसमान की सैर कर रहे हैं, मोटरसाइकिल पे बैठ रहे हैं कि अरे वाह हम तो मोटरसाइकिल चला रहे हैं। तो इस तरह की फोटो जब देखते हैं वापस एल्बम में, तो मेले की यादें ताजा हो जाती है। और मेले में जो एक आता था गुलाबी कलर का पैकेट में बंद होता था, बुढ़िया के बाल जिसे कहते हैं, वो हम लोग खरीदते थे, क्योंकि उससे ओट और जवान लाल हो जाती थी, तो बड़ा मजा आता था। तो मेले में कहना चाहिए कि सब चीजें, और वहां पे डांस वगैरह भी होते थे पशुओं के, तोता को दिखाया जा रहा है चढ़ रहा उतर रहा है, पर्ची निकाल रहा है,
0: कठपुतली का नृत्य दिखाया जाता था, वो बहुत आनंद आता था। और जो लोक नृत्य दिखाए जाते थे उसकी तो छटा लगी होती थी। एक हमारी श्रोता ने लिखा है कि सोशल मीडिया और मोबाइल ने हम लोगों को कुछ इस कदर मोहपाश में बांधा है, देर रात तक हम अपने सुख चैन और आंखों को मोबाइल के हवाले कर देते हैं, फिर लेट नाइट घोड़े बेचकर ऐसे सोते हैं कि सीधे दोपहर ही जागते हैं, और मोबाइल की लत ने हमें घूमना फिरना मेलों ठेलों का मोह भंग कर दिया है। दशहरा मेला हो, चाहे नवरात्रि का मेला हो, व्यापार मेला हो, कोई सांस्कृतिक मेला, बच्चों को कहो कि चलो भाई सब चलो, कुछ बाहर की रौनक देखकर आते हैं। इस पर बच्चे

0: ते भला भीड़ भाड़ में धक्के खाने कौन बाहर जाएगा, हम घर पर ही रहकर ये सब कुछ मोबाइल के जरिए रील में देख लेंगे। मगर मोबाइल और सोशल मीडिया के इस आधुनिक युग के चलते गांव देहातों में मेलों का क्रेज आज भी बरकरार है। मेले हमारी भारतीय संस्कृति और परंपरा की अनूठी मिसाल है और इसे जीवित रखने के लिए समय समय पर मेलों का आयोजन होते रहना चाहिए।
1: जी, और एक लिखते हैं ममता जी कि मेले तो बहुत गए हैं, बचपन में पानी वाली बॉल अक्सर लाते थे और बहन के लिए मिट्टी के घंटी और चूल्हा हांडी तवा बेलन चकला वगैरह लाते थे, बहुत सुंदर सुंदर होते थे ये डिजाइन। और एक लिखते हैं पहले मेले मंदिर के चौगान में लगते थे जो दर्शनार्थी दर्शन करते और कुछ आनंद लुटाते थे, अब मेले बड़े शहर में लगने लगे हैं, गाँव में बंद हो गए हैं।
0: और एक श्रोता ने लिखा है कि हल्की फुल्की बातें के अंतर्गत हमने मेले के बारे में लिखा है कि मेला देखने आज मैं जाती हूँ, मैं अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ। जब मैं बचपन में मेला देखने जाती थी तो मुझे खिलौने का बहुत ज्यादा क्रेज रहता था, मेला देखेंगे ये खिलौना मिलेगा, वो खिलौना खरीदेंगे, ये कहेंगे वो कहेंगे, और इस चक्कर में मैं तो जाती खिलौने देखने और खाने, कितनी बार मेरे पेरेंट्स का झगड़ा हो जाता कि ये बहुत ज्यादा खिलौने की जिद कर रही है। और वहीं पर मेले में इस बात को लेकर मेरे पेरेंट्स का झगड़ा हो जाता, मेरे खिलौने की जिद को लेकर ये मेरा बचपन का सबसे ज्यादा अनुभव रहा है मेला देखने का। वैसे मेरा मेला देखने का मजा अलग ही होता है, वहां जाकर खिलौने खरीदना, अब चूड़ियां खरीदना, खाना बहुत ज्यादा मजा आता है। अब तो मेले में सब कुछ एक साथ मिल जाता है, मतलब खाने के अलग अलग स्टॉल भी होते हैं और चीजें तो अभी मिलती हैं, अभी भी मेले लगते हैं। अभी मुंबई जैसे महानगर में भी मेला लगता है जहां पर पूरे देश की लोग आते हैं और चीजें मिलती हैं, वहां पर बहुत सारी लोक संस्कृति की चीजें होती हैं, लकड़ी के खिलौने, लकड़ी के बर्तन और तरह तरह के अचार भी मेले में मिलते हैं।
1: अचार है, चूरन है, चिप्स, पापड़, कचरी, ये सब भी बहुत मिलता है। और जो बहुत सारी चीजें बर्तने कटर वगैरह जैसे आ गए हैं मार्केट में, तो वो सब भी मिलते हैं और तरह तरह की जैसे आपने चूड़ियां,
0: लेकिन लोगों के पास वक्त नहीं है। अब जो मेले में भीड़ होती है वो बड़ों की भीड़ होती है, ज्यादातर उम्र दराज लोगों की, बच्चों की भीड़ नहीं होती है।
1: बच्चों की भीड़ तो उन मेलों में हुआ करती थी जहाँ झूले वगैरह होते,
0: क्योंकि अब जो हमारे एक श्रोता ने लिखा भी है कि मोबाइल में सब कुछ है, तो सब बच्चों को अगर कहा जाए कि चलो घूम के आते हैं, दशहरे का मेला देखाते हैं, दुर्गा पूजा देखाते हैं, तो बच्चों की यही बात होती है कि इतनी देर हम पढ़ाई कर लेंगे, और पढ़ाई तो क्या, जब माता पिता घर में नहीं रहते तो पढ़ाई के साथ साथ उनका एंटरटेनमेंट स्क्रीन के सामने भी होता है।
1: और हमारे साथी एक लिखते हैं ममता जी इसी पर कि वैसे तो मैं शुरू से शहर में ही रही हूं, तो दशहरे में जो मूर्ति बिठाई जाती थी वही मेले जैसा भी लगता था, हम लोग भी वहीं जाते थे। दशहरा के चार दिन यानी सप्तमी से दशमी तक मम्मी घूमने जाने से 20 रुपए देती थी, उससे ही हम लोग झूला भी झूलते थे, चाट वगैरह भी खाते थे और कुछ खरीद भी लेते थे। अभी भी डिज्नीलैंड में जाती हूँ तो मुझे हर एक माल 10 रुपए या 20 रुपए वाला सामान खरीदने में ज्यादा मजा आता है, वहां मैं बड़े सामान कुछ भी नहीं खरीदती हूँ। और एक लिखते कि मेला हमेशा गर्मी की छुट्टियों में ही लगता है, मैं मेरे दोनों छोटे नातियों को लेकर मेले गई, बड़े बच्चे तो बड़े झूलों में बैठे थे लेकिन छोटे झूलों में दोनों नातनियों ने को लेकर मैं खड़ी थी, अचानक से धूल भरी आंधी चालू हुई, लगभग सभी झूले रोक दिए गए, शॉर्ट सर्किट भी होने लगा, जल्दी जल्दी सब बाहर निकलने लगे। उस समय बहुत घबराहट बहुत ज्यादा हो रही थी क्योंकि दो छोटे मेरे पास थे और बाकी सारा दूसरा ग्रुप अलग था। फिर कुछ देर सब लोग मिल गए, बाहर आए तब तेज बारिश भी होने लगी थी। कई बार हो जाता है ऐसा, मौसम बदल जाता है अचानक तो पता नहीं चलता है कि हम तो मेला घूमने गए लेकिन इस तरह की समस्याएं हो जाती। तो ऐसे ही कहा जाता है कि अपने बच्चों का बहुत आप ध्यान रखें जब भी कहीं जाएं। तो
0: अब बातचीत को थोड़ी देर के लिए दे रहे हैं विराम और सुनवाते हैं अपने श्रोताओं को ये गाना। कई बार यादों का भी मेला होता है, तो यादों का मेला बहुत विशाल होता है जिसकी कोई सीमा नहीं होती। देखते हैं इस गाने में क्या बात है।

0: हूं। तो ममता जी, आज हम बात करने वाले हैं सखी विशेष के अंतर्गत महिला उद्यमी ऋचा कर के बारे में, जो जीवामे कंपनी की संस्थापक है। और अक्सर क्या होता है, जब महिलाएं शॉपिंग पर जाती हैं तो अपने आंतरिक वस्त्रों के लिए एक खरीदने में उन्हें एक शर्म सी और झिझक सी महसूस होती है कि कैसे उनके बारे में हम बताएं, क्योंकि ज्यादातर पुरुष ही ग्राहक को कपड़ा दिखाते हैं। तो इस समस्या पर जो ध्यान था ना वो इन ऋचा जो कर थी उनका गया, और उन्होंने इस बारे में सोचा कि हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए। तो उन्होंने ऋचा कर जो थी वो जीवामे कंपनी की संस्थापक और पूर्व सीईओ है। जीवामे ब्रांड ऑनलाइन लग्जरी अंडरगारमेंट्स की एक कंपनी है। तो उनका इस पर ध्यान गया और उन्होंने इस तरह से कंपनी को आगे बढ़ाया।
1: और ऋचा जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। ऋचा कर का जन्म हुआ था जुलाई 1980 को झारखंड के जमशेदपुर के एक रूढ़िवादी मध्यम वर्गीय परिवार में। उनके पिता टाटा स्टील में काम करते थे और परिवार में आदर्श मूल्य संस्कार और सामाजिक रीति रिवाजों को मान्यता दी जाती थी। ऐसे परिवार में ऋचा कर ने आगे चलकर अलग ही व्यवसाय को चुना, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। ऋचा के सपने इन सीमाओं से कहीं ज्यादा बड़े थे।
0: और उन्होंने बिट्स पिलानी से इंजीनियर की पढ़ाई की। उस समय ये किसी लड़की के लिए आसान नहीं था। साल 2007 में उन्होंने मुंबई के नरसिंह मौजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में से वहां से उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हासिल किया और बाद में मास्टर्स डिग्री भी पूरी की। वे शुरू से कुछ बहुत बड़ा करना चाहती थी और पढ़ाई पूरी करने के बाद ऋचा ने आईटी क्षेत्र में कदम रखा और रिटेल कंसल्टेंसी जैसे प्रतिष्ठित कंपनियों में काम किया। इस दौरान उन्होंने रिटेल और मार्केटिंग की गहरी समझ हासिल की, जो उनके बिजनेस में काफी काम आई। और ऋचा जब एक संस्थान में काम कर रही थी तो उन्हें एहसास हुआ कि बाजार में आज भी महिलाएं इस तरह के वस्त्रों को लेने में असहज और संकोच महसूस करती हैं। दुकानों में चैन के विकल्प कम और प्राइवेसी भी नहीं लगती, साथ ही में सही साइज नहीं मिलना एक बड़ी आम समस्या हो गई थी। बस यही से इस कंपनी को आगे बढ़ाने का उनका ध्यान गया।
1: और 2011 में ऋचा ने अपने पति और सह संस्थापक विवेक कर के साथ मिलकर जीवामे की शुरुआत की। ये भारत का पहला ऑनलाइन लग्जरी ब्रांड था, जिसका उद्देश्य था महिलाओं को स्टाइलिश, आरामदायक और किफायती लॉन्जरी उपलब्ध कराना, वो भी पूरी प्राइवेसी के साथ।
0: जी, और शुरुआती दौर में फंडिंग जुटाना भी बहुत चुनौतीपूर्ण था, लेकिन अपनी बचत और उधार लेकर इस सपने को हकीकत में बदला उन्होंने। और जो इसको इस खरीदारी को मतलब इस आंतरिक वस्तुओं की खरीदारी को उन्होंने इस तरह से ऑनलाइन पर ला करके बहुत ही सुविधाजनक बनाया और बल्कि इसे एक सशक्त अनुभव में बदल दिया। ग्राहकों का भरोसा जीतने के साथ जीवामे जल्द ही भारत का विक्टोरिया सीक्रेट बन गया। साल 2014 में फॉर्च्यून इंडिया की अंडर 40 की लिस्ट में शामिल किया गया और कंपनी की ऊंची उड़ान को देखते हुए साल 2015 में उद्योगपतियों ने भी इसमें निवेश किया, जिससे कंपनी की कीमत कई मिलियन डॉलर हो गई।
1: और जब किसी और कंपनी ने टेक ओवर किया तो ऋचा ने सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अभी भी शामिल है। आज जीवामे की वैल्यूएशन 16,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो चुकी है और ये ब्रांड लाखों भारतीय महिलाओं के लिए आत्मविश्वास और सहजता का प्रतीक बन गया है। ऋचा कर की जिंदगी हमें सिखाती है कि सपने वही सच होते हैं जिनका पीछा करने की हिम्मत हो। चाहे आप किसी छोटे शहर से हो, रूढ़िवादी परिवार से क्यों न हो, या समाज आपको पीछे खींचे, अगर आपके पास जुनून है, मेहनत है, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है।
0: जी,
1: अब इसके बाद एक गाना सुनते हैं।

कैसे भीगे भीगे प्यारे प्यारे हैं नज़ारे। बारिश के मौसम में नज़ारे का आनंद कुछ अलग ही होता है, और इस बारिश के मौसम में नींद भी खूब जम

0: के आती है,
1: बिल्कुल,
0: और तेज बारिश हो रही हो तो ऐसे लगता है कि जम के सो जाया जाए, है ना,
1: बिल्कुल घोड़े बेच कर सो जाए।
0: और आज हमने विषय भी दिया है अपने श्रोताओं को कि मुहावरों की जो दुनिया पहले होती थी बड़ी आबाद रहती थी, मुहावरों में बात करने का एक अलग ही जायका होता है, मिजाज होता है, लेकिन अब ये तरीका बिल्कुल विलुप्त हो रहा है। लोग अगर मुहावरा बोलना भी चाहें तो सामने वाला समझता ही नहीं। आप आने वाली पीढ़ी के सामने मुहावरे का प्रयोग करके देखिए,
1: वो सिर्फ कोर्स में ही पढ़ के समझते हैं। हम लोग तो अपने घर में दादी नानी जो थी, मम्मी वगैरह, ये सब हर बात में कहावते मुहावरे बोलती थी। कुछ नहीं काम आ रहा है तो कह रहे हैं कि नाचना आवे आंगन टेढ़ा।
0: बिल्कुल। अब देखिए ना, हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि घोड़े बेचकर सोने वाले मुहावरे से मुझे एक घटना याद आ गई। मेरी भतीजी की शादी थी, बुआ होने के नाते मेरे ऊपर भी काफी जिम्मेदारियां थी। दो तीन दिन के भागदौड़ के बाद जब बारात की विदाई हो गई तो जहां जगह मिला वहां सो गई। इत्तेफाक से उस दिन मेरे बेटे का जन्मदिन था, उसे जन्मदिन सेलिब्रेट करना था, पर मैं तो घोड़े बेचकर सो रही थी। उसने मुझे इस तरह से कभी सोते नहीं देखा था तो घबराकर रोने लगा। तब उसके पापा ने उसे समझाया और मुझे जगाया। फिर किसी तरह से केक कटवाकर हम सबको बाय बोलकर फिर से घोड़े बेचकर मैं तो सो गई।
1: क्या बात है, कितनी अच्छी सी यादें हैं।
0: वैसे ये घोड़े बेचकर नींद आजकल आ जाए तो ये अच्छी बात है, इससे बड़ा खुश नसीब कोई है नहीं।
1: बिल्कुल, जिसको गहरी नींद आती हो,
0: गहरी नींद और देर तक आती हो। क्योंकि अब जो जमाना है, जो सोशल मीडिया, मोबाइल स्क्रीन और व्यस्तता और सबकी दोहरी तहरी जिम्मेदारियों ने नींद हनन कर ली है। और
1: जहां बगल में मोबाइल रखा रहता है, जरा सी मैसेज आई नहीं पट से देखने लग गए, तो ये चीज बहुत गड़बड़ हो गई नींद हमारी। तो हमारे साथी लिखते हैं, घोड़े बेचकर सोना हिंदी का बेहद प्रसिद्ध और लोकप्रिय मुहावरा है, जिसे रोज मजाक की बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया जाता है। अगर बहुत उठाने पर भी नींद से कोई नहीं उठता है तो कहा जाता है कि घोड़े बेचकर सो रहे थे। लोग बोलते हैं कि बेटी का ब्याह कर लिया, अब तो हमको घोड़े बेचकर सोना है। इसका मतलब निश्चिंत होकर गहरी नींद में सोना या सारी चिंताओं को छोड़कर बेफिक्र हो जाना। मुहावरे का अर्थ और प्रयोग ये कहता है कि जब कोई व्यक्ति किसी तरह के तनाव या डर के बिना आराम से सोता है, बहुत लापरवाही होने पर भी इसका प्रयोग होता है। इस अर्थ में भी होता है कि व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से बेखबर होकर सो रहा है। कई बार कहते हैं कि भाई तुम इतना सो रहे हो घोड़े बेचकर, क्या तुमने पढ़ाई वढ़ाई पूरी कर ली है क्या, इस तरह से भी कहा जाता है। और ममता जी हमारे और साथी लिखते हैं कि घोड़े बेचकर मुहावरे का अर्थ निश्चिंत और बेफिक्री गहरी नींद लेना होता है। पुराने समय में घोड़े के व्यापारी को घोड़े की देखभाल के लिए रात भर जागना पड़ता था। जब घोड़ा बेचा जाता था तब निश्चिंत होकर चैन की नींद ले सकते थे। तो इस तरह की बातें हमारे साथियों ने लिखी है। और एक लिखते हैं, मुहावरे की दुनिया घोड़े बेचकर सोना, अभी सखी सहेली शुरू होने से पहले वो घोड़े बेचकर ही सो रही थी, और इस मुहावरे का अर्थ है निश्चिंत कर गहरी नींद में सोना। और ये मुहावरा हम सबके जीवन में लगभग, मैं कहूंगी कि रोज ही प्रयोग होता है। और कवि का और कहती है कि हम घोड़े बेचकर रविवार के दिन सो जाते हैं, उसके कारण से हमारे रोजमर्रा के कामों में बहुत ज्यादा देरी हो जाती है। ऐसा अनुभव मेरा तो कितनी बार रहा है, कितनी बार घोड़े बेचकर ऐसे सो गए कि मुझे सुबह उठकर काफी भागीदारी, मतलब दौड़ भाग लगानी पड़ी काम करने के लिए। और ये कहती है कि भाई भागा दौड़ी में दिन भी बीत जाता है इस तरह से।
0: दरअसल घोड़े बेचकर सोने का जो मुहावरा प्रचलित हुआ कि पहले के जमाने में घोड़ा घर पे होता था, मतलब आंगन द्वार पर घोड़ा बंधा होता था, और उसके पीछे बहुत सारी लागत लगती थी, क्योंकि जिसके द्वार पर घोड़ा होता था वो कहा जाता था बहुत समृद्ध इंसान है, और उसके पीछे जो खान पान होता था वो बहुत कुछ लगता था, लागत लगती थी, तो बेचने पर पैसे बहुत मिलते थे, वो इंसान समृद्ध हो जाता था। तो एक बार जब पैसे से समृद्ध हो इंसान को नींद अच्छी आए, तो ये मुहावरा उस समय बना था। और इस मुहावरे का प्रयोग कई बार नकारात्मक भी हो जाता है, इम्तिहान के दिन जब होते हैं, परीक्षा की घड़ी होती है, तो पढ़ते पढ़ते कई बार रात हो जाती है, सुबह के 4 बज जाते हैं, और पता चला कि बस एक झपकी ले लेते हैं और उठ के तैयार होके परीक्षा देने जाना है, तो पता चला कि आप सोते ही रह गए। वहां घोड़ा बेचकर सोने वाली बात तो है नहीं, लेकिन नींद ऐसी आई कि आपकी परीक्षा को देर हो गई। कई घटनाएं ऐसी भी घटित हुई कि लोग परीक्षा के पहले सोते ही रह गए, और या नींद तब खुली जब परीक्षा का टाइम हो गया, तो भागते भागते आप परीक्षा हॉल तक पहुंच रहे हैं।
1: कई बार ऐसी चीजें हो भी जाती हैं,
0: ऐसी नींद भी होती है।
1: बिल्कुल। और हमारे साथी लिखते हैं कि कुछ लोग तो सचमुच नींद में ऐसे सोते हैं कि लगता है अब वो इस दुनिया में है ही नहीं। एक परिवार के साथ सुबह के टाइम में हम लोग चले गए और

0: मंदिर घर मंदिर मतलब मंदिर चले गए। घर में बहू और उसकी बच्ची थी। मंदिर से लौटते हमें 10 बज गया। जब दरवाजा खुलवाया गया तो बहू को सुना ही नहीं दे रहा था। आधा मोहल्ले के लोग जुट गए और बहू दरवाजा खोल ही नहीं रही थी। बड़ा डर लग रहा था। अंत में दूसरे के घर में जाकर बांस की सीढ़ी लगाकर खिड़की पर डंडे से पीटा गया तो बहू की बच्चे की रोने की आवाज आई तो बहू बोली कि सो गए थे, सुनाई नहीं दे रहा था। उसके बाद से उन लोगों ने उनके परिवार ने बहू को पर कभी मतलब बहू को घर पर कभी नहीं छोड़ा कि ये जब जाते हैं तो कहीं ऐसा ना हो फिर से सो जाए।
1: और एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि भाई सो गए फिर क्या, देह पर मक्खी बैठे, मच्छरों ने अटैक किया, क्या अंतर पड़ता है। अब सोए तो सोए लेकिन ध्यान रहे कि ये सोए ही नहीं अपितु घोड़े भी बेचकर सोए हुए हैं, यानी पूरी तरह से गंभीर निद्रा में सो रहे हैं। जबकि निद्रा के संबंध में कहा गया कि ये निद्रा श्वान की भांति होनी चाहिए विद्यार्थियों के लिए, और हम लोग इस जग पाठशाला के एक विद्यार्थी ही तो हैं, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण मुहावरा है और इसके निहितार्थ यही है कि निद्रा तो एक बहाना है, सच तो समस्याओं से बचते रहने का एक उपाय मात्र ही है। दरअसल कई बार इसमें लापरवाही भी छिपी होती है और अब आगे की जो जनरेशन है कई बार इसी तरह की नींद सोती है कि आप जगाते रहो उठना ही नहीं।
0: उनकी भी देखिए वो लोग देर रात तक सोशल मीडिया मोबाइल में लगे रहते हैं, अपने फ्रेंड से बातें करते रहेंगे, नहीं तो कुछ सर्च ही कर रहे हैं, नहीं तो लेट नाइट पढ़ ही रहे हैं, तो उससे क्या होता है फिर वो सुबह मतलब पता चला वो 3 बजे सो।
1: अब उल्टा हो रहा है मामला क्योंकि अब लोगों को घोड़े बेचकर सोने की आदत नहीं बल्कि नींद से जूझने की आदत पड़ गई है, और ये नींद से जूझने वाली जो बात है गाने में भी प्रयुक्त हुई है। देखते हैं इस गाने में क्या है। फिल्म है पोस्ट बॉक्स नंबर 999।

0: अब मंजरी जी घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल वक्त नहीं कि कुछ बोले बतिया या गाना सुनवाए। लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और मंजरी वर्मा का नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: अभिनय के साथी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन संघर्ष अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प
3: का ये रांची केंद्र है। आइए सुनिए प्रादेशिक मुख्य समाचार।
4: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। विधानसभा के मॉनसून सत्र के चौथे दिन आज सदन में जेपीएससी और जेएसएससी छात्र आंदोलन का मुद्दा छाया रहा। सुबह कार्यवाही शुरू होते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक वेल में आकर एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। सदन में जारी भारी शोर शराबे के कारण देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने लगातार दो बार सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। दोपहर बाद सदन की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामे को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के विरोध में आज भाजपा का झारखंड बंद सुबह से ही प्रभावी है। राजधानी रांची के अल्बर्टिका चौक, रातू रोड और कोकर सहित तमाम प्रमुख चौराहों पर व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे और यातायात पर असर देखा गया। प्रदर्शन में शामिल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने आरोप लगाया कि वर्तमान शासनकाल में युवाओं की नौकरियां बेची जा रही हैं और प्रशासन आमरण अनशन पर बैठे छात्रों पर दबाव बना रही है। जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल में हुए गड़बड़ी को लेकर रांची में छात्रों के द्वारा पिछले 18 दिनों से किए जा रहे आंदोलन और झारखंड विधानसभा के घेराव पर पुलिस लाठीचार्ज की कार्रवाई को लेकर आज साहिबगंज, बोकारो, धनबाद, खूंटी एवं लोहरदगा में झारखंड बंद का असर देखने को मिला। पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस ने सारंडा, कोल्हान और पोड़ा हाट को पूरी तरह नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। चाईबासा पुलिस केंद्र में सिंहभूम रेंज के डीआईजी अनुरंजन किस्पोट्टा और वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष 10 लाख के इनामी नक्सली सालुका कायम सहित चार उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया। रांची के वन मुख्यालय परिसर में प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजीव कुमार की अध्यक्षता में आदिवासी वन महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में वन विभाग के लगभग 500 पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
5: फिल्म स्वराज।
6: अच्छा, अनवर साहब डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर जो
5: जी
6: है।
5: जी जी, और उन्होंने एनएसडी में रहते हुए ही जब एक प्ले देखने आए थे वो अपने पत्नी के साथ, सहजोजी के साथ, वहां उन्होंने मुझे देख के मुझे कहा कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ। और सारे एनएसडी के मेरे सीनियर्स थे एक्टर्स, चार औरतों की कहानी थी वो।
6: ओके।
5: और उन्होंने वहां से मुझे कास्ट की और हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक करते थे
6: गाना
5: क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहां बिजली नहीं थी।
6: अरे अरे।
5: और हम गांव में मतलब रह रहे थे, इतना मजा आया था ना राजस्थान के गांव में। और शाम में मतलब 6:30 के बाद अपने हट में जाओ रजाई के अंदर और पूरी रात हम गाना गाते थे और सुबह 4 बजे उठ के नहा के शूटिंग, क्योंकि 6:30-7 बजे से हम लोगों की शूटिंग शुरू हो जाती थी, हमको तैयार होना पड़ता था। बहुत मजा आया। वो मेरी पहली फिल्म थी स्वराज, एंड स्वराज को नेशनल अवार्ड भी मिली थी सोशल ड्रामा के लिए, बेस्ट सोशल ड्रामा। फिर उसके बाद मैंने एक छोटी सी फिल्म की बम्बई में बस यूं ही करके, और फिर मुझे बस यूं के बाद राजा मेनन की फिल्म, जो अभी बहुत ही फेमस डायरेक्टर है, उन्होंने एयरलिफ्ट बनाई, उनके साथ मैंने 2 पिक्चरें की, बस यूं ही और 12 आना। उसके बाद मुझे मिली शैडोज ऑफ टाइम, जो एक जर्मन प्रोडक्शन थी और एक ऑस्कर विनिंग जर्मन डायरेक्टर फ्लोरियन गैलनबर्गर उनकी फिल्म।
6: ऑडिशन से मिली थी?
5: ऑडिशन से, बहुत राउंड्स ऑफ ऑडिशन थी। हाँ, और उस समय बड़े बड़े स्टार्स जो हैं वो कंसिडरेशन में थे उस रोल के लिए,
6: जिनके नाम हम नहीं लेना चाहेंगे।
5: मुझे लगा था कि यार मतलब वो बड़े, बहुत बड़े स्टार्स थे। मैंने कहा मैं क्यों दे रही हूँ ऑडिशन, बट अगेन मुझे इसलिए सिलेक्ट किया गया क्योंकि वेस्ट में ना वो लोग लिपसिंग नहीं करते हैं, और रोल था एक कोठे में जो गाना गाती है और नाचती है उस औरत का, एंड फ्लोरियन वांटेड कि ऑब्वियसली जो एक्टर है वो लाइव गाएंगे, ही वांटेड अ सिंगर। तो मैंने वहीं पे स्कोर किया।
6: क्या बात है
5: की, और मतलब हमको डांस भी करना था वहां पे और गाना भी था. एंड वो जो गाना है बंगाली ठुमरी थी जो आई हैड टू सिंग फॉर दैट फिल्म.
6: यू हैव टू सिंग.
5: ओके आमी लाशमोई তোমার চোখে কামনার ফুল যে ফোটাই তবু

0: তোমার নয়, তোমার নয়, তোমার নয়।
1: क्या सुंदर तो बोल है, मतलब अद्भुत, क्या लाइन है वो, कामना के फूल, क्या बात है, क्या बात है, सुंदर। तो इस फिल्म ने बहुत नाम दिया,
0: हाँ,
1: और एक्सपीरियंसेस किस तरह से रहे कि इंटरनेशनल टीम के साथ काम करने के?
0: इंटरनेशनल टीम के साथ, क्योंकि योगन योगस जो हमारे सिनेमाटोग्राफर थे वो विम वेंडर्स की फिल्म
1: टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड,
0: यस, सो एक एक नाम ऐसे आ रहे थे तो हमें लग रहा था माय गॉड हम लोग ऐसे लोगों के साथ, और पहला ब्रेक होता है। उसके बाद जब फिल्म बन गई और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स हम लोग ट्रैवल हुए, वो पहला एक्सपीरियंस था। टोरंटो से शुरू हुआ, फिर हम बर्लिन आ गए, और बर्लिन में हम बड़े स्टार्स से मिले, मतलब कियानो रीव्स तो वो मतलब बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस।
1: चार पांच धड़कन मिस,
0: हाँ, बिल्कुल टोटल। और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। अच्छा, वो पहली पिक्चर थी जहां हम लोगों को इतना मतलब वो मिला था। पैसे भी अच्छे मिले थे, लेकिन तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, तो बर्लिन आले जब होती है ना, बहुत ठंड होती है वहां, -10। मेरे पास एक ही कोट था, कपड़े भी ठीक ढंग से नहीं थे, एक साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट और कोट भी, मतलब वहां जाके मुझे फ्लोरियन ने और एक कोट मतलब दिया, एक विंटर कोट की, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क, क्योंकि मेरे पास दिल्ली के ठंड वाली कोट थी।
1: बिल्कुल,
0: इंडिया में ऐसे कोट्स मिलते ही नहीं थे, वो तो बाद में ब्रिक लेन करने के बाद जब मैं लंदन शिफ्ट हो गई थी, देन आई अंडरस्टूड व्हाट विंटर कोट्स आर।
1: क्या एक्सपीरियंस था वो,
0: हाँ, मतलब बूट्स भी नहीं थे, चप्पल और सॉक्स पहन के गए थे बर्लिन आले अटेंड करने और मिल रहे हैं किसे, कियानो रीव्स।
1: वाह वाह वाह,
0: तो ये
1: यही तो मजा है,
0: बहुत ही कमाल। और मेरे को एक्टर प्रशांत नारायणन वो भी आए थे, और हम लोगों को रिट्स कार्लटन में ठहराया गया था, तो हम तो पागल हो गए थे, मतलब लाइक द होटल इज सो ऑप्यूलेंट,
1: ग्रैंड,
0: या बट thankfully later in life this became a norm in life, like many more films happened like this, jahan matlab bahut travel maine kiya, jury mein bhi rahi, aur ye धीरे धीरे ये पार्ट ऑफ लाइफ बन गई।
1: बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये जो
0: दिस इज द बिगिनिंग, या
1: यस बिल्कुल, लेकिन इसके बाद इंटरनेशनल फिल्म्स और उनमें अवार्ड्स लेने और तारीफ पाने का सिलसिला लगातार चलता रहा।
0: जी,
1: तो इसके बाद कौन सी फिल्म आई?
0: इसके बाद मैंने यहाँ 12 आना किया, मतलब इंडिया में एक फिल्म की
1: मेनन के साथ,
0: राजा मेनन के साथ ही किया एक, और फिर ब्रिक लेन हैपेंड। फिर कुछ दिन, कुछ साल मुझे बहुत अच्छी फिल्में नहीं मिल रही थी, फिर भी देख इंडियन सर्कस करके एक फिल्म की मैंने उस समय, और उसमें मुझे नेशनल अवार्ड मिला, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत काम मिल रहा था, ऐसा नहीं।
1: उस दौरान एक बांग्ला फिल्म भी की,
0: बिबौर, हाँ, बांग्ला बिबौर भी की। फिर मुझे ब्रिक लेन मिला, और एक फ्रेंच फिल्म भी की थी मैंने, लेट द विंड ब्लो, हवा आने दे करके। फिर ब्रिक लेन के बाद मैं लंदन शिफ्ट हो गई कुछ साल के लिए।
1: ये डिसीजन किस चीज पर बेस्ड था?
0: ये एक्चुअली वहां से कुछ अच्छे काम मिल रहे थे इसलिए था, और मैंने शादी भी कर ली ये भी था,
1: ये भी था,
0: हाँ, प्यार हो गया ये भी था, दोनों चीजें थी। और मैंने वहां पे म्यूजिकल

0: थिएटर भी किया बहुत बड़ा वेस्ट एंड पे, यू नो रॉयल ओपरा हाउस में. जॉसलिन पुक जिन्होंने गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क में म्यूजिक दिया, वो म्यूजिक डायरेक्टर थे इस म्यूजिकल के. तो बहुत मजा आया काम करके. और
1: कितना
0: फिर
1: फर्क है इंडियन थिएटर की दुनिया और ब्रॉडवे की दुनिया में?
0: द थिंग इज, इंडिया में हमें थिएटर, मराठी थिएटर या गुजराती थिएटर जैसे प्रोफेशनल थिएटर है,
1: बिल्कुल
0: प्रोफेशनली चलती है वो. लेकिन हिंदी थिएटर में प्रोफेशनल थिएटर एक रेपुटरी कंपनी या ऐसे छोड़ के नहीं है. तो प्रोफेशनलिज्म जो है, क्योंकि जहां आपको पैसे मिलते हैं अच्छे खासे अपनी जिंदगी बिताने के लिए, कि आप सिर्फ थिएटर कर रहे हो, वो नहीं होता यहाँ. तो अगर वो नहीं होगा तो आपकी क्वालिटी जो है वो सफर करेगी. क्योंकि अभी मैं एक प्ले कर रही हूं जो मैंने और शारिब हाशमी हम दोनों ने मिलकर लिखा. पर क्या होता है कि हमें जब फ्री वक्त मिलता है तभी हम वो कर पाते हैं, क्योंकि हमें पैसे नहीं मिलते हैं इससे. ये हॉबी हो जाती है, जबकि हम अपने पूरे, मतलब अब हम लोग एक्सपीरियंस्ड हैं तो फिर भी उसको एक लेवल के प्रोफेशनलिज्म तक ला पाते हैं. बट नो वन इज फंडिंग अस.
1: तो इसके सहारे जिंदगी नहीं बिताई जा सकती।
0: या तो उसमें फर्क हो जाता है. अभी जब मैं वहां पे प्ले कर रही थी तो हम जो 8 वीक्स का रिहर्सल कर रहे थे, हमें बाकायदा फुल पेमेंट मिलता था उसका, वीकली मनी, विच यूज्ड टू बी वेरी गुड. उसके बाद शोज जब कर रहे हैं तो हमें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है उस समय. तो अगर ऐसा हो तो मैं तो जिंदगी भर थिएटर ही करूं,
1: बिल्कुल
0: बिकॉज आपको लाइव परफॉर्मेंस में जो मजा आता है, जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलती है, जो रिएक्शन मिलता है, वो फिल्म में नहीं मिलता है.
1: ऑफ कोर्स।
0: बट द थिंग इज, वी ऑलवेज हैव टू बैलेंस इट, बिकॉज वो है ही नहीं.
1: तो लंदन में थिएटर होता रहा,
0: हाँ
1: अलग अलग प्रोडक्शंस में काम
0: यस
1: किया।
0: किया. और यहाँ पे भी मैंने पोस्टकार्ड्स फ्रॉम गॉड करके एक बहुत बढ़िया प्रोडक्शन किया दक्षा शेट और उनके डांस कंपनी के साथ, इंटरप्रिटेशन ऑफ इम्तियाज धारकर्स पोएम्स, और म्यूजिकल ही था वो.
1: वाह वाह, क्या बात है।
0: इट वॉज फैंटेस्टिक. तो ऐसी ऐसी चीजें करती गई मैं. बट ब्रिक लेन चेंज्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स.
1: एवरीथिंग,
0: या
1: यस। मुझे ये बताइए कि लंदन में रहते हुए और कौन कौन सी फिल्में भी हुई?
0: फिल्में भी हुई, मैंने देव बेनेगल के साथ रोड मूवी की, मतलब यहाँ आना जाना आना जाना. फिर और एक फिल्म की थी मॉनसून शूट आउट करके, जिसमें नवाज और मैं हैं, गुनीत ने प्रोड्यूस किया था उसको. बॉम्बे समर करके एक अमेरिकन डायरेक्टर के साथ एक फिल्म की. सो ऐसी चीजें मैं करती गई.
1: और लंदन का ये जो प्रवास है, ये कब और कैसे खत्म हुआ?
0: धीरे धीरे क्या हुआ कि इकोनॉमिक वहां पे स्टैग्नेशन आ रही थी ना, 2009-10, ये दैट वाज लाइक, यू नो, जो उनका स्टॉक मार्केट पूरा गिर गया, लीमन ब्रदर्स वगैरह सब क्रैश हो गए. सो वर्क वाज गेटिंग वेरी डिफिकल्ट देयर. आई वाज डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क हियर ओनली.
1: अच्छा,
0: तो मतलब जैसे देव बेनेगल की फिल्म है, मैं रह वहां रही थी पर यहाँ काम कर रही थी काफी सारा. सारी फिल्में इंटरनेशनल टाइप की थी बट आई वॉज डूइंग वर्क हियर. तो मुझे लगा कि यहाँ थोड़ा वक्त ज्यादा बिताया जाए,
1: तो आप वहां से वापस आ गई।
0: वापस आ गई. और
1: और
0: एक चीज थी, मैंने पहले ही कहा था मुझे ठंड पसंद नहीं. सो द वेदर वॉज गेटिंग ऑन टू माई नर्व्स, वेदर आई लाइक इट और नॉट.
1: ये सही है, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर जो है मुंबई आपका घर हो गया।
0: जी,
1: अब भोपाल वाली फिल्म तभी हुई?
0: भोपाल वाली फिल्म भी लंदन में रहते हुए ही हुई, क्योंकि
1: अच्छा।
0: वो भी वहीं का प्रोडक्शन था. या रवि कुमार जो डायरेक्टर थे,
1: जी
0: ही इज ब्रिटिश.
1: ओके।
0: या
1: उस फिल्म में अभय आपके साथ थे?
0: नहीं, भोपाल प्रेयर फॉर रेन में मैं और राजपाल यादव थे, और
1: ओके।
0: मार्टिन शीन, काल पेन, ये
1: अच्छा,
0: सब भी
1: हाँ
0: वो
1: वो दूसरी,
0: इंटरनेशनल फिल्म
1: करेक्ट
0: थी. या
1: करेक्ट,
0: या
1: जी जी जी
0: या
1: बिल्कुल। उसका एक्सपीरियंस कैसा था?
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. रवि मतलब डॉक्टर थे एक्चुअली, और उनकी ये पहली फिल्म थी.
1: अच्छा,
0: और
1: और एक ट्रेजेडी होने वाली है, उसके इर्द गिर्द
0: हाँ
1: बुनी
0: उसके
1: गई फिल्म।
0: हाँ. फिर मैंने अन्ना कारेनिना भी किया उस समय, व्हेन आई वाज इन लंदन, जो राइट के साथ, मतलब तो काफी सारा वहां इधर दोनों का काम कर रही थी.
1: बिल्कुल मजेदार है ये। मुझे लगता है कि यहां भी एक गाना सुनते हैं, फिर आगे की
0: बिल्कुल
1: बात करते हैं।
0: बिल्कुल.
1: तो अब बताइए कौन सा गाना आपके जहन में आ रहा है?
0: मुझे नूर जहान के गाने जो हैं,

किस्मत पे छा रही है क्यों रात की स्याही, किस्मत पे छा रही है क्यों।

0: इन तमाम फिल्मों की बात हो रही है, इस बीच में मैं ये देख पा रहा हूँ कि आपने आई लव न्यू ईयर जैसी फिल्म भी की, मीना की, सिद्धार्थ की, ये सारे इंटरनेशनल फिल्म हैं, इंडिपेंडेंट फिल्म्स भी कहा जा सकता है। क्या बम्बैया चमक दमक वाले सिनेमा ने आपको आकर्षित नहीं किया?
1: आई लव एनवाई सनी देओल और कंगना रनावत है उसमें,
0: वो एक फिल्म थी,
1: वो मेन स्ट्रीम फिल्म ही थी। और सो आई प्ले हिज फर्स्ट गर्लफ्रेंड एंड आई डंप हिम, सो आई हैड द प्लेजर ऑफ डंपिंग सनी देओल ऑन स्क्रीन,
0: डंपिंग द मेन हीरो, क्या बात है, मजे की बात है।
1: हाँ, नहीं ऐसा नहीं है एक्चुअली। मैं तो सिद्धार्थ बहुत ही, मतलब रिची मेहता जिन्होंने दिल्ली क्राइम डायरेक्ट की, उनकी फिल्म थी और बहुत ही अच्छी फिल्म मेकर हैं वो, बहुत अच्छे राइटर भी हैं, दोस्त भी हैं, बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। ये सब फिल्में की मैंने, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं मेन स्ट्रीम फिल्में नहीं करना चाहती थी, लेकिन ऐसा ही काम आता रहा मेरे पास। और मुझे लगता है कि ये ऐसा, आप हमेशा टाइप कास्ट हो जाते हो ना, कि आपको स्लॉट में ढाला जाता है कि आपने ऐसा काम किया है तो आप ऐसे ही हो। स्पेशली आप अगर ड्रामा स्कूल से हो तो लोग ये समझते हैं आप अगर अच्छे एक्टर हो तो आप मेन स्ट्रीम काम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता है।
0: एक सील ठप्पा, एक टाइप कास्ट वाला मामला,
1: बट ऐसा नहीं होता है। यू नो, हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, बट दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स पार्च्ड।

0: सो दैट्स हाउ इट एक्चुअली स्टार्टेड. देन आई टुक हर टू दैट प्लेस जहां से मुझे सोर्स मिला था उस कहानी का. एंड देन शी डिड हर रिसर्च एंड शी रोट द स्क्रीन प्ले और ऐसे करके बनी वो
1: एक शानदार फिल्म.
0: हाँ, वो फिल्म मेरे लिए बहुत स्पेशल इसलिए भी है कि द जर्म ऑफ द आइडिया केम फ्रॉम मी. और
1: इसकी शूट से जुड़ी हुई कुछ बातें.
0: हाँ, तो उसके बाद राधिका आप्टे, सुरवीन चावला, इन सबकी कास्टिंग हुई. एंड वी हैड लाइक अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टाइम, यू नो, शूटिंग दिस टुगेदर, बॉन्डिंग. एंड हमने साथ में बनाई इस फिल्म को, यू नो, वी ऑल गॉट टुगेदर एंड मेड द फिल्म. रसल कार्पेंटर, जिन्होंने टाइटैनिक शूट किया है,
1: ही
0: इज अ सिनेमाटोग्राफर ऑफ एवटार्स एंड टाइटैनिक, ऐसे बड़े बड़े फिल्मों, ही शॉट द फिल्म. और ये असीम बजाज की वजह से है,
1: हु
0: इज आवर प्रोड्यूसर, और लीना के पार्टनर भी हैं वो. सो असीम इज रियली इनक्रेडिबल प्रोड्यूसर. वो ऐसे ऐसे लोगों को लेकर आए,
1: वाह,
0: एक छोटी फिल्म जो है उसका विजन बड़ा हो गया,
1: बड़ा हो गया. और फिल्म बात भी बड़ी करती
0: बड़ी,
1: है.
0: हाँ.
1: और इसलिए वो बहुत दूर तक पहुंची.
0: यस, एंड लीना टुक दैट लिटिल स्टोरी दैट आई हैड, वो उसको वहां तक लेके चली गई.
1: वाह,
0: यू नो, सो इट वाज रियली फैंटास्टिक. एंड आल्सो वर्किंग विद सच अमेजिंग एक्टर्स, सब लोग बिंदास खुल के हम लोगों ने काम किया.
1: बिल्कुल सही है. जोरम के बारे में बात कीजिए, क्योंकि वो एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म है.
0: हाँ, तो अगेन देवशीष मखीजा मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और मुझे उसका काम, सिर्फ काम ही पसंद नहीं है, मुझे वो इंसान बहुत पसंद है.
1: वाह,
0: ही इज अ अनअपोलोजेटिक अनकॉम्प्रोमाइजिंग आर्टिस्ट.
1: बिल्कुल,
0: जो
1: अपनी तरह की फिल्में करनी है
0: आज की तारीख में आपको बहुत कम मिलती है. और मैं इसलिए देवशीष को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत मानती हूँ. तो जब जोरम वो कास्ट कर रहा था, तो मैं एक्चुअली आबूधाबी में थी. आई वॉज शूटिंग फॉर अ फिल्म कॉल येल्लो बस, और वो भी एक इंटरनेशनल फिल्म है, अमेरिकन डायरेक्टर की फिल्म है. तो देवशीष ने कहा मुझे कि मेल ड्रिवन फिल्म है, बट आई वॉन्ट यू बिकॉज दिस कैरेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, एंड आई वॉन्ट समबडी हु विल जस्ट बी एफर्टलेस. मैंने कहा मैं कुछ नहीं पूछूंगी, मैं कर रही हूँ.
1: वाह,
0: दैट्स ऑल.
1: क्या बात है. और जोरम ने काफी नाम कमाया, काफी चर्चा बटोरी देवाशीष की तमाम फिल्मों की तरह.
0: बिल्कुल कमाल. और मुझे मनोज के साथ काम करने में बहुत अच्छा लगा. जीशान मेरा जूनियर है और बहुत अच्छा एक्टर है, तो इतने अच्छे एक्टर्स के साथ काम करने में बहुत बहुत मजा आया. एंड मनोज भी बहुत अच्छे इंसान है,
1: बिल्कुल,
0: यू नो, इज सच अ ब्यूटीफुल पर्सन. एक्टर तो सबको पता ही है वो है.
1: बिल्कुल. तो ये आपकी जो फिल्मोग्राफी है उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म बन जाती है. मुझे गौरी हरी दास्तान का नाम भी आपकी फिल्मोग्राफी में दिखता है, और मुझे लगता है कि इस फिल्म की भी बात होनी चाहिए, क्योंकि अनंत बहुत अलग तरह से फिल्में बनाते हैं.
0: अनंत जी के साथ मैंने 4 फिल्में की है.
1: हाँ बिल्कुल, पीछे
0: मैंने
1: भी
0: गौर हरी दास्तान से शुरू की, वो जर्नी जो है गौर हरी दास्तान से शुरू हुई. फिर रफ बुक करके मैंने एक फिल्म की थी उनके साथ, और वो काफी तक थी, अभी शायद वो हटाई गई है.
1: अच्छा.
0: थी वो, और उसको थिएट्रिकल रिलीज भी विवेक वासवानी ने प्रोड्यूस किया था. वो एजुकेशन सिस्टम पे था, वहां पे मैंने एक फिजिक्स टीचर का किरदार निभाया था. और एक्चुअली रफ बुक में मैंने अपने आप को कास्ट कर लिया था.
1: अच्छा,
0: आनंद जी, आनंद जी के ऑफिस में मैं उनसे मिलने गई थी, उन्होंने कहा मैं रफ बुक करके एक फिल्म लिख रहा हूँ. तो यू नो, इट्स अ स्टोरी अबाउट अ फिजिक्स टीचर एंड ही डज दिस एंड ही, एंड व्हाई कांट इट बी अ शी. Because he was actually offering me a role in the film, but not the central character.
1: Right.
0: So he said okay. और मैं Dallas जा रही थी next day किसी और फिल्म के लिए. When I came back, he said कि okay, these are your dates and you come. And yeah, now it's not he, it's she. I was like okay.
1: Wow, wow.
0: Wonderful.
1: क्या बात है. हाँ.
0: देन उसके बाद मैंने डॉक्टर रखमाबाई,
1: वो भी उनके साथ है, बिल्कुल,
0: साथ
1: जिसका जिक्र हमने अभी पीछे किया.
0: बिल्कुल,
1: देश की पहली डॉक्टर, महिला डॉक्टर,
0: देश की प्रैक्टिसिंग महिला डॉक्टर
1: जी. हाँ,
0: वो की मैंने, और उसमें तो बहुत ही, मतलब इट वाज अ हार्ट, क्योंकि ये जर्नी थी उसकी. और आई हैड टू लर्न ऑल्सो मराठी फॉर दैट. पुणे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जब मुझे बेस्ट एक्ट्रेस मिला, तो वहां लोगों को लगा कि मैं तो पुणे चा मुलगी हूँ.
1: क्या बात है.
0: और मुझसे ऑडियंस ने आके मराठी में बातचीत करना शुरू किया, एंड आई वॉज लाइक कन्फ्यूज, कि मैंने कहा मैंने उतना

0: ही सीखा
1: जो वहां दिख रहा है
0: वहां दिख रहा है एंड इट वाज ओल्ड मराठी आल्सो इट्स नॉट द बोलचाल मराठी दैट इज बीइंग स्पोकन नाउ अपनी बेटी को मैं ये जरूर कहती हूँ कि प्लीज आप मराठी सीखो यू नो बिकॉज यू आर स्टडिंग मराठी इन स्कूल तो आपको सीखना है और आप बिल्कुल सीखो अच्छे से सीखो
1: क्या बात है तो तीन फिल्मों की बात हुई ना अनंत महादेवन के साथ
0: अभी पास्ट टेंस करके और एक फिल्म अभी मैंने उनके साथ अभी खत्म की है
1: क्या बात है एक ही डायरेक्टर के साथ चार फिल्में
0: हाँ उनके साथ तो मुझे काम करने में बहुत मजा आता है वो सब्जेक्ट हमेशा बहुत ही अलग अलग चूज करके लाते हैं मतलब दे आर सो तो पास्ट टेंस में परेश और स्टोरी टेलर भी की फिफ्थ यस
1: लीजिए एक फिल्म तो छूटी गई थी
0: आई हैव डन स्टोरी टेलर ऑल्सो विद आनंद जी
1: क्या बात है अच्छा एंग्री इंडियन गॉडेस भी आपके करियर की एक इम्पोर्टेंट फिल्म है और बहुत फेस्टिवल्स में इस फिल्म ने अपना झंडा लहराया
0: जी जी जी जी एंग्री इंडियन गॉडेस एक्चुअली पूरा इम्प्रोवाइज्ड फिल्म है और वो बहुत ही कमाल का प्रोसेस था उसमें क्योंकि वहां पैन नलिन जो डायरेक्टर हैं उन्होंने हमें कोई स्क्रिप्ट नहीं थी कुछ नहीं था ऑल द एक्सेप्ट फॉर माय कैरेक्टर एवरीबॉडी आल्सो डेवलप्ड देयर ओन कैरेक्टर्स मैं एक्चुअली और एक फिल्म शूट कर रही थी उस समय विकास मिश्रा की इसलिए मेरे पास डेट्स नहीं था दैट्स व्हाई आई हैड टू जॉइन दैट प्रोसेस लेटर तो इसलिए मुझे नलिन ने कहा कि आई हैव टू गिव यू अ कैरेक्टर वेर यू हैव टू फिट इन एंड रिजॉल्व द थिंग्स नाउ बिकॉज एवरीबडी एल्स इज ऑलरेडी सिलेक्टेड दे हैव गॉन थ्रू द 20 डेज वर्कशॉप विच आई वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ आई कुडंट बी जबकि मैं मतलब इट वॉज अ थिंग दैट आई ऑलवेज फील अ लिटल कि यू नो आई वॉज देयर इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस और वो एंड एनी वे सो इट वॉज लाइक कंप्लीटली डिवाइज्ड एंड इट वॉज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस क्योंकि उस समय निर्भया का केस हुआ था एक साल और सब लोग हिले हुए थे कि जिस ढंग का वायलेंस देखा गया जिस ढंग की मतलब कॉन्वर्सेशंस पब्लिक में आई यू नो एवरीथिंग वाज सो द फिल्म केम आउट ऑफ दैट सो इट्स अ पर्सनल फिल्म फॉर ऑल ऑफ अस एंग्री इंडियन गॉडेसेस
1: वाह बिल्कुल और उस फिल्म को अपना प्रॉपर ड्यू मिला और उसका काफी नाम हुआ उस फिल्म का यहाँ भी एक गाना सुनते हैं
0: बिल्कुल
1: कौन सा गाना होगा
0: इस समय मुझे लगता है स्वानंद किरकिरे मेरा दोस्त भी है और मेरे प्ले में उसने गाना लिखा भी है उसका जो मतलब मेरा फेवरेट गाना बावरा मन
1: हमने अब तक स्वानंद की आवाज में सुना है
0: हाँ।
1: अब हम तनिष्ठा की आवाज में सुनना चाहते हैं
0: स्वानंद माफ कर दे पर ये एनएसजी में जब हम थे ना वो तब से गाता था
1: तब से गाते हाँ। बिल्कुल बिल्कुल

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की आज की कड़ी।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में।
1: और अजीत का भी नमस्कार और जोहार। धमधा ग्राम सुखरी कला छत्तीसगढ़ से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका आदित्य और अंजलि जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: धरती केवल हमारी नहीं आने वाली पीढ़ियों की भी अमानत है। आइए इसे स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित रखने का संकल्प लें।
1: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा, हमारा आभार कीजिए स्वीकार। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके प्यारे प्यारे संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में कहानी न्याय की कुर्सी एवं लालच नाटक के रूप में सुनी एवं पसंद आई। कहानी शिक्षाप्रद लगी और सुखद संदेश देने में भी कामयाब हुई। ये दोनों कहानी सुनवाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
1: अगला संदेश हमें मिला है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का।
2: कोकाबिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मूरज जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल के साथ इनके बच्चे।
1: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन।
2: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी लिखते हैं,
1: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में ये भी जानिए श्रृंखला में पारंपरिक मेला उत्सव पर जो जानकारी सुनाई जा रही है बेहद पसंद आ रही है। जोनबिल मेला और हॉर्नबिल मेला पर जानकारी बहुत ही अच्छी लगी। आगे आपने लिखा है,
2: आप जब मेला उत्सव पर कार्यक्रम प्रसारित कर रहे होते हैं तो हम इतने मग्न हो जाते हैं, सचमुच हम मेले में ही घूम रहे हों और मेले का आनंद ले रहे हों। मेला उत्सव पर कार्यक्रम सुनवाने के लिए सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी एवं समस्त उमंग टीम का हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
1: आप सभी श्रोताओं को उमंग कार्यक्रम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। श्रृंखला ये भी जानिए श्रृंखला में आप सबका एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस के इस विशेष महीने में स्वागत है। श्रोताओं, अगले सप्ताह हम अपने देश का स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इस विशेष सप्ताह में हम चर्चा करेंगे भारत की आजादी की लड़ाई में शामिल कुछ ऐसे लोगों की जिनकी चर्चा कम होती है।
2: आंदोलन के बड़े बड़े और मुख्य नेताओं को तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इस सप्ताह उमंग कार्यक्रम का प्रयास रहेगा उन लोगों को सामने लाना जो बहुत ज्यादा चर्चित नहीं रहे।
1: तो करते हैं शुरुआत और आज करते हैं बात एक महान जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के बारे में। तो विमलेश जी, अब आपकी बारी।
2: जी जी जी, बिरसा मुंडा भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, आदिवासी जननायक और समाज सुधारक थे। उन्हें आदिवासी समाज में श्रद्धापूर्वक धरती आबा यानी धरती का पिता कहा जाता है। आबा मुंडारी और संथाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पिता।
1: जी श्रोताओ, उन्होंने अंग्रेजी शासन और शोषण के विरुद्ध आदिवासी समाज को संगठित किया तथा सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक सुधारों का नेतृत्व किया। आइए अब लेते हैं जानकारी उनके प्रारंभिक जीवन की। उनका जन्म 15 नवंबर 1875 को उलीहातू नामक गांव में हुआ था जो तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी में स्थित था और अब झारखंड राज्य में है।
2: बचपन में उनका परिवार आर्थिक कठिनाइयों से जूझता रहा। उन्होंने कुछ समय तक मिशन स्कूल में शिक्षा प्राप्त की, लेकिन बाद में अपनी संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण का संकल्प लिया। आदिवासियों की दुर्दशा देखकर उनका मन हमेशा विचलित रहता था।
1: वे चाहते थे कि उनकी दशा में सुधार हो, वे शिक्षित हों और उनका शोषण न हो।
2: जी।
1: उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया जिसमें उन्होंने आदिवासी समाज से कहा कि वे अंधविश्वास और सामाजिक बुराइयों को छोड़ें, स्वच्छता और शिक्षा को अपनाएं,
2: नशाखोरी से दूर रहें,
1: अपनी संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करें
2: और एकजुट होकर अपने अधिकारों की रक्षा करें।
1: जी, तो श्रोताओ, उनकी शिक्षाओं ने आदिवासी समाज में आत्मविश्वास और जागरूकता की भावना पैदा की।
2: ये वो समय था जब अंग्रेजी शासन जमींदारों और महाजनों द्वारा आदिवासियों का शोषण कर रहा था। उनकी भूमि छीनी जा रही थी और उन पर भारी कर लगाए जा रहे थे।
1: बिरसा मुंडा ने लोगों को संगठित कर एक सामूहिक विद्रोह आयोजित किया जिसे उलगुलान कहा जाता है। उलगुलान शब्द का अर्थ है महाविद्रोह। यह आंदोलन केवल अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं था बल्कि अन्याय, शोषण और भूमि अधिकारों के लिए भी था। उनका नारा था,
2: अबुआ दिसुम अबुआ राज, यानी हमारा देश हमारा शासन। यही नारा प्रसिद्ध जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी सिदो और कानू द्वारा भी दिया गया था।
1: श्रोताओ, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में उलगुलान आंदोलन बहुत प्रभावशाली बन गया और इसके कारण अंग्रेजी हुकूमत परेशान हो गई। अंत में अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जेल में रहते हुए 9 जून सन 1900 को रांची केंद्रीय कारागार में मात्र 25 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया।
2: उनके आंदोलन का प्रभाव इतना व्यापक था कि बाद में अंग्रेजों को आदिवासियों के भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनों में परिवर्तन करना पड़ा।
1: श्रोता, उनकी जन्मतिथि 15 नवंबर को पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाती है। उनके नाम पर अनेक विश्वविद्यालय, संस्थान, संग्रहालय और हवाई अड्डे के साथ साथ कई सरकारी योजनाएं भी संचालित होती हैं।
2: बिरसा मुंडा का जीवन हमें सिखाता है कि अन्याय के विरुद्ध साहसपूर्वक खड़े होना, अपनी संस्कृति का सम्मान करना और समाज की भलाई के लिए कार्य करना ही सच्ची देशभक्ति है। वे भारतीय इतिहास के ऐसे अमर नायक हैं जिनका संघर्ष आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा।
1: जी हाँ श्रोताओ, धरती आबा बिरसा मुंडा का जीवन स्वाभिमान, संगठन और राष्ट्र प्रेम का अद्वितीय उदाहरण है। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से हमारा आज का प्रश्न है,
2: बिरसा मुंडा द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध प्रारंभ किए गए विद्रोह का क्या नाम था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: बिरसा मुंडा द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध प्रारंभ किए गए विद्रोह का क्या नाम था? 8800440559 हमारा IVRS नंबर है। आप इस पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cieet.nic.in पर भी अपना संदेश या प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
2: श्रोताओ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट में दिए गए विकल्पों और निर्देशों का पालन कीजिए और मनचाही पाठ्य पुस्तक डाउनलोड कर लीजिए।
1: और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ऑडियो बुक्स यानी ध्वनि पुस्तकों के रूप में सुनना चाहते हैं तो टाइप कीजिए NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। वहाँ आपको हमारी पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतर उपलब्ध हो जाएगा। साथ ही साथ उमंग कार्यक्रम में प्रसारित कार्यक्रम भी आप इस चैनल पर सुन सकते हैं।
2: तो श्रोताओ, आइए अब चलते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर
1: और सुनते हैं कार्यक्रम जलियांवाला बाग।
2: इस कार्यक्रम में जलियांवाला बाग के बारे में जानकारी दी गई है कि किस प्रकार यहां आजादी की लड़ाई में भाग लेने वाले असंख्य देश प्रेमियों को स्वतंत्रता की बलिवेदी पर अपने प्राणों को न्योछावर करना पड़ा और इस भीषण जनसंहार की घटना का आंदोलन पर क्या असर पड़ा।

0: ये बात उस वक्त की है जब पहले महायुद्ध में हिंदुस्तानियों ने विदेशी सरकार की तन मन धन से सहायता की और इसके बदले में भारतीयों को मिला रॉलेट बिल।
1: रॉलेट बिल ने पुलिस को बिना वारंट के लोगों को गिरफ्तार करने, नजरबंद करने और तलाशी लेने के पूरे अधिकार दे दिए। अदालतों में पैरवी करने की मनाही कर दी गई।
0: इस कानून का सीधा सा मतलब था व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अंत। 6 फरवरी 1919 को रॉलेट बिल नाम के दो बिलों को बड़ी काउंसिल में पास करने के लिए पेश किया गया। 24 फरवरी के दिन गांधी जी ने ऐलान किया कि अगर बिलों को पास कर दिया गया तो सारे देश में सत्याग्रह होगा और 30 मार्च 1919 को रॉलेट बिल के विरोध में देशव्यापी हड़ताल की योजना बनाई गई। लेकिन इस हड़ताल की तिथि बढ़ाकर 6 अप्रैल कर दी गई, पर दिल्ली खबर न पहुंचने की वजह से 30 मार्च को ही हड़ताल हुई।
1: लेकिन इसी बीच पहला बिल मार्च के तीसरे सप्ताह में पास कर दिया गया, जो रॉलेट एक्ट कहलाया।
2: मांगे पूरी करो,
3: हमारी मांगे
2: पूरी करो।
4: हमारा पहला प्रस्ताव है कि काला कानून रॉलेट एक्ट वापस लिया जाए।
2: रॉलेट एक्ट वापस लो।

0: पूरे देश में हड़ताल हुई। पंजाब के सभी नगरों में यह हड़ताल शांतिपूर्वक रही। 9 अप्रैल के दिन रामनवमी थी। रामनवमी के अवसर पर अमृतसर में हिंदू मुसलमानों ने जुलूस निकाला।
1: महात्मा गांधी की

0: और नो।
1: ये हिंदू मुसलमानों की कौमें एक होकर तो हमारा सरदर्द बन जाएंगी। क्यों नहीं डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया जाए? इससे आवाम का जोश भी ठंडा पड़ जाएगा। यस, हे यू, कम अप।
2: इसी बीच गांधी जी भी पंजाब जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें वहां पहुंचने से पहले ही पलवल स्टेशन पर गिरफ्तार कर वापस बंबई भेज दिया गया। नेताओं की गिरफ्तारी से पंजाब और ज्यादा उत्तेजित हो उठा और अमृतसर को सेना के हाथों सौंप दिया गया। सेना का सर्वे सर्वा था जनरल डायर। 11 अप्रैल को अमृतसर में जनता ने हड़ताल की और जुलूस निकाला। 12 अप्रैल को अमृतसर एक सैनिक कैंप बन गया। जनरल डायर ने हवाई जहाज से शहर का निरीक्षण किया और गली गली फौजी मार्च कराया गया।

0: सरकार के सामने नारे लगाने की ऐसी हिम्मत की चौथा इन्हें कोरियर से भून डालू। नो नो नो, मुझे इससे बेहतर मौके का इंतजार करना होगा।
1: इंतजार, जनरल डायर ने और ज्यादा इंतजार नहीं किया। 12 अप्रैल को जुलूस के नेताओं को गिरफ्तार करके उन्हें हथकड़ियां पहनाई गईं और रामबाग ले जाकर उन्हें पेड़ों से बांध दिया गया। निगरानी के लिए डायर ने गोरखों को तैनात कर दिया। दमन चक्र सख्त होता जा रहा था। अप्रैल 13, 1919 बैसाखी का दिन था। अमृतसर में आसपास के गांव से लोग बैसाखी का त्योहार मनाने पहुंचे थे। बैसाखी के मेले में भाग लेने आए इन लोगों ने अपना डेरा जलियांवाला बाग में जमाया हुआ था। इसी बीच जनरल डायर ने यह ऐलान कराया था कि शहर में कोई मीटिंग न की जाए, लेकिन यह ऐलान सब लोगों तक पहुंचा नहीं। जलियांवाला बाग में नेताओं की रिहाई के लिए एक मीटिंग का आयोजन किया गया। बैसाखी मनाने आए लोगों ने जब मीटिंग की भीड़ देखी तो कौतूहलवश वे भी इसमें शामिल होने पहुंच गए। शाम 4:30 बजे के लगभग जलियांवाला बाग में 10,000 के करीब लोग जमा हो चुके थे, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। वातावरण में विरोध था, तनाव अपनी चरम सीमा पर था।
2: भाइयों और बहनों, सुनिए सुनिए, भाइयों और बहनों, माताओं और बच्चों, आज की सभा में हम कुछ जरूरी प्रस्ताव रखना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि आप सब हमारा साथ देंगे।
3: भारत माता की
4: जय।
3: भारत माता की
4: जय।
3: भारत माता की
4: जय।
2: इन प्रस्तावों को पास करके हम इन्हें सरकार के पास भेजेंगे ताकि हमारी मांगे फौरन पूरी की जा सके।
3: हमारी मांगे
4: पूरी करो।
3: हमारी मांगे
4: पूरी करो।
3: हमारी मांगे
4: पूरी करो।
2: हमारा पहला प्रस्ताव है कि काला कानून रोलेट एक्ट वापस लिया जाए।
4: रोलेट एक्ट वापस लो।
3: रोलेट एक्ट
4: वापस लो।
3: रोलेट एक्ट
4: वापस लो।
2: ये सभा 10 अप्रैल के दिन हुए गोलीकांड की निंदा करती है और शहीदों के परिवार के साथ सहानुभूति प्रकट करती है।
3: मारो,
2: सरकार से अनुरोध करती है कि डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को फौरन रिहा किया जाए।
3: सत्यपाल को
4: रिहा करो।
3: डॉक्टर किचलू को
4: रिहा करो।
3: सत्यपाल को
4: रिहा करो।
1: सभा चल रही थी और उधर जनरल डायर अपने सिपाहियों के साथ जलियांवाला बाग के एकमात्र दरवाजे पर आ डटा। जलियांवाला बाग के चारों ओर दीवारें थीं और केवल एक ही दरवाजा था जिससे अंदर आया जाया जा सकता था। इसी दरवाजे पर डायर के सैनिकों ने अपनी खूनी बंदूकें तान ली। लोग एकमात्र दरवाजे की ओर भागे और गोलियां उन्हें बीनती रहीं। कुछ लोग दीवारों पर चढ़े जिससे कि दूसरी ओर कूदा जा सके, लेकिन कोशिश बेकार रही। गोलियों की बौछारों से बचने के लिए कुछ कुएं में भी कूदे, लेकिन मौत उनका वहां भी इंतजार कर रही थी। पूरे 10 मिनट तक मौत का नंगा नाच होता रहा।
5: ए, ए, ए, ए, गोली चलाना बंद क्यों कर दिया? आई से फायर, फायर अगेन।
6: सर, सर कारतूस खत्म हो गए हैं।
5: और शट अप। देख, ये सबक काफी है। अबाउट टर्न।

मौत का दरिंदा जब दरवाजे से हटा, तब रतन देवी उस मौत के मैदान में अपनों को खोजती हुई पहुंची।

0: ਮਾਸੀ ਮੇਰੀ ਲੱਤ
1: ਕਰਦੀ ਕਰਨੀ ਆ
2: जब कोई हिंदुस्तानी किसी अंग्रेज अफसर को मिले तो उसे सलाम करे। अगर घोड़े पर सवार हो तो हिंदुस्तानी अंग्रेज की शान में घोड़े से उतर जाए। अगर हिंदुस्तानी छाता लगाए हो तो नीचे झुका ले। पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। पंजाब की खबरों के बाहर जाने पर रोक लगा दी गई।
3: और यही वजह थी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की खबर कांग्रेस के नेताओं को कई हफ्ते बाद मिली।
2: इस खबर के मिलते ही भारतीयों के मन दुख, ग्लानी और आक्रोश से भर गए। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि का त्याग कर दिया। उन्होंने कहा कि अब वो समय आ गया है कि जब सम्मान पदक शर्म पदक लग रहे हैं। डायर की मनमानी करतूतों के कारण पूरे पंजाब में विद्रोह भड़क उठा और इसी के साथ ही अंग्रेजी हुकूमत के बढ़ते दमन चक्र की वजह से कसूर, गुजरावाला और लाहौर में भी विद्रोह की आग भड़क उठी। ये सब देखते हुए अंग्रेजी हुकूमत ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के 6 महीने बाद अक्टूबर 1919 में हंटर जांच समिति नियुक्त की, जिसको जलियांवाला बाग में हुए हत्याकांड की जांच करनी थी।
4: जनरल डार।
5: यस सर।
4: आप जब जलियांवाला बाग में पहुंचे तो आपने क्या किया?
5: मैंने गोली चलाने का हुक्म दिया।
4: क्या ये हुक्म आपने फौरन दिया?
5: यस, मैंने पहुंचते ही गोली चलाने का हुक्म दिया।
4: क्या वार्निंग नहीं दी?
5: नो, क्योंकि हमारे सुबह के ऐलान के बावजूद भी लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे। उन्हें कोई भी मीटिंग करने से मना कर दिया गया था।
6: वैसे उन्हें मेरे आने की चेतावनी तो मिल ही गई होगी।
4: फिर गोली चलाने का क्या मकसद था?
6: मेरा मकसद गोली चलाकर फीट को टिटर बिटर करना नहीं था। मैं चाहता था कि इस तरह की फायरिंग के बाद पूरे पंजाब के लोगों में कुछ ऐसा डर बैठ जाए कि दोबारा ऐसा करने की हिम्मत ही ना हो।
2: जनता को डराने धमकाने के इस शर्मनाक तरीके को हंटर जांच समिति ने दाग पर रख दिया। हंटर जांच समिति की कार्यवाही केवल इस हत्याकांड पर लीपापोती करती रही और डायर को बरी कर दिया गया।
3: लेकिन कांग्रेस ने पंजाब की घटनाओं की सही जानकारी लेने के लिए अपनी एक समिति नियुक्त की जिसके प्रमुख सदस्य थे सर्वश्री मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, देशबंधु चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, बदरुद्दीन तैयब जी और जयकर। इस समिति ने 3 महीने तक पंजाब की घटनाओं का अध्ययन किया। समिति ने पंजाब के प्रशासकों की घोर निंदा की, प्रमुख रूप से पंजाब के गवर्नर माइकल ओडायर और सेना के जनरल डायर की भर्त्सना की गई।
7: कांग्रेस का दिसंबर अधिवेशन सन 1919 में पहले से ही अमृतसर में होना निश्चित हुआ था और वही हुआ। इस अधिवेशन में कुछ सदस्यों ने जलियांवाला बाग के अमानवीय एवं निर्मम हत्याकांड के खिलाफ जबरदस्त आवाज उठाई।
8: हम मांग करते हैं कि जनरल डायर को अपने पद से हटा दिया जाए।
9: पंजाब के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
10: अब भारतीयों का विश्वास वायसराय कोर्ट से उठ गया है, उन्हें अब ब्रिटिश सरकार द्वारा वापस बुला लेना चाहिए।
8: आज के इस अधिवेशन में हम संकल्प लेते हैं कि जलियांवाला बाग के शहीदों की याद हम अमर करेंगे और जलियांवाला बाग को राष्ट्रीय शहीद स्मारक बनाएंगे।
7: जलियांवाला बाग हत्याकांड में लगभग 1000 शांति प्रिय निहत्थे एवं असहाय लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस हत्याकांड ने भारतीय जनमानस को स्तब्ध कर दिया और इस तरह जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक मोड़ बन गया।
11: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जलियांवाला बाग।

0: दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: खत्म हुआ झगड़ा।
2: पहाड़ा, मैं नहीं सिखाता पहाड़ा।
3: माँ देखो, भैया मुझे पहाड़ा नहीं सिखा रहा।
2: मैं खेलने नहीं जाऊँ, जैसे ही मैं खेलने जाऊँगा वैसे ही पहाड़े की रट लगा देगी। मैं तो जा रहा हूँ।
3: मैं फेल हो जाऊंगी, सब हंसेंगे।
2: ये तेरा रोज रोज का नाटक। अच्छा बाबा, मैं खेलने नहीं जाता। छह एकम छह,
3: एकम
2: छह, दुनी बारह,
3: छह दुनी बारह।
4: राहुल, खेले नहीं आ रहे?
2: अरे यार, तुम लोग जाओ, मैं नहीं आ सकता। छह ती अठारह, छह
3: ती अठारह,
1: क्या ये आदर्श स्थिति है? क्या आप इसे यूं ही चलने देंगे? क्या आप बच्चों को दूसरे के हितों से अपने हितों को जोड़ना नहीं सिखाएंगे?
5: अरे मीना, तू रो क्यों रही है? और राहुल, तू खेलने नहीं गया?
2: माँ, मीना कहती है मुझे पहाड़ा सिखा।
5: तो क्या इसलिए तू खेलेगा नहीं?
2: मैं क्या करूं, क्या मीना को पहाड़ा ना सिखाऊं?
5: पहाड़ा तो जरूर सिखाओ, पर तुम्हारा खेलना भी तो जरूरी है।
2: ये कैसे होगा, मैं खेलूं भी पहाड़ा भी सिखाऊं?
5: ये तो तुम दोनों जानो, लेकिन रोना धोना झगड़ा नहीं।
1: वाह, क्या बात है! लेकिन क्या बच्चे हल निकाल पाएंगे?
3: जब भी मैं पहाड़ा सिखाने को कहती हूँ तुम खेलने चले जाते हो।
2: तू पहाड़े की बात ही तब करती है। अच्छा अब रो मत। अच्छा बता, तू किसी और समय पहाड़ा याद नहीं कर सकती? तेरा मन शाम को खेलने को नहीं करता?
3: करता है, पर पहाड़ा
2: तो ये नहीं हो सकता कि हम दोनों ही शाम को खेल लें।
3: फिर पहाड़ा कब?
2: देख, मैं रात को देर तक पढ़ता हूँ, तू जल्दी सो जाती है, तो तू जल्दी उठा भी कर, सुबह एक दो घंटे मुझसे पढ़ लिया कर।
3: तब तू कहेगा कि मैं सो रहा हूँ।
2: नहीं कहूँगा ना, मैं भी सुबह जल्दी उठा करूँगा और तुझे पहाड़ा सिखाऊंगा।
3: पक्का?
2: पक्का।
3: फिर गुस्सा तो नहीं करेगा?
2: क्यों करूँगा, तू तो मेरी छोटी बहन है।
3: हाँ सच, तो फिर मैं खेलने जाऊँ?
2: चप्पल तो पहन लो, मैं भी आ रहा हूँ।
1: कमाल है भाई, ठीक ही है, दूसरे की जरूरत को समझे बिना अपनी जरूरतें पूरी करना कहां तक ठीक है? क्या उमा देवी की तरह आप अपने बच्चों को अवसर देते हैं कि वे विवाद का ऐसा हल स्वयं निकालें जिसमें दोनों पक्षों का फायदा हो?
0: तो श्रोताओं, इसी कार्यक्रम के साथ अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, जगबंधु
6: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
7: उमंग उमंग उमंग उमंग।
6: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी की आज की कड़ी। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रादेशिक मुख्य समाचार के लिए हमारा अगला प्रसारण हमारे राज्य केंद्र से।

0: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और विद्यार्थियों की मांगों के समर्थन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी ने आज विधानसभा के घेराव का प्रयास किया। विधानसभा की ओर शांतिपूर्ण मार्च कर रहे एबीवीपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने पुराने विधानसभा के पास रोक दिया। इस दौरान पुलिस की ओर से लाठीचार्ज किए जाने के बाद बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। हिरासत में लिए गए 200 से अधिक कार्यकर्ताओं को खेलगांव स्थित कैंप जेल में रखा गया है। जेपीएससी में हुई कथित धांधली के विरोध में विधानसभा घेराव करने पहुंचे छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा की ओर से आहुत बंदी का असर धनबाद में देखने को मिल रहा है। जिले के अलग अलग इलाकों में भाजपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर बंद को सफल बनाने में जुटे हैं। बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ वर्ष 2026-27 में किसानों को फसल बीमा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से आज समाहरणालय परिसर साहिबगंज से जागरूकता रथ को उपायुक्त दीपक कुमार दुबे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस जागरूकता रथ के माध्यम से जिले के किसानों को बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अधिसूचित धान एवं भदई मक्का फसलों का बीमा कराने के लिए जागरूक किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को रांची नगर निगम क्षेत्र में सभी मांस मछली की दुकानें बंद रहेंगी। इस दौरान मांस मछली और मुर्गे सहित संबंधित खाद्य पदार्थों के क्रय और विक्रय पर भी प्रतिबंध रहेगा। रांची नगर निगम की ओर से आज इस संबंध में आदेश जारी किया गया। अपर नगर आयुक्त की ओर से जारी आदेश में स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर नगर निगम क्षेत्र में प्रतिबंध का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। पेश है कार्यक्रम इवनिंग मेलोडी। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। फिल्म का नाम है 1942 ए लव स्टोरी। आवाजें कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की है।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: आन मिलो सजना, सुनते हैं ये इस फिल्म का शीर्षक गीत मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में।

इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम इवनिंग मेलोडी यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेती बारी।

कार्यक्रम खेती बाड़ी सुनने वाले सभी ग्रामीण भाई बहन सबके, किसान भाई बहन सबके जो है से जोहार प्रणाम और नमस्कार हमारा अनिश्याम के दने से। तो देखा किसान भाई बहन सब, आज बड़े दिन के बाद कार्यक्रम खेती बाड़ी में हम आयल हियन, और तुहनी सब जानू है कि जब भी हम आवे तो तुहनी के संगे जो है से बड़ी तरह के बात भी करो। ये तो देखा कि आज हम जो जानकारी लेकर आलिए वो सबसे पहले तुहनी साथ आज साझा करो। ये तो देखा कि सबसे पहले आज तुहनी से बात करबे कि धान मक्का और दलहन तिलहन फसल जो है इस सबके में अगस्त महीना के माह में जो है से कौन कौन सा काम करे के चाहिए हम इनके, एकर पर हम जो है से थोड़ा सा चर्चा करबे शुरू में। फिर ओकर बाद देखा कुछ जरूरी संदेश भी लेकर आलिए। फिर ओकर बाद देखा कि हमें बात करबे कि मिट्टी स्वास्थ्य संतुलित पोषण कैसे हम इनके जो है से बढ़िया से रख सको या मिट्टी के और अपने आप कैसे स्वस्थ रह सको ये ओकर पर बात करबे। और फिर थोड़ा देर के बाद हम इन बात करबे थोड़ा एक जानकारी लेकर आ रही है कि अभी के समय देखा कि हम इनके जितना भी किसान भाई बहन सब हथिन से अपन अपन धान के रोपा डोबा सब लगल हथिन, तो ओकरा पर एक जानकारी लेकर आ रही है कि धान रोपाई के दौरान जो है से हम कैसे अपन धान पर ध्यान देबे और का देख रेख करबे कि हम इनके धान के फसल जो है से बढ़िया से रहते, और एक बारे में जो जानकारी देवे होथिन वो होथिन विकास कुमार और हम इन जो बात कर लेते वो हम बात कर लिए श्याम सुंदर रजक। तो ये भी जानकारी तो इनके समय समय पर सुनेबे, और फिर देखा कुछ लोकगीत भी लेकर लिए वो भी तुहनी तक पहुँचेबे, और फिर बाजार भाव और मौसम के जानकारी भी थोड़ा सा हम जो है से तुहनी के संगे साझा करबे, और फिर लास्ट में जो बात करबे वो है फसल के नुकसान में जो है से जो हुए है भरपाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तरफ से तो हमें का कैसे लाभ मिलते और कितना काम होते एक बारे में हम चर्चा करबे। तो शुरू करो ये प्रोग्राम के किसान भाई बहन सब, देखा कि आज सबसे पहले तुहनी संगे बात करूँ या हम उम्मीद करूँ कि तुम सभी स्वस्थ होबा और मस्त होबा और अपन खेत बाड़ी के काम में सब लगल होबा। लेकिन देखा कि अभी के जिस मौसम हुआ है इस मौसम में जो है इनकी जो है से आराम से और थोड़ा सा सतर्क रह के काम करे के चाहे, काहे कि देखा कि इस मौसम में जो है से सांप बिच्छा के भी जो है से बहुत ज़्यादा निकले की संभावना हो जाए है, और बहुत जगह तू खबर भी देखे थोबा खबर भी पढ़े थोबा कि यहाँ सांप काटे से इस आदमी की मौत हो गए चाहे वहाँ सांप काटे से ओकरा मौत हो गए। तो हमें इनके हमेशा सतर्क रह के चाहिए सांप से, कहे कि इस मौसम में देखे थोबा कि पानी जब पड़ो है तो गढ़ा नाला में या तो चूहा के बिल में जो सांप छिप के रहो है ओकरा में जब पानी घुस जाए तो सांप वहाँ से अगबकाग निकलो है, और उस सांप जो है से अधिकतर कोशिश करो है कि घर के तरफ घुसे के। तो हम इनके हमेशा जब भी रात में हम अपन खटिया पर चाहे चौकिया पर चाहे पलंग पर अगर सुते लिए तो जरूर से एक बार जो है से बैठ के बढ़िया तरीके से झाड़ लिए मच्छरदानी के बढ़िया तरीके से झाड़ लिए, ओकर बाद ही हम जो है से ओकर में सूते की कोशिश करिए, और अगल बगल जितना भी है घास फूसा जी है ओकरा हमेशा हम इनके साफ करते रहे चाहिए, और गढ़ा नाला जो पानी है ओकरा में हमेशा हम इनके ब्लीचिंग पाउडर या तो किरोसिन तेल छिड़काव करे चाहिए ताकि मच्छर वगैरह जो है से ज़्यादा नए पनपे। तो देखा कि जैसे हम चर्चा के लिए किसान भाई बहन सब की आज हम बात करबे कि धान मक्का दलहन तिलहन के जो फसल है ओकरा अगस्त महीना में हम इन काची काम करे चाहिए हम इनके। तो देखा सबसे पहले हम इनके है कि अपन अपन खेत में उचित जल के जो है से प्रबंधन रखे के चाहिए, और अधिक पानी भी जो है से खेत में ना रखे के चाहिए। धान पे हम सबसे पहले बात कर लिए तो इनसे, और खरपतवार के जो नियंत्रण है वो जो है से समय समय पर हमेशा करे के चाहिए, निराई गुराई करे के चाहिए, और अगर निराई गुराई करे से भी अगर खरपतवार के नियंत्रण ना हो रहा तो हम इनके जो है से खरपतवार नाशी एक दवा वो है ओकरा छिड़काव हम इनके समय से कर देवे के चाहिए। और फिर धान फसल में देखा कि लगे वाला बीमारी भी जो है से बहुत तरह के हो, लेकिन देखा ओकरा में दो तरह के बीमारी जो है से बहुत अधिक प्रभावित हम इनके क्षेत्र में करो है जो धान के बर्बाद कर दो है वो है तना छेदक और पत्ती लपेटक। ये सब बीमारी जो है से हम इनके हमेशा जो है से हम इनके फसल के बर्बाद करो है, तो ओकरा हमेशा हम इनके जो है से सतर्क रह चाहिए और हमेशा अपन खेत में देख रेख करते रहना चाहिए कि एक बीमारी हम इनके खेत में लग तो नहीं रहा है, और अगर लग रहा है तो एक हम इनके जो है से कीटनाशक दवा के समय समय पर छिड़काव करे के चाहिए। और धान के खेत में जो है से देखा कि मेड़ में हमेशा ध्यान देवे के चाहिए, जैसे नया नया जो मेड़ बनू है हम इनके किसान भाई बहन से बनाओ थी ओकरा पर ध्यान देवे के चाहिए, और जहाँ से पानी निकासी हुए वहाँ भी ध्यान देवे के चाहिए ताकि कहीं टूट न जाए पानी ज़्यादा निकल न जाए और पानी

धान में जो है से 2 इंच हमेशा रहे के चाहिए ताकि पानी धान के खेत हमें के जो है से हार्ड न हो जाए और हार्ड होने से ओकर जड़ जो है से ज्यादा चले न और धान के फसल जो है से बढ़िया हो बोला है। तो हमेशा हम इनके ध्यान देवे के चाहिए कि धान के फसल में हम इनके पानी हमेशा रहे के चाहिए। फिर ओकर बाद देखा कि मक्का पर हम बात करो ये कि अगस्त के महीना में मक्का के जो खेती ओकरा पर हम इन कैसे ध्यान दिए। तो ओकर में देखा सबसे पहले हम इनके काम करे है कि खेत में पानी जो है जमा ना होवे देवे के चाहिए और पानी जो है से निकासी के वो रास्ता बना देवे के चाहिए ताकि जब बारिश हो है जब ज़्यादा बारिश हो लगो है तो पानी खेत में जब जा है तो पानी आराम से कहीं से निकल जाए ताकि खेत में पानी ना जमे और हम इनके मक्का की जो फसल है वो बढ़िया तरीके से रहे। और फिर एक हमें कहा है कि आवश्यकता अनुसार जो है से नाइट्रोजन के टॉस ड्रेसिंग हमेशा करते रह के चाहिए ताकि हम इनके मक्का के जो खेती है वो बढ़िया तरीके से रहे और अच्छा रहे। और मक्का में खरपतवार के नियंत्रण पर भी हम इनके ध्यान देते रह के चाहिए और समय समय पर जो है से निराई गुराई हमेशा करते रह के चाहिए। और फिर देखा कि समय पर प्रोग्राम जो है से मिट्टी के भी चढ़ाव करना बहुत जरूरी है ताकि जब तेज हवा चाहे तेज बारिश होता तो उस समय हमने देखा कि मक्के के जो फसल है वो गिरे के ज़्यादा संभावना जो है तब हम इनके जो है से हम एक पर ध्यान देवे के चाहिए। और फिर देखा कि कर मक्का के खेती में जो है से बीमारी भी जो है से ज़्यादा लगो है तो वो बीमारी के बच जो है भी है ऐसे देखा कि सबसे ज़्यादा बीमारी का है कि एक तना छेदक है फिर है आर्मी वर्म। ये दो बीमारी जैसे हम इनके मक्का के प्रति जो है से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा हुआ है तो हम इनके हमेशा ध्यान देवे के चाहिए। अगर ये दो बीमारी लग रहे तो हम इनके कीटनाशक दवा के छिड़काव समय समय पर करते रहे के चाहिए और देख रेख हमेशा करते रह के चाहिए। और फिर देखा किसान भाई बहन सब हम आज फिर बात करवाए कि दलहन की जो फसल हुआ है वो भी जो है से अगस्त महीना में अगर पर हम इनके काशी काम करे के चाहिए तो एकर में भी देखा सबसे पहले कि खेत में पानी जो है से हमेशा काट के रखे के चाहिए जैसे कि ढालू मदने जैसे हमेशा ओकर मेड़ जो है से काट के हटा देवे के चाहिए ताकि जो है से पानी आराम से निकल जाए और पानी ओकरा में ज़्यादा से ज़्यादा ना जमे। और फिर खरपतवार के भी नियंत्रण एकरा में जो है से हमेशा करते रहे के चाहिए निराई गुड़ाई भी करते रहे के चाहिए और ज़्यादा करके कोशिश करे के चाहिए कि अरहर के जो फसल है ओकर में पानी जो है से ज़्यादा ना जमे के चाहिए क्या कि अरहर के जो फसल है वो पानी से जल्दी बर्बाद हो जाए देखे तो वह कि पीला पीला हो जो और सूख जो तो हमें कोशिश करे के चाहिए कि अरहर के जो खेत है ओकर निकासी पानी के जो है से बढ़िया तरह से बना दिए और माटी जो है से समय रहते ओकरा पर चढ़ा दिए ताकि वो भी फसल जो है से हवा से अड़ते ज़्यादा बारिश से होवे से गिरे के संभावना ओकरा में ज़्यादा हो जाए। और एकर में देखा कि अगर दलहन के फसल में अगर बीमारी की बात करिए तो ओकर में देखा कि क्या है कि फली छेदक बीमारी और तना मक्खी बीमारी जो है ये दो बीमारी जो है से बहुत ज़्यादा प्रभाव डालू है इनके दलहन फसल में। तो ये दो बीमारी अगर कभी भी हम इनके नज़र आवो है तो अगर हम इनके जो है से कीटनाशक दवा के छिड़काव समय समय पर और सही समय पर करे के चाहिए। और मूंग और उड़द के जो है जब हम इनके खेत में पकू लगो है तो समय से इनके ऊपर तोड़ाई भी कर लेवे के चाहिए। तो देखा किसान भाई बहन सब आगे और भी चर्चा करवाए अभी कार्यक्रम में हम बनल रहे और तुम्हें संगे भी कहियो कि अभी कार्यक्रम में बनल रहा और ओकर पहले सुनो ये कुछ जरूरी संदेश और एगो लोकगीत।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: हाँ तो किसान भाई बहन सब देखा हमें जो है से गुल्लो गीत भी सुना लिए और जरूरी संदेश भी सुना लिए। अब देखा कि एक बहुत बढ़िया है एगो हमें देखा कि जानकारी के साथ अभी जुड़वे कि मिट्टी स्वास्थ्य और संतुलित पोषण के महत्व के बारे में हमें जानकारी करूँ और थोड़ा सा हमें साझा करूँ ये अपन किसान भाई बहन के साथ है। और देखा कि सबसे पहले हमें जानू है कि हमीन के जो माटी जो है देखा कि इतना बढ़िया है कि ओकरा में अगर हमें कोई भी फसल लगावे तो बढ़िया तरीके से उगा भी लो और अपन घर के जो है से खुराकी भी जो है से कहा कि पूरा वो है। तो हमीन के माटी के सभ्य जीवन के आधार है कि और स्वास्थ्य माटी में अगर हमीन कहा कि उगावल करके मनुष्य या पशु के आवश्यक पोषक तत्व के प्रदान करे के अगर बारे में बात करो तो सबसे पहले देखा कि माटी के महत्व के बारे में हम बात करो ये तो उपजाऊ माटी से स्वास्थ्य और पौष्टिक फसल जो है से हम इनके प्राप्त हो वो है। देखा कि कितना बढ़िया बात है और माटी में नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास और सूक्ष्म पोषक तत्व के जो है से संतुलित भी बहुत जरूरी हो वो है क्रम में। और किसान भाई बहन सभे के अपन माटी की उर्वरता बना के रखे के चाहिए ताकि जो है से हम इनके माटी जो है से हमेशा बढ़िया रहे। तो ओकरा लेकर के सबसे पहले हम इनके का करे के चाहिए कि फसल चक्र अपनावे के बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि हम इनके माटी जो है से उर्वरता शक्ति से बढ़िया तरीके से बनल रहे। और हम इनके माटी जांच के अनुसार जो है से हम उर्वरक के जो है से उपयोग करे के चाहिए अपन माटी में ताकि हम इनके पता चले थे कि हम इनके मिट्टी में कौन उर्वरक शक्ति की कमी है और कौन जैविक खाद की कमी है और कौन पोषक तत्व की कमी है ताकि वह हिसाब से हमें जो है से अपन माटी में जो है से उर्वरक के उपयोग करवे। और उसके बाद हमें देखा कि बात करो कि स्वास्थ्य के महत्व के बारे में तो स्वास्थ्य शरीर के खातिर जो है से पौष्टिक भोजन और स्वास्थ्य पानी और पर्याप्त नींद जो है और एक नियमित शारीरिक गतिविधि आवश्यक है। पौष्टिक आहार शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ावो है और काम करे के क्षमता के बेहतर भी बनावो है। तो हमें के अगर माटी स्वास्थ्य तो देखा कि सब कुछ हमें के बढ़िया तरीके से मिलता और देखा कि अगर हम फिर कहा है कि संतुलित पोषण तत्व के महत्व के बारे में अगर हम बात करो ये तो संतुलित भोजन में दाल हो गलो दूध हो गलो हरा सब्जी हो गलो रंगीन सब्जी हो गलो फल हो गलो वसा हो गलो और फिर देखा कि पर्याप्त पानी भी हमें के जो है उचित मात्रा में अपन में शामिल करे के चाहिए। और किसान भाई बहन सब से एक बात आज जरूर कहबे कि अगर हमें के अपन माटी के स्वास्थ्य रखो ही है तब हमें के जो है से पौष्टिक आहार मिलो है और अगर पौष्टिक आहार हमें के बढ़िया तरीके से मिलो है तब कहा कि संतुलित आहार मिलो है और संतुलित आहार अगर हमें के मिलो है तब जाकर के कहा कि मनुष्य जो है से स्वस्थ रोहे आनी हमें जैसे स्वस्थ रोहे और बढ़िया से रोहे तब हमें के हमेशा कोशिश करे के चाहिए कि अपन माटी के स्वास्थ्य रखिए और बढ़िया से रखिए। तो कर ले के देखा कि जे भी हमें बात चर्चा के लिए ओकरा पर हमें ध्यान दिया कि हमें की माटी स्वास्थ्य कैसे रहते और फिर देखा कि आगे हमें थोड़ा सा एक बढ़िया जानकारी लेकर आ लिया जैसे बता ले लियो कि धान रोपाई के दौरान हमें कि कौन कौन बात पर ध्यान रखे चाहिए और एक पर एक जानकारी लेकर आ लिया और वो जानकारी जो देवे थी वो थी विकास कुमार और हमें जो बातचीत कर लेते वो हम ये श्याम सुंदर रजक तब चला शुरू है जानकारी भरल बातचीत। चौपारण प्रखंड के सबैया गांव और यहाँ पे आज हम लोग बातें करेंगे कि अभी देख रहे हैं कि हमारे किसान भाई बंधु सब जो है धान की रोपाई में जो है ऐसे पूरा बिजी है और अभी लगे हुए हैं और लगे भी रहना चाहिए। धान का जो फसल है बहुत ही प्रमुख फसल है हमारे किसान भाई बंधु सब के लिए और अधिकतर जो है सो खाने का जो अपना जुगाड़ करते हैं वो धान ही है जिसे लोग धान का चावल बना करके अपना साल भर खाने का जो है सो उगाते हैं और कुछ अपना पैसा कमाने का भी जो है सो धान का फसल एक जरिया है। तो इसी पे हम लोग आज बातें करेंगे कि धान का फसल हमारे किसान भाई बंधु सब जब लगाते हैं तो कैसे लगाएं उसका देखरेख कैसे होना चाहिए और इसमें अधिक से अधिक हम लोग कैसे लाभ कमाएंगे इसी के बीच में आज हम लोग आए हैं बात करने के लिए सबैया। तो सबसे पहले हम आपका नाम और पता जानना चाहेंगे।
1: मेरा नाम विकास कुमार रहने वाला हूं सबैया का।
0: जी हमारे किसान भाई बंधु सब कैसे रोपाई करेंगे और कैसे अधिक से अधिक लाभ लेंगे इस पे हम आपसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि धान का खेत जो है तो जब उसको हम कादो करते हैं तो कादो करने का जो तरीका है वो क्या होना चाहिए?
1: पहले उसका जुताई होना चाहिए।
0: जी
1: जुताई करो उसके बाद एक चास करो दूसरा में दो चास करो तीसरा में तीन चास करो चौथा में चौकी देना चाहिए।
0: जी
1: उसमें चौकी देने से क्या होता है कि उसका घास जो होता है
0: नीचे दब जाता
1: है। दब जाता भी है, अच्छा भी जुताई भी होता है
0: जी,
1: प्लस सही उसमें जो है से घास भी पूरा खत्म हो जाता है।
0: अच्छा, रोपाई करने के पहले जो है से कितना बार जो है जुताई करके, कितना दिन और कितना बार जुताई करके जो है से पहले छोड़ देना चाहिए?
1: दो दिन तीन दिन छोड़ देना चाहिए।
0: रोपाई के 2 से 3 दिन पहले जुताई करके छोड़ देना चाहिए और खेत का पानी जो है बांध के छोड़ देना चाहिए, ताकि जो है हमारा मिट्टी जो है गल जाए, उसमें घास भूसा भी जो है गल के खाद के रूप में काम करेगा। तो बिहन जो है विकास जी, तो बिहन कितना दिन के अंदर रोपाई जैसे हमारे किसान भाई बंधु सबको कर
1: 20-25 दिन के अंदर में
0: रोपाई कर देना
1: चाहिए
0: ताकि हमारा बिहन का जो उसका समय जो है 20 या 25 दिन है, और उसके अंदर में अगर रोपाई हो जाता तो हमारा धान का फसल जो है अच्छा होता है। अच्छा, रोपाई के कितना दिन पहले जैसे कादो हम लोग हमारे किसान भाई बंधु सबको कर देना चाहिए?
1: 2-3 दिन 4 दिन के पहले कर देना चाहिए।
0: अगर खेत में पानी है तो करके छोड़ देना चाहिए।
1: उसके बाद फिर उसमें जितना है उसका मिट्टी गल जाने के बाद फिर रोपाई अच्छा होता है
0: जी।
1: दूसरा में है कि अब खाद भी पहले धान रोपने के पहले

0: जी जी,
1: उसको खाद दे दीजिए, उसके बाद फिर रोपाई करिए।
0: जी सर, रोपाई के दिन भी देखते हैं कि बड़े हमारे किसान भाई बंधु सब जो है सो क्या करता है कि जैसे कि एक दिन दो दिन तीन दिन पहले तादू करके छोड़ दिए, फिर रोपाई के दिन जो है गाड़ी वगैरह नहीं चलाते हैं, उसी तरह रोपाई कर देते हैं। तो क्या ये अच्छा बात है कि रोपाई के दिन भी जो है हल्का फुल्का गाड़ी चलाना चाहिए, निकालना चाहिए,
1: गाड़ी चलाना चाहिए? क्या है कि ताजा कादो होने पर यह कीड़ा मकोड़ा नहीं लगता है,
0: कीड़ा मकोड़ा नहीं लगता है। अब धान का जड़ भी जो है सो बढ़िया से मजबूत होता है, नीचे पकड़ता भी है जल्दी। तो हमारे किसान भाई बंधु के पास मैंने कि ध्यान होना चाहिए कि रोपाई के दिन जो है सो एक बार गाड़ी या तो हल बैल जरूर चलाएं ताकि कादो जो है फिर से ऊपर नीचे हो जाए तो आपका धान में जो है सो कीड़ा मकोड़ा नहीं लगेगा और उसका जड़ भी जो है बढ़िया तरह से मजबूती होगा। अच्छा, रोपा के दिन विकास जी कौन कौन सा जो है जो खाद का प्रयोग करना चाहिए हमारे किसान भाई बहनों को?
1: डीएपी करना चाहिए, यूरिया करना चाहिए, पोटास भी थोड़ा मिला के करना चाहिए। उसमें क्या होता है कि उसमें प्रभाव अच्छा पड़ता है, पैदा भी अच्छा होता है।
0: अच्छा, कितना मात्रा में देना चाहिए? मान के चलिए अगर हम आपसे पूछे कि अगर एक कट्ठा में डीएपी कितना देना चाहिए, यूरिया कितना देना चाहिए, पोटास कितना देना चाहिए?
1: यूरिया देना चाहिए आधा के जी
0: जी
1: और पोटास देना चाहिए 250 ग्राम।
0: मैंने इस तरह से मिला करके जो सो अगर आप देते हैं तो आपका धान का जो रोपाई हुआ वो धान आपका बढ़िया हरा रहेगा और जल्दी कहीं निकलेगा भी जमीन से। अच्छा, आपके पास हर जोताई के लिए क्या सुविधा है, आप क्या रखे हुए हैं घर में?
1: ट्रैक्टर से ही होता है,
0: ट्रैक्टर से ही आप खेती करते हैं। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है विकास जी की आप जो है सो अपना खेत जुताई के लिए अपने पास जो है गाड़ी रखे हुए है। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि गाड़ी की देख रेख जो है करना बहुत ही मुसीबत हो जाता है, बहुत ही दिक्कत हो जाता है, तो गाड़ी की देखरेख आप कैसे करते हैं?
1: गाड़ी को उसका धो धा के अच्छा से रख देना चाहिए, ग्रीस व्रीस सब चीज मोबिल समय पर पलट देना चाहिए, उसको कल होके खराब भी नहीं होगा।
0: तो चलिए, जैसे कि बताया कि गाड़ी जो है अगर आप रखते हैं तो उसका जो है सो समय से उसका धोवाई होना चाहिए, सर्विसिंग समय से होना चाहिए, बाकी उसका जो कहीं जिसे हम लोग खाना खाते उसी तरह से उसका जो मोबिल है डीजल है उस समय समय पर अगर आप देते रहेंगे तो आपका गाड़ी जो है सो खराब होने का संभावना कम हो जाएगी। अगर हल के बात करें तो कौन कौन सा हल का आप इस्तेमाल करते हैं अपना खेत में?
1: जुताई करिएगा तो अच्छा जुताई भी होगा, फिर रोटर दूसरा में रोटर जिसे भी कर सकते हैं।
0: मैंने कि दोनों हल आप रखे हुए हैं तो उसका प्रयोग जैसे भी देख रहे हैं कि धान का रोपाई हो रहा है तो धान के रोपाई में खड़ा का प्रयोग आप कहाँ कर रहे हैं, रोटर का प्रयोग कहाँ कर रहे हैं?
1: फर्स्ट में खड़ा से करना चाहिए, खड़ा से क्या होगा उसका जुताई ज्यादा जुताई होगा,
0: गहराई ज्यादा होगा।
1: रोटर का है कि रोटर आपका 4 इंच
0: जी। तो मैंने कि कहिए तो खड़ा से जोताई शुरू में कर दे ताकि जो है आपका गहराई जाए। और अब देखते हैं कि हमारे बहुत किसान भाई बंधु क्या करते हैं कि जैसे देखिए हम लोग तरफ तो काली मिट्टी है, काली मिट्टी में आप है तो यहाँ घास जो है इस मिट्टी में बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन देखते हैं कि हमारे किसान भाई बंधु क्या करते हैं, पहले रोटर से जो है सो जोताई करे ताकि घास जो है सो कट जाए और बारीक बारीक हो जाए, उसके बाद जो है खड़ा हल से जोताई करते हैं। तो क्या ये ठीक होता है हमारे किसान भाई बंधु के लिए?
1: रोटर से तो घास खिली केवल काटता है, ज्यादा जोताई तो खड़ा हल से होगा।
0: मैंने को आपके कहने का मतलब है कि रोटर से भी आप जुताइए और खड़ा हाल से जरूर जुताइए ताकि आपका मिट्टी जो है सो नीचे से ऊपर हो और गहराई जुताई हो। ये बहुत ही जरूरी है हमारे किसान भाई बंधु को कि दोनों हल का प्रयोग करें अपना खेत में। अच्छा, जुताई के पहले गाड़ी को आप कैसे तैयार रखते हैं? जैसे भी देखिये बरसात आया तो बरसात आने के पहले गाड़ी को आप कैसे तैयार रखते हैं, क्या क्या उस पर ध्यान देते हैं?
1: मोबिल फिल्टर ये सब चेंज करना चाहिए, सारा चीज धो धा के रख देना चाहिए, तिरपाल भी झाप के रख देना चाहिए कि कभी चूहा वगैरह नहीं काटे।
0: जी जी, चलिए गाड़ी पर आपका जिस बात हो गया विकास जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे अंतिम में कि आप कितना बिचवा किए?
1: 50 केजी तक बिहन हमने किया।
0: 50 केजी आप बिहन किए है, कितना खेत में रोपाई जो है इतना करते हैं आप?
1: इसमें है 8 से 9 एकड़ में इतना 50 केजी धान आप लगा सकते हैं।
0: 8 से 9 एकड़ तक आप जो है रोपाई करते हैं। अच्छा, इसको रोपने के लिए जो है सो अपने से आप तैयार करते हैं कि लेबर वगैरह कितना लगाते हैं और व्यवस्था क्या रखते हैं?
1: लेबर भी इससे ही करना चाहिए, लेबर की क्या है कि अपने से हो नहीं पाएगा।
0: जी जी,
1: कितना लेबर से करेगा ये, अपने से कितना हो नहीं सकता है ना
0: जी। तो इसके लिए जो है लेबर यहाँ आपके पास जो उपलब्ध मिल जाता है, अभी लेबर के क्या चार्ज दे रहे हैं, रोपने का चार्ज क्या दे रहे हैं आप?
1: अभी है 400 रुपया है एक टन खाना है।
0: 400 रुपया जैसे रोपने का दे रहे हैं और एक टन खाना भी दे रहे हैं, और जो बिहन बिछड़ा जो कबाड़ता है उसको कितना?
1: उसका भी है 600 रुपया है,
0: 600 और एक टन खाना भी दे रहे हैं। चलिए विकास जी, आप जो है सो अच्छा खासा जो है सो लागत लगाते हैं और

0: अगल बगल के लेबर का जो है एक तरह से कहिए तो आप रोजी रोटी भी देते हैं खेती बाड़ी के माध्यम से। फिर आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि लमसम आप कितना धान उगा लेते हैं?
1: 100 से 150 क्विंटल तक हो जाता है।
0: 100 से 150 क्विंटल तक जो है आप धान उगा लेते हैं। चलिए, तो अच्छा धान को जो है सो आप कैसे मिसाई करते हैं लमसम?
1: थ्रेसर से ही करते हैं। थ्रेसर से कर दिए, खेत में ला दिए, फिर उसके बाद व्यापारी बुलाते हैं, व्यापारी अपना फिर
0: पहले क्या देखते थे कि हमारे किसान भाई बंधु जो है सो धान का जो है सो नीचे जैसे कि बिछा दिए उसके
1: घर में करते थे,
0: उसका नेवारी बांधते थे, घर में मलाई करते थे, मगर अब
1: उसमें ज्यादा लागत लगता था,
0: उसमें लागत भी ज्यादा है, खर्च ज्यादा है। तो अब क्या है कि थ्रेसर आ गया था, हमारे किसान भाई बंधु सबको जो है आराम हो गया कि डायरेक्ट जो है आपका
1: लेबर भी कम पड़ रहा है,
0: लेबर भी कम पड़ रहा है और धान भी उड़ाने का कोई टेंशन नहीं,
1: झंझट नहीं
0: है। फ्रेश धान भी आपको निकाल दिया तो डायरेक्ट बोरिंग कीजिए, उसको बिक्री कीजिए।
1: कटकरी उसका अलग निकाल देता है, धान अलग निकाल देता है, पुआल का तो
0: उसका बिक्री कहाँ करते हैं आप? कैसे करते हैं?
1: वो व्यापारी ले जाता है,
0: व्यापारी सब ले जाता है
1: जी।
0: चलिए विकास जी, आप हमारे किसान भाई बंधु सबको जो है बहुत ही अच्छी जानकारी दिए और आगे फिर हम उम्मीद करेंगे कि आपसे एक मुलाकात होते रहे और आपसे तरह तरह की जानकारी हम लेते रहे, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: हाँ, तो देखा किसान भाई बहन सब अभी सुन लिया जानकारी भरल बातचीत और वो है कि धान के फसल में हमें कैसे ध्यान रखिए और ओकरा पर कैसे अधिक से अधिक जो है से कब उपज लिए। तो देखा कार्यक्रम के अंतिम में जेते जेते आज हमें जानो ये बाजार के आज के भाव और मौसम की जानकारी। तो देखा कि अभी लाल आलू जो बाजार में जो है से 20 से 25 रुपये प्रति किलो है, सफ़ेद आलू 15 से 20 रुपये प्रति किलो है, प्याज जो है से 20 से 25 रुपये प्रति किलो है और फूलगोभी के दाम अभी जो है से देखा कि 60 से 65 रुपये प्रति किलो है और पत्ता गोभी 40 से 45 है और पटल जो है से 30 से 35 रुपये प्रति किलो है और भिंडी जो है से 25 से 30 रुपये प्रति किलो है और नेनुआ भी देखा 15 से 20 रुपये प्रति किलो है और कद्दू जो है से 20 से 25 रुपये प्रति किलो है और हरा मिर्च अभी दाम देखा कि 60 से 65 रुपये है और शिमला मिर्च 70 से 80 रुपये बाजार में भी है और गाजर 40 से 45 है और बीट जो है 45 से 50 है और बीन्स की अगर बात करें तो 35 से 40 है और मूली अभी देखा 20 से 25 रुपये बाजार में है और धनिया पत्ता जो है 80 से 100 है और अदरक 90 से 100 है और खीरा के दाम देखा 30 से 35 रुपये अभी है और टमाटर जो है 30 से 35 रुपये किलो है और लाल साग और पालक साग जो है 20 से 25 रुपये प्रति किलो है। और आज के अगर मौसम की जानकारी की अगर हम बात करूँ तो देखा कि अधिकतम तापमान जो रहा आज 29 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस तक रहा है और न्यूनतम तापमान जो है से 24 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक रहा है और आर्द्रता जो है 61% रहा है। और मौसम के पूर्वानुमान की अगर बात करिए देखा कि अभी जो है से 80% चांस है कि हम इनके इलाके में जैसे बारिश होवे की है और तेज तूफान की ज्यादा संभावना भी है। और कल के अगर हम इन बात करो ये मौसम के जानकारी बारे में तो अधिकतम तापमान कल के जरा 31 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस तक रहे की संभावना है और न्यूनतम जो है 23 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस तक रहे की संभावना है और बादल छाए रहता है और गरज मल्लक के साथ हल्का फुल्का बारिश भी होता है। तो यही जानकारी के साथ अब हमारा कार्यक्रम खेती बारी से भी विदा था। तो कार्यक्रम खेती बारी से हमारा श्याम के विदादा जोहार प्रणाम नमस्कार।

0: di Bari.
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेतीबारी। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। प्रादेशिक मुख्य समाचार के लिए हमारा अगला प्रसारण हमारे रांची केंद्र से।

0: प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और विद्यार्थियों की मांगों के समर्थन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी ने आज विधानसभा के घेराव का प्रयास किया। विधानसभा की ओर शांतिपूर्ण मार्च कर रहे एबीवीपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने पुरानी विधानसभा के पास रोक दिया। इस दौरान पुलिस की ओर से लाठीचार्ज किए जाने के बाद बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। जेपीएससी और जेएसएससी समेत कई परीक्षाओं में हुई कथित धांधली के विरोध में पिछले 18 दिनों से रांची में आंदोलन कर रहे छात्रों से मिलने आज भाजपा नेता दीपक प्रकाश धरनास्थल पर पहुंचे। वहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने राज्य सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया और सीबीआई जांच की मांग दोहराई। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि गुमशुदा व्यक्तियों के मामलों में तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश आयु या लिंग को ध्यान में रखते हुए सभी पर लागू होता है। न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने इसका पालन नहीं करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। पलामू के सांसद विष्णुदयाल राम ने आज लोकसभा में चियां की हवाई अड्डे के विकास और वहां से जल्द नियमित वाणिज्यिक उड़ान सेवा शुरू करने का मुद्दा उठाया और केंद्र से लंबित कार्यों को मिशन मोड में पूरा करने की मांग की। पूर्व मध्य रेलवे के बरकाकाना सोननगर रेलखंड पर गढ़वा रोड और सिगसिगी रेलवे स्टेशन के बीच रिवर्सिबल लाइन पर आज करीब दिन के 11 बजे एक मालगाड़ी के 11 डिब्बे पटरी से उतर गए। इन डिब्बों में कोयला भरा हुआ था। इस घटना से डाउनलाइन पर परिचालन ठप है। इस दुर्घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। रेलवे प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। पेश है कार्यक्रम युववाणी।

युवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा दोस्तों को माधविका नमस्कार। दोस्तों, किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी तकनीक, उसके संसाधन। निश्चित रूप से ये सब महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इन सबसे बड़ी ताकत है उस देश के युवा, क्योंकि युवा केवल देश का भविष्य नहीं होते, युवा देश के वर्तमान की ऊर्जा, सोच और संकल्प होते हैं। आज हमारा देश दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। हमारे युवा के पास ऊर्जा है, नई सोच है, तकनीक की समझ है, सपने हैं और उन सपनों को पूरा करने का साहस भी है। दोस्तों, युवा शक्ति का अर्थ केवल युवाओं की संख्या नहीं है, युवा शक्ति का अर्थ है ऊर्जा, ज्ञान, कौशल, नवाचार, अनुशासन और जिम्मेदारी। एक युवा जब नई चीज सीखता है, जब वह कोई समस्या हल करने का प्रयास करता है, जब वह अपने गांव या शहर को स्वच्छ रखने में योगदान देता है, जब वह डिजिटल तकनीक का सही इस्तेमाल करता है, जब वह स्वरोजगार की ओर कदम बढ़ाता है और समाज के कमजोर वर्ग की मदद करता है, तब वह केवल अपना जीवन नहीं बदल रहा होता, वह अपने देश के विकास में योगदान दे रहा होता है। दोस्तों, सरकार योजनाएं बना सकती हैं, व्यवस्थाएं तैयार कर सकती है, अवसर उपलब्ध करा सकती है, लेकिन उन अवसरों को शक्ति में बदलने का काम देश के युवाओं को करना होगा। दोस्तों, विकास की पहली सीढ़ी है शिक्षा, लेकिन आज के समय के केवल डिग्री पर्याप्त नहीं है, हमें चाहिए ज्ञान के साथ कौशल। आज का युवा जितना अधिक सीखेगा उतना ही अधिक सक्षम बनेगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI, रोबोटिक्स, डिजिटल तकनीक, साइबर सुरक्षा, डाटा साइंस, ग्रीन एनर्जी, डिजिटल मार्केटिंग, कृषि तकनीक, ऐसे कितने ही क्षेत्र हैं जहां युवा अपनी प्रतिभा का उपयोग कर सकते हैं। कौशल का अर्थ है समस्या को पहचानना और उसका समाधान खोजने की क्षमता विकसित करना। आज का युवा अगर ये कहे कि मैं रोजगार पाने के साथ साथ रोजगार देने वाला भी बनूंगा, तो यही सोच विकसित भारत की नींव मजबूत करेगी। दोस्तों, विकसित भारत की कल्पना आत्मनिर्भरता के बिना पूरी नहीं हो सकती। आत्मनिर्भरता का अर्थ है हम अपनी क्षमता पर विश्वास करें, अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग करें और दुनिया के साथ बराबरी से आगे बढ़ें। इसमें युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। युवा स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दे सकते हैं, नई तकनीक विकसित कर सकते हैं, कुटीर और लघु उद्योग को डिजिटल बाजार से जोड़ सकते हैं, कृषि को आधुनिक तकनीक से जोड़ सकते हैं और अपने क्षेत्र की विशेषताओं को देश दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। यानी लोकल से ग्लोबल की यात्रा में युवा एक मजबूत पुल बन सकते हैं। दोस्तों, आज का युवा तकनीक के सबसे अधिक जुड़ा हुआ है। मोबाइल फोन, इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म अब केवल मनोरंजन के साधन नहीं है, इसका उपयोग शिक्षा के लिए, व्यवसाय के लिए, सरकारी सेवाओं के लिए, कौशल विकास के लिए और सामाजिक जागरूकता के लिए किया जा सकता है। दोस्तों, इरादों में जान हो तो मंजिल दूर नहीं, हौसलों में उड़ान हो तो आसमान दूर नहीं, देश को बदलने का सपना अगर दिल में हो तो एक युवा के कदमों में विकसित भारत दूर नहीं। इसी विश्वास और उम्मीद के साथ सुनते हैं एक गाना।

0: दोस्तों, इस साल हर घर तिरंगा अभियान 9 अगस्त से 17 अगस्त 2026 तक मनाया जा रहा है। यह अभियान देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150वें वर्ष के जश्न के रूप में आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों, आप सभी अपने घरों में तिरंगा फहरा सकते हैं और हर घर तिरंगा ऑफिशियल वेबसाइट पर तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी अपलोड करके डिजिटल प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। तो चूके नहीं, हर घर तिरंगा फहराएं और सेल्फी अपलोड करके डिजिटल प्रमाण पत्र प्राप्त करें। और आइए अब सुनते हैं एक भेंट वार्ता। विषय है व्यावसायिक शिक्षा में वाणिज्य विषय की भूमिका। भेंट वार्ताकार हैं प्रोफेसर अनंत कुमार सिन्हा और भेंट करता है अशोक कुमार।
1: श्रोताओं, आज के युववाणी कार्यक्रम में हमारे बीच हैं केबी ओमेंस कॉलेज के वाणिज्य विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर अनंत कुमार सिन्हा जी। सर, आपका आकाशवाणी के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, साथ ही साथ नमस्कार।
2: धन्यवाद और नमस्कार।
1: सर, ऐसा है कि व्यावसायिक शिक्षा का ही दौर है अभी के समय में, और इसमें अगर वाणिज्य विषय की बात की जाए, कॉमर्स की बात की जाए, तो सोने पे सुहागा वाली बात है। तो आज का जो हमारा विषय है कि व्यावसायिक शिक्षा में वाणिज्य विषय की क्या भूमिका है, इस संबंध में हम आपसे बातें करने वाले हैं। सबसे पहले यह बताया जाए कि यह व्यावसायिक शिक्षा कॉमर्स जो है, तो इसके प्रति छात्रों में लगाव भी काफ़ी देखी जा रही है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब इसी सेक्शन में आना चाहते हैं, कॉमर्स के क्षेत्र। तो क्या इसकी तैयारी जो दिमाग में बच्चे अब सोच के चलते हैं कि मुझे कहाँ जाना है, क्या बनना है, क्या मैट्रिक के स्तर पर जब वो टेंथ में होते हैं उसी समय से ये दिमाग में ले कर चलना चाहिए कि हमें इस क्षेत्र में जाना, और क्या उसी समय से मेहनत करनी चाहिए, इस संबंध में बताएं सबसे पहले।
2: देखिए अशोक जी, ऐसा है कि वाणिज्य का जहाँ तक बात है, तो ये विषय खुद ब खुद अगर हम लोग ये समझें तो ये एक व्यवसायिक विषय ही है
1: जी।
2: और इसका क्षेत्र तो व्यवसाय के क्षेत्र में अगर देखें, हर एरिया जो है, जो आज किस कोई भी सेक्टर का हो, जहाँ पर कॉमर्स का यूज ना हो ऐसा नहीं है। आपके प्रश्न में दो तीन बातें थी कि आपने कहा कि तैयारी कब से करनी चाहिए, तो जहां तक बात है कि मैट्रिक के बाद नहीं, मैट्रिक के पहले भी बच्चे सोच सकते हैं,
1: इसलिए मैंने
2: अगर जी। हाँ, इसलिए क्योंकि हमारा जहां तक मानना है कि मैट्रिक में भी ये विषय है कॉमर्स
1: जी।
2: तो अगर बच्चे के मन में ये है कि हमको कॉमर्स के क्षेत्र में जाना है, बिजनेस स्किल्स के बारे में अच्छे से समझ रखना है, तो वो चाहेंगे तो बेसिक्स अपना 9-10 से ही वो शुरू कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। हालांकि जो बच्चे 9-10 में कॉमर्स नहीं लेते हैं, तो उनके बाद एक स्कोप है कि वो मैट्रिक के बाद वो तय कर सकते हैं कि उन्हें कॉमर्स में जाना है। और अगर कॉमर्स में जाना है तो ये भी जानना होगा कि कॉमर्स पढ़ लेने से केवल कंप्लीट नहीं होगा, कि बहुत तरह के स्पेशलाइजेशन है, जैसा कि आपका सब्जेक्ट का जो टॉपिक है व्यावसायिक शिक्षा में इसका क्या महत्व है, तो बहुत सारे स्पेशलाइज्ड व्यावसायिक शिक्षा का स्कोप है जहां पर बच्चे जा सकते हैं। हाँ, उसमें कॉमर्स विषय उनके लिए बहुत लाभकारी होगा, बहुत फायदेमंद है, ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि अगर वो कॉमर्स के फील्ड से आएंगे तो नेचुरल है कि उनको कहीं ना कहीं किसी भी कॉमर्शियल एजुकेशन में अगर वो जाना चाहेंगे, व्यावसायिक शिक्षा में जाएंगे, तो बहुत सारे कोर्स है उसमें उनका निश्चित तौर पर

0: फायदा मिलेगा कॉमर्स सब्जेक्ट पढ़ने का।
1: बहुत खूब। अच्छा, वो क्षेत्र की बात की जाए आनंद जी, कि वो कौन कौन से सेक्टर हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ इसमें जॉब की संभावना है?
0: हाँ, बिल्कुल सही है। देखिए, जॉब के दृष्टिकोण से पहले तो मैं जब इसको देखें तो पहले हम लोग को ये देखना होगा कि बच्चे के में स्किल कितना है, ये क्योंकि व्यावसायिक शिक्षा का स्तर भी बहुत अलग अलग है। कुछ बड़े सेक्टर्स हैं, जैसे आज हम लोग पहले से जानते हैं कि कॉमर्स में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके दिमाग में एक चलता है कि हम सीए बनेंगे, सीएस बनेंगे, आईसीडब्ल्यूए करेंगे, जिसको आज सीएमए कहते हैं हम लोग। तो ये सारे बड़े स्कोप्स हैं। अगर बच्चे के पास अपना नॉलेज बढ़िया है, टैलेंट है उनमें, तो वो ये सब कोर्सेस भी कर सकते हैं। कुछ फाइनेंशियली भी उनका स्ट्रांग होना पारिवारिक रूप से जरूरी होगा इन कोर्सों में जाने के लिए। लेकिन वैसे बच्चों के लिए भी आज बहुत सारे कोर्सेज छोटे छोटे उपलब्ध हैं, जो फिनेंशियली मान लीजिए कमजोर हैं, नहीं लगा सकते उतना पैसा, तो बहुत सारे कोर्सेज हैं। जैसे आज ग्रेजुएशन लेवल्स पर भी हमारे कॉलेज में भी बहुत वोकेशनल स्टडीज चल रहा है। हाँ, हाँ। जिसमें हम लोग अगर जाएं चाहें तो बच्चे जो है बीसीएस में जा सकते हैं, बैचलर ऑफ कॉर्पोरेट सेक्रेटरीशिप हम लोग बोलते हैं, उस तरह के कोर्सेस है, टैली के कोर्सेस है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पैकेज के कोर्सेस आते हैं। तो बच्चे अगर इस तरह के कोर्सेस भी कर लेते हैं, बहुत छोटे छोटे और भी बहुत सारे कोर्स हैं, ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं, तो ये सब सेक्टर्स में वो कम पैसा लगाकर भी जॉब अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर सकते हैं।
1: सर, एक बात इसमें आती है, जैसे आपने कहा कि कुछ कुछ फाइनेंशियल की प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, तो ऐसे छात्रों को इंटरमीडिएट के बाद की, जैसे उन्होंने 12 कम्प्लीट कर लिया है, 12 के बाद ऐसे कौन कौन से कोर्सेज हैं जिनको कि शॉर्ट टर्म का उनको कोर्सेज के बारे में बताएं, जो 2-3 साल करने के बाद उन्हें जॉब जो है सो मिल जाए, और क्या आपके विद्यालय में प्लेसमेंट की भी सुविधा है अगर वो कोर्सेज करें तो?
0: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि अभी हमने बताया कि हमारे यहाँ वोकेशनल स्टडीज के अंदर बैचलर ऑफ कॉर्पोरेट सेक्रेटरीशिप है, इसके अलावा बीबीए हम लोग पहले से सुनते ही आ रहे हैं, तो ये सब कोर्सेस हैं जिसमें बच्चों को जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़िया है, और फिनेंशियली भी वो अगर कमजोर भी हैं तो भी उनको बेनिफिट होगा। इन कोर्सेस में थोड़े पैसे ज़्यादा लगते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जितने भी सरकारी कॉलेज हैं सब जगह स्कॉलरशिप की सुविधा है, तो उनके फीस में उनको काफ़ी बेनिफिट मिल जाता है। कि उससे क्या होगा कि कम पैसा लगाकर भी फीस थोड़ा स्ट्रक्चर ज़्यादा जरूर होता है इसमें, लेकिन चूंकि वो रिइंबर्समेंट उनको मिल जाता है तो उससे सुविधा है। वो इस तरह के कोर्सेज को बीबीए है, बीसीएस है, बैचलर या ऑफिस मैनेजमेंट है, या फाइनेंस कॉर्पोरेट फाइनेंस का सेक्टर है, उस सेक्टर्स में भी वो जाएंगे और पढ़ाई कर लेते हैं तो कॉलेज में उनको एक स्कॉलरशिप मिल जाएगा और वो कम पैसे में भी एक जॉब अपॉर्चुनिटी वाला कोर्स कंप्लीट कर पाएंगे। और जहां तक प्लेसमेंट की बात है तो निश्चित तौर पर अभी हमारे यहाँ इन सब कोर्सेज में जितने भी वोकेशनल स्टडीज चल रहे हैं बच्चे कुछ अधिकतर बच्चों को प्लेसमेंट कहीं ना कहीं मिल रहा है। ठीक है, जहां तक पैसे की बात होगी तो कुछ कम बेसी होता है, लेकिन वो फिर भी जॉब अपॉर्चुनिटी उनको मिलेगा, निश्चित है ये।
1: अच्छा, तो हमने कहा 12 के बाद, तो ये 12 के बाद शुरू होने वाले कौन कौन से कोर्सेज हैं?
0: 12 के बाद वो बीबीए कर सकते हैं जी, अभी बीसीएस हमने बताया आपको कि वो कर सकते हैं वोकेशनल स्टडीज में, जो कॉमर्स के बच्चे हैं स्पेशली उनके लिए ये एरिया ज्यादा सुविधाजनक है। उसके अलावा और भी जैसे हमने बताया कॉर्पोरेट सेक्रेटरीशिप का कोर्स होता है, वो इंटरमीडिएट के बाद भी आईसीडब्ल्यूए में भी जा सकते हैं, सीएमए में भी जा सकते हैं, लेकिन उसमें उनको एंट्रेंस पास करना पड़ेगा। एक बैरियर है वहाँ पे कि एंट्रेंस, सीएमए का कोर्स भी वो आफ्टर इंटरमीडिएट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए निकालना पड़ेगा एंट्रेंस टेस्ट पहले। अगर वो पास कर जाते हैं तो उसके बाद भी उस कोर्स में वो जा सकते हैं।
1: अच्छा, अब एक बात ये आती है कि कॉमर्स में बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, तो खास तौर से जिन्हें मैनेजमेंट सेक्टर में जाना है या फिर बीबीए में, आपने कहा बहुत सारी चीज़ें, तो बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं चूज करने में, छात्र थोड़े से बहुत से इंटरमीडिएट में आर्ट्स लेके पढ़ते हैं, फिर ग्रेजुएशन में कॉमर्स चाहते हैं कि नहीं इस क्षेत्र में नहीं जाना, हमको कॉमर्स लेनी है, तो वो आर्ट्स से कॉमर्स में आते हैं या फिर 12 में ही डायरेक्ट 11th में ही वो कॉमर्स में आते हैं, तो बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें उपयोगी हैं ये व्यावसायिक शिक्षा के लिए, उसके बारे में थोड़ा वो सब्जेक्ट के बारे में बताएं।
0: ऐसा है कि जब कॉमर्स में वो आएंगे, अगर आर्ट्स बैकग्राउंड से वो कॉमर्स में आते हैं
1: ऐसे छात्रों के लिए,
0: तब भी वहाँ पर कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ कोर्स इस तरह से बनाया गया है कि अगर बच्चे पहली बार कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो सेमेस्टर 1 में उनको एक तरह से बेसिक्स एजुकेशन ही दिया जाता है कॉमर्स का। फिर से बच्चे अगर वो इंटर कॉमर्स से भी आए हैं तो उनके लिए प्लस है, बेनिफिट है कि वो पहले से पढ़े हैं, लेकिन जो बच्चे आर्ट्स से आ रहे हैं या साइंस से कन्वर्ट करके कॉमर्स में आ रहे हैं उनके लिए बेनिफिट ये है कि सेमेस्टर वन उनका

0: है जो कि बच्चों को काफी हेल्प करता है किसी भी सेक्टर्स में। अगर वो एमबीए में मार्केटिंग चूज करते हैं, फाइनेंस चूज करते हैं, तो वहां पर उनको सारे सब्जेक्ट सपोर्ट करेंगे कॉमर्स के, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भल आगे चल के कर सकते हैं। लेकिन उनमें बेसिक्स का जहां तक आइडिया होगा वो उनके दिमाग में रहेगा कि कितने बेसिक्स थे, वो कुछ ना कुछ लेकर चले। जैसे टैक्सेशन है हमारे यहाँ, एक डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, जो आज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नाम से जाना जा रहा है, वो सारे टॉपिक्स अभी हम लोग के सिलेबस में कवर्ड है। तो वो कहीं भी वोकेशनल स्टडीज में जाएंगे तो ये सारे चीज का नॉलेज तो उनको सुपरफिशियल लेवल पर तो निश्चित तौर पर है। अब रहा बात कि थोड़े डेप्थ स्टडीज में उनको पढ़ना होगा आगे, तो ये हेल्प तो निश्चित तौर पर करेंगे क्योंकि बेसिक्स उनके दिमाग में रहता है।
1: अच्छा ये बताइए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए क्या क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होती है? ग्रेजुएशन के बाद ही?
0: आफ्टर ग्रेजुएशन कोई भी से स्ट्रीम के बच्चे जा सकते हैं, और अगर इंटरमीडिएट के बाद जाना है तो उनको फाउंडेशन क्लियर करना पड़ेगा, इंट्रेंस टेस्ट पास करना पड़ेगा, और उसमें कुछ है नहीं, वो चार सब्जेक्ट होता है इंट्रेंस के लिए, अकाउंटेंसी, बिजनेस लॉ, इकोनॉमिक्स और मैथ्स का, वो उनको क्लियर करना पड़ेगा। और अगर वो क्लियर कर लेते हैं तो वो आफ्टर इंटरमीडिएट भी जा सकते हैं, और अगर इंटरमीडिएट के बाद वो नहीं कर पाए किसी भी कारण से तो आफ्टर ग्रेजुएशन जा सकते हैं, उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं। 50% मार्क्स होना चाहिए उनका ग्रेजुएशन में, एडमिशन डायरेक्टली उनको इंटर लेवल पर मिल जाएगा।
1: ये कितने वर्ष का कोर्स है?
0: ये 2-3 साल का कोर्स होता है, इंटरमीडिएट लेवल और ग्रेजुएशन लेवल मिलाकर
1: दोनों में 3-3 वर्ष का?
0: हाँ नहीं, दोनों टोटल 3 वर्ष का ये कोर्स है।
1: ठीक है,
0: और उसके बाद फिर कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो लगभग 8-9 महीने चलता है।
1: अब एक अंतिम सवाल है कि छात्र जैसे अब उन्होंने बेस अपना बना लिया, हमें इस क्षेत्र में जाना है, कॉमर्स के ही क्षेत्र, व्यावसायिक शिक्षा लेनी है और हमें बिजनेसमैन बनना है या फिर मैनेजमेंट सेक्टर में जाना है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ऑफर करती हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी करनी है, कुछ भी है, तो उसमें कोचिंग संस्थानों का क्या योगदान रहता है? क्या महत्व, क्या कोचिंग संस्थान एक बेस प्रदान करते हैं या फिर बच्चा अपने पढ़ के भी निकाल सकता है?
0: नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ठीक है, कोचिंग संस्थान वैसे बच्चों के लिए जरूरी है जिनका बैकग्राउंड पहले से ना रहा हो, घर पे बहुत आइडिया उनको नहीं मिल पा रहा हो, तो निश्चित तौर पर कोचिंग संस्थान उनको वहाँ हेल्प करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिना कोचिंग का हम नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, बच्चे हैं जो बिना कोचिंग्स के भी आज अच्छे अच्छे मुकाम पर पहुंचे हुए हैं, चाहे वो सीए हो, सीएसओ, आईसीडब्ल्यू हो, सीएमए हो, जिस तरह का भी कोर्स हो, सब में वो सेल्फ स्टडी से भी जा सकते हैं। लेकिन जब जानकारी का अभाव हो तो निश्चित तौर पर कोचिंग संस्थानों से हेल्प लेकर वो आगे जा सकते हैं।
1: व्यावसायिक शिक्षा में वाणिज्य विषय का क्या योगदान है? इस विषय में हमने अच्छी बातचीत की है अनंत सर। अब चलते चलते हमारे वैसे छात्र जो इसमें आना चाहते हैं कॉमर्स के सेक्टर में या फिर बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, जितने तरह के आपने बताए, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: बस यही संदेश है कि अगर उनका एम है कि हमको बिजनेसमैन बनना है या अच्छा कॉरपोरेट सेक्टर्स में जाना है, मैनेजमेंट के सेक्टर में अच्छा करना है, तो आप आइए, निश्चित तौर पर आइए, और एक पॉजिटिव सोच के साथ आइए कि पढ़ाई को हम एक ऐसे वे में लें कि जिससे हम थ्योरेटिकल बेस के साथ साथ प्रैक्टिकली भी उसको समझें और करने का प्रयास करें, इनोवेटिव माइंड्स को डेवलप करने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित तौर पर कॉमर्स के सेक्टर में वो बहुत अच्छा कर सकते हैं।
1: धन्यवाद सर आपका।
0: धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, ये थे अनंत कुमार सिन्हा जी, केवी ओमेन्स कॉलेज के वाणिज्य विषय के सर साहब, जिनके सौजन्य से आज के इस कार्यक्रम में हमने चर्चा की कि व्यावसायिक शिक्षा का काफी दौर चल रहा है और बहुत से लोग इसी क्षेत्र में आना चाह रहे हैं, तो वाणिज्य विषय का क्या योगदान है, क्या भविष्य है? बहुत बढ़िया भविष्य और एक अच्छी चर्चा हम लोगों की है। उम्मीद है आप इसे सुनकर अवश्य लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साहब।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रोफेसर अनंत कुमार सिन्हा से ली गई भेंटवार्ता का पुनः प्रसारण, जो हमें जानकारी दे रहे थे वैश्विक शिक्षा में वाणिज्य विषय की भूमिका के बारे में। इनसे बातचीत कर रहे थे अशोक कुमार।
3: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से? वाह,
4: अनजान ऐप से बचें।
5: आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर।

0: हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: आइए अब सुनते हैं एक गाना, फिल्म का नाम है नया दौर, आवाज मोहम्मद रफी की है।

आइए आज हम संकल्प लें कि हम अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे, देश की एकता और अखंडता को मजबूत करेंगे और अपने देश को ज्ञान, ईमानदारी, परिश्रम और मानवता के मार्ग पर आगे ले जाएंगे। और कार्यक्रम युववाणी से अपनी दोस्त माधवी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी आकाशवाणी का। यह हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म अब्दुल्ला से, गायक कलाकार मोहम्मद रफी।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट

0: इस एक साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.1 MHz पर। प्रादेशिक समाचार एवं जिले में आजकल के लिए हमारा अगला प्रसारण हमारे राज्य केंद्र से।
1: भाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रावणी मेले का पावन त्योहार, हर दिल में गूंजे बम बम की पुकार, हर हर महादेव जय भोलेनाथ।
1: श्रावण मास के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का संदेश।
3: जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड के इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर, दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। धन्यवाद, जोहार, जय भोले।
1: श्रावणी मेला में लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर बाबा वैद्यनाथ धाम देवघर तक की यात्रा करते हैं। आस्था, सेवा और अध्यात्म का ये अनोखा संगम आपको भी दे रहा है निमंत्रण। इस सावन आइए झारखंड और

0: वन्य श्रावणी मेला का हिस्सा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारी दुनिया, प्रस्तुति थी प्रभु शरण की। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मैं रामकर मंडल, ग्राम पंचायत तारावत, ब्लॉक मोहनपुर, जिला देवघर, झारखंड का निवासी हूं। मैं पिछले 3 सीजन से अपनी फसलों का बीमा करा रहा हूं। इस योजना से जुड़कर
2: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
3: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
4: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
3: और लाइट बिल के
4: अब 0 रुपए कैसे दूं?
3: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
4: पक्का।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
6: हर घर सूर्य घर।
7: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। जेपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के मामले में आज विधानसभा का मॉनसून सत्र रहा हंगामेदार। मुख्यमंत्री ने कहा, टीडीपीएल द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं की होगी जांच। जेपीएससी और जेएसएससी समेत कई परीक्षाओं में अनियमितता का विरोध कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज के मामले में भाजपा द्वारा बुलाए गए झारखंड बंद का रहा मिलाजुला असर। विधानसभा परिसर

0: आयोजित वन महोत्सव में मुख्यमंत्री ने किया पौधारोपण। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, पौधारोपण के लिए लोगों को जागरूक करना है जरूरी। पूर्व मध्य रेलवे के बरकाकाना सोनगर रेलखंड पर मालगाड़ी के 11 डिब्बे बेपटरी, परिचालन घंटों प्रभावित। और पुणे में आयोजित 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप 2026 के लिए 18 सदस्यीय झारखंड टीम की घोषणा। 12 से 23 अगस्त तक टूर्नामेंट में हिस्सा लेगी टीम। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का चौथा दिन आज छात्र आंदोलन के मुद्दे पर हंगामेदार रहा। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में हुई गड़बड़ी का विरोध कर रहे छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का मुद्दा उठाते हुए नारेबाजी की। स्थिति को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष को कई बार सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। सदन में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार टीडीपीएल द्वारा कराई गई सभी परीक्षाओं की जाँच कराने के लिए तैयार है।
1: 11-13 जेपीएससी और एबीपी ये सभी परीक्षाएं बीपी मेन हो चुके हैं। कानूनी परीक्षा के तहत और टीडीपीएल के द्वारा जो भी परीक्षाएं हुई है उन सभी का जांच हम कराने के लिए तैयार है और जांच चल भी रही है।
2: अध्यक्ष महोदय, जिनकी परीक्षाओं को हम रद्द करने का निर्णय लेने की सरकार ने छात्रों को आश्वस्त किया है।
0: सत्र के दौरान सभी विधायी कार्यों को पूरा करने के बाद सीएजी की रिपोर्ट पेश की गई। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा की। जेपीएससी और जेएसएससी समेत कई परीक्षाओं में हुई कथित धांधली के विरोध में पिछले 18 दिनों से रांची में आंदोलन कर रहे छात्रों से आज भाजपा नेता दीपक प्रकाश मिलने धरना स्थल पर पहुंचे। वहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने राज्य सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया और सीबीआई जांच की मांग दोहराई।
3: जेपीएससी का जेएसएससी का जो परीक्षाएं हुई है केवल 14 नहीं 11-12-13 सब में बेचा गया है। खरीदार यहाँ के नहीं, झारखंड से बाहर के लोग ही है, इसीलिए सीबीआई की जांच मांग कर रहे हैं। सीआईडी पर किसी को भरोसा नहीं है। राज्य बने हुए इतने लंबे समय के बाद 8 ही परीक्षाएं हुई जेपीएससी का, उसमें विवाद हुआ है, इसलिए इन बच्चों को न्याय मिलना चाहिए।
0: झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और विद्यार्थियों की मांगों के समर्थन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी ने आज विधानसभा के घेराव का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस की ओर से लाठीचार्ज किए जाने के बाद 200 से अधिक कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर खेलगांव स्थित कैंप जेल में रखा गया। छात्रों के आंदोलन के मामले में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने रांची में आयोजित प्रेस वार्ता में राज्य सरकार पर निशाना साधा।
4: सड़कों को उतरे, आम जनता ने भरपूर सहयोग किया और विशेष करके जो हमारे मीडिया के मित्र हैं मंदी को दिखाने में चैनलों के माध्यम से चौकस निगाहें रखे हुए थे।
0: जेएसएससी द्वारा वर्ष 2022 में आयोजित कन्या अभियंता डिप्लोमा परीक्षा के पेपर लीक मामले में एसआईटी ने परीक्षा संचालन एजेंसी विंसीस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के संचालक सहनिदेशक अरुण कुमार को मुंबई से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस मामले में पहले से 4 अभ्यर्थी सिंडिकेट सदस्य और एजेंसी के सीनियर मैनेजर कृष्ण कुमार न्यायिक हिरासत में हैं, जबकि अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से स्वतंत्रता दिवस को गर्व सम्मान और धूमधाम से मनाने का आह्वान किया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए श्री मोदी ने सभी नागरिकों से एकजुट होकर देश के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का आग्रह किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने सभी से हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत अपने घरों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड विधानसभा परिसर में वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा आयोजित वन महोत्सव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो शामिल हुए। विधानसभा अध्यक्ष ने इस मौके पर कहा कि लोगों को पौधा लगाने के लिए जागरूक करना जरूरी है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पौधारोपण करते हुए कहा कि विधानसभा परिसर के अलावे सभी विधायकों को अपने आवास में भी एक एक पौधा लगाने के लिए दिए जाएंगे।
5: वन महोत्सव और पर्यावरण के लिए ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता और पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए अत्यंत आवश्यक। हर जगह हमें पर्यावरण संरक्षण पर काम करने की आवश्यकता है। मैं वन विभाग और पर्यावरण जो भी विभाग है हमारे, इन सभी से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आप लोग सिर्फ वृक्ष मत लगवाइए बल्कि पानी को भी धरती के अंदर जाने का कार्य योजना तैयार करें।
0: पलामू के सांसद विष्णुदयाल राम ने आज लोकसभा में चियां की हवाई अड्डे के विकास और वहां से जल्द नियमित वाणिज्यिक उड़ान सेवा शुरू करने का मुद्दा उठाया और केंद्र से लंबित कार्यों को मिशन मोड में पूरा करने की मांग की। उन्होंने कहा कि चियांकी से उड़ान शुरू होने पर पर्यटन, स्वास्थ्य, उद्योग और आपदा प्रबंधन को बड़ा लाभ मिलेगा। झारखंड के प्रधान महालेखाकार कार्यालय द्वारा समय समय पर ऑडिट रिपोर्टों, राज्य की वित्तीय स्थिति और हालिया मामलों पर रिपोर्ट जारी की जाती है। इस कड़ी में आज झारखंड की प्रधान महालेखाकार लेखा परीक्षा इंदु अग्रवाल ने राज्य के अलग अलग 6 जिलों के परिवहन विभाग, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, मनरेगा समेत कई विभागों से जुड़े सैंपल रिपोर्ट के बारे में जानकारी दी।
6: जल जीवन मिशन जो है ये 2019 में लॉन्च हुआ था और इसका उद्देश्य था कि जो ग्रामीण हाउसहोल्ड्स हैं उनको पर्याप्त मात्रा में और क्लीन वाटर जो है वो उपलब्ध कराना था 2024 तक। और इसमें एक टर्म यूज होती है FHTC, फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन। तो झारखंड में जो स्थिति थी वो ये थी कि जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी तब करीब 3.5 लाख हाउसहोल्ड जो है वो ऑलरेडी कवर्ड थे।
0: पूर्व मध्य रेलवे के बरकाकाना सोननगर रेलखंड पर गढ़वा रोड और सिगसिगी रेलवे स्टेशन के बीच रिवर्सिबल लाइन पर आज करीब दिन के 11 बजे कोयले से भरे एक मालगाड़ी के 11 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस घटना से डाउनलाइन पर परिचालन ठप हो गया है। हालांकि इस दुर्घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। रेलवे प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। और अब मौसम का हाल। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने रांची समेत रामगढ़, खूंटी, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गढ़वा, पलामू, गिरिडीह, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा जिलों के कुछ भागों में अगले 1 से 3 घंटे में मध्यम दर्जे की मेघगर्जन, वज्रपात तथा वर्षा होने की संभावना जताई है। राजधानी रांची और आसपास के क्षेत्रों में शाम को वर्षा भी हुई। आपदा प्रबंधन विभाग ने इस मौसम को देखते हुए लोगों से सतर्क और सावधान रहने की अपील की है। 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप 2026 के लिए 18 सदस्यीय झारखंड टीम की घोषणा कर दी गई है जो 12 से 23 अगस्त तक पुणे में होने वाले टूर्नामेंट में हिस्सा लेगी। टीम का चयन 1 अगस्त से चले विशेष प्रशिक्षण शिविर और खुली ट्रायल में चुने गए 30 खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर किया गया जिसमें गंगी बरला और सोनाली तिर्की गोलकीपर जबकि स्वीटी डुंगडुंग, सरोज मुंडरी और लियोनी हेमरोम फॉरवर्ड में शामिल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जेपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के मामले में आज विधानसभा का मॉनसून सत्र रहा हंगामेदार। मुख्यमंत्री ने कहा TDPL द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं की होगी जांच। जेपीएससी और जेएसएससी समेत कई परीक्षाओं में अनियमितता का विरोध कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज के मामले में भाजपा द्वारा बुलाए गए झारखंड बंद का रहा मिला जुला असर। विधानसभा परिसर में आयोजित वन महोत्सव में मुख्यमंत्री ने किया पौधारोपण। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा पौधारोपण के लिए लोगों को जागरूक करना है जरूरी। पूर्व मध्य रेलवे के बरकाकाना सोननगर रेलखंड पर मालगाड़ी के 11 डब्बे बेपटरी, परिचालन घंटों प्रभावित। और पुणे में आयोजित 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप 2026 के लिए 18 सदस्यीय झारखंड टीम की घोषणा। 12 से 23 अगस्त तक टूर्नामेंट में हिस्सा लेगी टीमें। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का

0: इस अंक में आप सुनेंगे कोडरमा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे कोडरमा संवाददाता।
1: कोडरमा जिले के तमाम कॉलेजों को हजारीबाग के विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से हटाकर गिरिडीह के सर जेसी बोस यूनिवर्सिटी से संबद्धता कराए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ जहां इस मामले को लेकर विभिन्न छात्र संगठन आंदोलन कर रहे हैं और सरकार से इस फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से छात्र हित में संवेदना बरतने की अपील की है।
2: कोडरमा जिला के जो भी उच्च शैक्षणिक संस्थान उसको गिरिडीह से जोड़ा गया है तो उसको लेकर भी बच्चे आंदोलनरत है और वहाँ पर भी यूनिवर्सिटी बनेगी तो स्वाभाविक है कि वहाँ लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन कोडरमा हजारीबाग में था, आप हजारीबाग में रखें, यहाँ के बच्चों के हित के लिए जो हमारी बेटियां हैं वो हजारीबाग जाके यूनिवर्सिटी से अपना क्लास करके वो आती थी और उनकी उच्च शिक्षा वो प्राप्त करती थी। कहीं ना कहीं अगर ये गिरिडीह में होता है तो ये सारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। तो इसका मतलब मुख्यमंत्री जी, क्या आप चाहते हैं कि कोडरमा में बच्चियां नहीं पढ़े, कोडरमा की बच्चियों को सारी सुविधाएं ना मिले, उच्च शिक्षा वो ग्रहण ना करे? इसलिए
1: वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने के मद्देनजर कैच द रेन अभियान चलाया जा रहा है। झुमरी तिलैया नगर परिषद क्षेत्र में गिरते भूजल स्तर को बढ़ावा देने के लिए अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसके अलावे वर्षा जल संचयन को लेकर वाटर हार्वेस्टिंग अपनाने वाले शहरी नागरिक को होल्डिंग टैक्स में छूट देने का भी प्रावधान है। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अंकित गुप्ता ने बताया कि
3: एरियाज में जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो घटते जा रहा है क्योंकि मैक्सिमम लोगों की निर्भरता जो है अर्बन एरियाज में ग्राउंड वाटर लेवल पे है। तो हमारा उद्देश्य कैच द रेन के अंतर्गत है कि वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स को क्रिएट करना, लोगों को उसके लिए जागरूक करना और जो बरसात के मौसम में जो हमारा पानी बह के वेस्ट हो जाता है उसको हम लोग सुरक्षित रूप से हार्वेस्ट कर सके, जिससे कि हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन या जो नेक्स्ट ईयर है जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो स्थायी रूप से बना रहा है।
1: परंपरागत खेती के साथ फूलों की खेती अपनाकर कोडरमा और आसपास के किसान समृद्ध हो रहे हैं। डोमचांच प्रखंड के कई किसानों ने परंपरागत खेती छोड़ अब फूलों की खेती शुरू कर दी है, जिससे उन्हें बेहतर आमदनी हो रही है। फूलों की खेती के लिए कृषि विभाग के अलावा उद्यान विभाग की ओर से भी प्रगतिशील किसानों को मदद मुहैया कराया जा रहा है। फूलों की खेती करने वाले डोमचांच के किसान सुमन लाल मेहता ने बताया कि
4: ख्याल है कि पारंपरिक खेती तो सब लोग कर रहे हैं, इसमें तो नुकसान बहुत ज्यादा, कभी फायदा कभी नुकसान हो जा रहा है। चले इससे हटकर हम दूसरा कुछ करते हैं तो हमने मन में ख्याल है कि चलो फूल की यदि देखें हैं तो फूल की खेती कर लेते हैं, अच्छा है, देखते हैं उसमें क्या होता है। तो उसी में से हमने उनसे संपर्क किए तो वही फिर फॉर्म भर के दिए और वही हमको उद्यान विभाग से ही सारा चीज हुआ है। ये फूल का नस्ल यदि जरबेरा फूल है, ये बुके बनाने में काम आता है, डिमांड इसका बहुत बढ़िया है, जो अपना जो उपज जाए बिक जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
1: आमतौर पर शादी ब्याह और अन्य कार्यक्रमों के लिए फूल पहले कोडरमा में बंगाल से मंगाए जाते थे, लेकिन अब डोमचांच में उत्पादित फूल भी स्थानीय बाजारों में उपलब्ध है। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा।
0: अभी आप सुन रहे थे कोडरमा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्य।

0: प्रस्तुत है झारखंड विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं रिपोर्टर पोस्ट के संपादक ज्ञान रंजन कुमार। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र की कार्यवाही एक दिन पहले मंगलवार को ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। तय कार्यक्रम के अनुसार 12 अगस्त तक मॉनसून सत्र प्रस्तावित था। हालांकि आज सरकार ने अपने सभी विधायी कार्यों को निपटा लिया, साथ ही सीएजी की रिपोर्ट पेश कर दी गई। इसके अलावा राज्य के सबसे ज्वलंत मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने भी सरकार का पक्ष रखा। जेपीएससी जेएसएससी से जुड़े छात्रों के ज्वलंत मुद्दे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज सदन में सरकार की मंशा स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि सरकार 14वीं जेपीएससी पीटी बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने को तैयार है। टीडीपीएल द्वारा ली गई परीक्षाओं की जांच भी कराने को तैयार है। परीक्षा में सुधार के लिए सरकार आईआईटी आईआईएम जैसे संस्थानों की मदद लेगी। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा पूरे राज्य को पता है। विपक्ष द्वारा छात्रों का चोला पहनकर आंदोलन को दिग्भ्रमित किया जा रहा है और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के पूरे भाषण के दौरान विपक्ष जबरदस्त हंगामा करता रहा। उन्होंने छात्रों के विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस और छात्रों के संयम की सराहना की। कहा कि विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद जैसी संस्थाओं के पास सालों भर धारा 144 लागू रहती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आने वाले समय में बड़े संस्थानों से सलाह लेकर परीक्षाएं आयोजित कराएगी। उन्होंने कहा कि आईआईटी आईआईएम जैसे संस्थानों से सलाह लेकर परीक्षा प्रणाली को बेहतर बनाया जाएगा। सीएम ने यह भी कहा कि जिन परीक्षाओं को लेकर जांच की जरूरत है उनकी जांच कराने के लिए सरकार तैयार है। उन्होंने विपक्ष पर जांच एजेंसियों के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की मंशा स्पष्ट है और छात्रों के हित में काम किया जा रहा है। इससे पहले मंगलवार को झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के चौथे दिन सदन की कार्यवाही शुरू होते ही दिन के 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही प्रारंभ होते ही कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने भाजपा पर छात्रों को उकसाने का आरोप लगाया। भाजपा विधायक भी हंगामा करने लगे। जेपीएससी जेएसएससी प्रतियोगी परीक्षाओं की सीबीआई जांच की मांग भी दोहराने लगे। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक वेल में आकर हंगामा करने लगे, जिसके बाद स्पीकर ने दोबारा सदन चलने का आग्रह विपक्ष से किया, लेकिन दोनों ही पक्ष के विधायक नहीं माने। इसके बाद स्पीकर ने सदन की कार्यवाही को दिन के 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही दोबारा 2 बजे शुरू हुई। कार्यवाही शुरू होते ही प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी जेपीएससी और जेएसएससी तथा छात्रों की मांगों पर बोलने के लिए खड़े हुए। उन्होंने अपनी बात रखनी शुरू की कि सत्ता पक्ष के विधायक वेल में आ गए, हंगामा करने लगे। हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री ने सीएजी की तीनों रिपोर्टों को सदन में पेश किया। रिपोर्ट पेश होते ही सदन में अव्यवस्था को देखते हुए स्पीकर ने कार्यवाही दिन के 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी और एक बार फिर दोबारा सदन की कार्यवाही शुरू होते ही पक्ष विपक्ष के हंगामे के कारण स्पीकर रविन्द्रनाथ महतो ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा की। अभी आप सुन रहे थे झारखंड विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक थे रिपोर्टर पोस्ट के।
1: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। पेश है कार्यक्रम छनकार। जब जब फूल खिले, सुनते हैं इस फिल्म का गाना मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में।

अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और किशोर कुमार को फिल्म आनंद आश्रम में। इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। पेश है प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी, जिसके प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: किसान कर उन्नति, देश कर प्रगति।
1: किसान वाणी कार्यक्रम सुनो या सब किसान भाई बहन मन के कृष्ण जीवन पौराणिक संगे
0: विष्णु कर
1: जोहार। और ई कार्यक्रम का प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: तो कहो विष्णु भाई का हालचाल है?
4: एकदम नगदे है, रावरे कर बताओ कैसे ना है।
3: नगदे है हालचाल तो देखो खेती बाड़ी कर तो समय है, खेती बाड़ी तो किसान भाई बहन मने करते है, लेकिन कभी कभी जैसे उचित खाद बीज ये सब कर प्रयोग नहीं करल से खेती बाड़ी भी बेस से नहीं हो पारे।
4: एकदम रावरे बेस कहली। पिछले साल खेती बाड़ी जे धान लगा रहे हैं किसान मन यूरिया के बगरा मार दे रहे हैं से, हाँ। से धान मन पोड़ जा रहे से ले हमरे के जैविक खेती बटे और जैविक खाद कर प्रयोग करे चाहिए।
3: हाँ आ देखो पुराना समय में भी हमरे कर पुरखा मने जैविके खाद कर

0: प्रयोग करत रहे।
1: एकदम
0: रासायनिक खाद तो अहिने आलत है नी। और देखो पहले जो है से वह गोबर खाद रहे जेके के गाढ़ा बनाए के और घर में जितना गरु काड़ा रहें जितना मवेशी मन रहत रहें जितना घर कर कूड़ा करकट और गच्छ मन कर पतई मन जो निकलत रहे इस सब के गो गाढ़ा में लगाए देवत रहें और कितना बढ़िया वो माइद बन जात है।
1: एकदम सही बात कह ली। और ये जैविक खाद रहे वो एकदम सेहत ले बहुत बढ़िया होत रहे और माटी मन के एकदम नुकसान नहीं पहुंचात रहे और माटी मन कर उपजाऊ के और बढ़ाए देवत रहे।
0: कितना बढ़िया तियन मन भी कितना स्वाद लगत रहे है न। और एखन जैसे सल्फेट यूरिया ये सब देवल कर तियन मन भी एकदम स्वाद नहीं लगेला
1: एकदम
0: है न।
1: आज कल कर जो भात होला वो बिहान कर पकाल और सांझ होते होते तो वो एकदम बुरबुराए के बासी हो जाएला।
0: तो भाई देखो रासायनिक खाद कर प्रयोग करे के चाही तनी मनी काले कि ओकर से जैसे माटी कर उर्वरा शक्ति भी कम हो जाएला है न। और जैविक खाद कर प्रयोग बगरा करे के चाहिए
1: एकदम। और जैविक खाद प्रयोग करब तो हमारे मन कर सेहत भी बढ़िया रही और माटी कर उपजाऊ भी बढ़िया हुई और पर्यावरण भी साफ सुथरा रही।
0: तो चलो अब उतरे गोठिया थी और बताए देवे चाहिए हमरे कर किसान भाई बहन मन के कि आज ई कार्यक्रम में हमरे का जानकारी करूँ आपसे के। आज की बात में सबसे पहले हमरे जानकारी करब खरीफ कर मौसम में हरा चारा कर उन्नत खेती कैसे करल जाए सकर बारे में इकर जानकारी देवें डॉक्टर ताजवर इजहार। कृषि विकास गीत सुनब पंच परगनिया में सुकुमार और संगी मनकर गावल और नई उम्र की नई फसल में एगो किसान दिलेश्वर साहू से रावर इनके भेंट भी करवाओ।
1: तो चलो आज कर बात में सबसे पहले सुनीला खरीफ के मौसम में हरे चारे की उन्नत खेती और इके बतावे विशेषज्ञ डॉक्टर ताजवर इजहार और इनकर से गोठियाए हैं हमारे कर संगी कृष्णजीवन पौराणिक।
2: किसान साथियों नमस्कार। हरा चारा की खेती पशुपालन के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि यह पशुओं की आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है, दूध उत्पादन बढ़ाता है और पशुओं के स्वास्थ्य सुधार में काफी सहयोगी है। इसके अलावा हरे चारे की खेती से पशुपालन की लागत कम होती है और किसानों की आय में वृद्धि होती है। हरा चारा विटामिन प्रोटीन और अन्य आवश्यक पोषक तत्वों का एक उत्कृष्ट स्रोत है जो पशुओं के स्वास्थ्य और विकास के लिए महत्वपूर्ण है और पर्यावरण प्रदूषण को भी कम करने में मदद मिलती है। तो इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर ताजवर इजहार कनिया वैज्ञानिक पशु उत्पादन एवं प्रबंधन विभाग बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची। ताजवर मैडम आपको नमस्कार है।
3: नमस्कार।
2: आप हमारे श्रोताओं हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि हरा चारा की आवश्यकता क्यों है।
3: जोहार किसान भाई बहन, मैं आप लोगों को खरीफ के मौसम में हरा चारा की उन्नत खेती के बारे बताना चाहूंगी। हरा चारा की आवश्यकता क्यों है? पशुओं के बेहतर स्वास्थ्य हेतु संतुलित आहार में हरा चारा काफी उपयोगी है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन एवं लवण अच्छे मात्रा में पाए जाते हैं जो समुचित प्रयोग से दुधारू पशुओं का दूध उत्पादन क्षमता एवं गुणवत्ता के साथ साथ रोगों से लड़ने की क्षमता को भी बढ़ाता है। इसीलिए हरा चारा की उपयोगिता काफी खास है।
2: हमारे किसान भाइयों को सालों भर जो हरा चारा उत्पादन होता है उसके बारे में बताएं कि हरा चारा हमारे किसान भाई सालों भर कैसे उत्पादन कर सकते हैं।
3: जी, चारा को हम लोग दो रूप में बांट सकते हैं, वार्षिक चारा और बहुवार्षिक चारा। वार्षिक चारा जो हुआ जिसे वर्ष में हम लोग एक बार लगाते हैं मौसम अनुरूप, जैसे खरीफ हो गया, खरीफ का मौसम मतलब बरसात का मौसम, रबी का मौसम जो जाड़े का मौसम हो गया, और जैद का मौसम जिसे हमें गर्मी का मौसम बोलते हैं, तो इसे हमें वार्षिक चारा इसको हम बोलते हैं। और बहुवार्षिक चारा जो हो गया जो वर्ष में अगर एक बार हम लगा देते हैं, जैसे जो भी हमारी घासें हो गई, घासें में आपका शंकर नेपियर हो गया, गिनी घास हो गया, चारा जितनी घासें हो गई, ये अगर आप साल में एक बार लगा देते हैं तो कम से कम आपको 3 से 4 साल तक ये उत्तम चारा प्रदान कर सकती है। तो ऐसे चारा फसल जिसे मौसम के शुरुआत में हम लगाते हैं और 50% जब फूल आ जाता है, इनकी कटाई कर देते हैं, इन्हें हमें मौसम अनुरूप लगाते हैं, तो ये आपका वार्षिक चारा हो गया। और वर्ष में ये मौसम के अनुरूप कटाई इसकी होती रहती है। और बहुवार्षिक में जितनी घासें आपकी आ जाएंगी, ये सारी बहुवार्षिक घासें हो जाएंगी, जिसे आप एक बार अगर लगा देते हैं तो सालों भर आपको शंकर नेपियर घासें जो हैं, जिसकी हाथी घास भी बोलते हैं, अगर आप उसको एक बार लगा देते हैं तो कम से कम आपको ये 3 से 4 साल तक चारा प्रदान करेगी। 3 से 4 फीट की जब हो जाती है तो उसकी कटाई हम करते हैं, और जानवर के लिए काफी अच्छा चारा फसल है, जिसे आप एक बार लगा के सालों भर जानवर को खिला सकते हैं।
0: जी, खरीफ में लगाई जाने वाली चारा फसल कौन कौन सी?
3: जी, खरीफ में लगाई जाने वाली, जैसे अब हमारा खेत तैयार हो जाना चाहिए, वर्षा शुरू हो चुकी है, तो ऐसे चारा फसल जिसे मौसम की शुरुआत में लगाते हैं, 50% फूल आने पर काटते हैं, ये हमारे मौसम अनुरूप चारा फसल हो गए। मौसम के आधार पर खरीफ में लगाई जाने वाली चारा फसल हो गई आपकी मक्का हो गई, ज्वार हो गई, चारा बोदी हो गई, राजमूंग हो गई, जिसे हम इंग्लिश में राइस बीन भी बोलते हैं। मक्का, ज्वार, बाजरा, ये आप जान रहे होंगे इनके बारे। बोदी जो है, बोदी भी आप जानते होंगे। राजमूंग जो है, बिल्कुल देखने में काउपी के तरह, बोदी के तरह है, जो हमारे मिट्टी को उर्वरक शक्ति काफी प्रदान करता है और इसमें प्रोटीन काफी होता है, जानवर के लिए भी काफी लाभदायक है। तो चारा बोदी और चारा मूंग आप लगाएं और काफी अच्छा चारा फसल है ये दोनों।
0: हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि हरा चारा का दूध उत्पादन में क्या महत्व है?
3: जी, हरा चारा का महत्व जो है, ये विटामिन ए देता है, खनिज देता है, उसमें पानी की नमी की मात्रा काफी है। हरा चारा मुख्य रूप से जल एवं पोषक तत्वों से युक्त होते हैं, इसीलिए, और इसमें सूक्ष्म पदार्थ की कमी होती है, जो जानवर को अगर आप हरा चारा खिलाते हैं तो दूध उत्पादन क्षमता है काफी बढ़ेगी और हमारे जानवर स्वस्थ रहेंगे। मैं आप लोगों को खरीफ के मौसम में जो लगाए जाने वाले चारा फसल हैं, मक्का और ज्वार, इसके बारे कुछ बताना चाहूंगी। देश भर में मक्का जो है स्वादिष्ट एवं पोषक चारा प्रदान करता है, जो पशुओं के लिए विकास की दृष्टि से काफी लाभदायक है। औसत की दृष्टि से अगर हम देखें तो 10% क्रूड प्रोटीन पाए जाते हैं इसमें और 7% के लगभग इसमें NDF पाया जाता है। खरीफ में इसका बुआई का समय शुरू हम लोग कर देते हैं 25 जून से 10 जुलाई के लगभग। इसकी उन्नत प्रजातियां जो हैं, अफ्रीकन टॉल है, J1006 है, जो काफी अच्छा करती है और काफी अच्छा चारा प्रदान कर सकती है। इसका जो है 50 से 60 kg प्रति हेक्टर हमें जो बीज दर है, जिसको हम लोग सीड रेट बोलते हैं, वो हम लोग लेते हैं। और इसकी बीज की जो दूरी है, जो हम लोग लगाते हैं 30 सेंटीमीटर की पंक्तियों से पंक्तियों की दूरी में लगाते हैं। NPK जो हो गया आपका, यूरिया, पोटैश, DAP का जो डोज हो गया, मात्रा हो गया, ये आपका 100, 60 और 40 NPK हम लोग डालते हैं। नाइट्रोजन की आधी मात्रा जो है हम लोग बुआई के समय डालते हैं और आधी मात्रा हमें डालते हैं जब हमारा पौधा घुटना की हाइट तक हो जाता है, उससे हम छिड़काव करते हैं। कटाई करने के टाइम चारा जो मक्का जो है वो हमें कटाई करनी चाहिए जब इसमें सिल्क आ जाता है और दूध अवस्था जो है उस टाइम हम इसकी कटाई कर सकते हैं, ताकि इसमें जो गुणवत्ता जो है काफी अच्छी मिल सके हमें। हरा चारा के रूप में अगर आप कटाई कर रहे हैं तो इसमें कम से कम 300 से लेकर 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हरा चारा हमें मकई देता है। ज्वार के बारे अगर मैं बताना चाहूंगी तो ज्वार एक महत्वपूर्ण चारा फसल है और जो ये किसी भी प्रकार की मिट्टी में लगाई जा सकती है। सूखा सहन करने की शक्ति होती है ज्वार में, फैलेज के रूप में पशुओं को खिलाया जा सकता है और इसमें देखा जाए तो 9 से 10% आपका प्रोटीन है और 50% के लगभग NDF पाया जाता है। ज्वार को कैसे लगाना वो मैं आप लोग को कुछ विस्तार में बताना चाहूंगी। बुआई का समय जो है खरीफ में हम लोग शुरू कर देते हैं लगाना 25 जून से लेकर 10 जुलाई, जैसे मक्का हम लोग लगाते हैं, करीब करीब वक्त उसका टाइम वही होता है 25 जून से 10 जुलाई के लगभग। उन्नत प्रजातियां जो एक कटान वाली जो फसलें हैं ज्वार की, वो पूसा 4-1 हो गई, राज 4-1 हो गई, बहु कटान वाली जो फसलें हैं ज्वार की वो MP4 है। बीज दर इसका करीब हो जाता है 40 से 50 kg पर हेक्टेयर और इसकी जो दूरियां जो होती हैं 25 सेंटीमीटर सीड ड्रिल से इसका हम लोग लाइन खोलते हैं और उसमें बीज हम लोग छिड़काव करते हैं। और देखा जाए तो इसमें हम लोग अगर जमीन की उर्वरक शक्ति को अगर थोड़ा सा बढ़ाना हमें है तो 10 टन गोबर की प्रति हेक्टेयर हम लोग इसमें खाद डालते हैं, गोबर खाद डालते हैं। इसका जो यूरिया की मात्रा है 60 kg प्रति हेक्टेयर है और पोटैश की मात्रा है 40 और DAP की मात्रा भी 40 kg पर हेक्टेयर है। एक माह के बाद जो है 30 kg फिर हम लोग नाइट्रोजन का छिड़काव करते हैं। कम से कम इसकी उपज जो है वही आपकी 300 से लेकर 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर बहु कटान वाली किस्में देती हैं।
0: जी, अभी आपने बात की लोबिया और राजमूंग,
3: जी जी,
0: तो ये लोबिया और राजमूंग क्या है?
3: जी जी, मैं बताना चाहूंगी कि लोबिया और राजमूंग जो एक ऐसी फसलें हैं जो आसमान से नाइट्रोजन फिक्स करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है इसका, तो इससे क्या

0: होता है कि हमारी जो जमीन की उर्वरक शक्ति है वो काफी बढ़ जाती है। अगर मान लीजिए आपकी कोई खेत बंजर है और आपको शुरुआत करना है चारा फसल लगाने से, तो सबसे अच्छा तरीका है कि इसमें आप पहले लोबिया लगा दें। लोबिया लगाने से क्या होगा, जमीन की उर्वरक शक्ति काफी बढ़ जाएगी, उसके बाद दूसरा फसल आप लगाएं। लोबिया एक तेज बढ़ने वाली दलहनी चारा फसल है, अधिक पौष्टिक भी है और काफी अच्छे से ये जमीन में फैल जाती है। इसके चलते क्या होता है, इसमें जो भी खरपतवार नियंत्रण है बहुत ज्यादा इसको नहीं करना है, क्योंकि जमीन में फैलने वाली फसल है। इसको खरीफ के मौसम में हम लोग लगाते हैं, ऐसे देखा जाए तो हम लोग इसको गर्मी के मौसम में भी लगा सकते हैं। और इसमें प्रोटीन पाया जाता है, कम से कम 20-24% प्रोटीन है, 40% के लगभग इसमें NDF पाया जाता है। खरीफ के मौसम में अगर हम लोग लगाना शुरू करें तो ये जुलाई के मौसम में हम लोग लगाना शुरू कर देते हैं। बीज दर देखा जाए तो वही 40-45 kg प्रति हेक्टेयर बीज दर है। उन्नत किस्में हमारी बुंदेल लोबिया 2 जो है वो काफी अच्छा करती है
1: जी। तो किसान साथियों, आप हरा चारा की खेती करें और अपने पशुओं को स्वस्थ रखें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ताजवर इजहार जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे किसान भाइयों को हरा चारा की खेती के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: धन्यवाद।
2: हमरे मन एखन सुनत रही खरीफ कर मौसम में हरे चारे कर उन्नत खेती, और इके बतात रहे हैं विशेषज्ञ डॉक्टर ताजवर इजहार, और इनकर से हमरे कर संगी गोठिया रहे कृष्ण जीवन पौराणिक।
1: तो भाई अब जानकारी कर बादे गीत मन सुन लेले कैसन रही?
2: एकदम बेस रही।
1: तो आओ एगो कृषि विकास गीत सुना थी, यह पंच परगनिया में सुकुमार और संगी मनकर गावल।
2: तो चलो सुनी ला
3: भैया की।

0: तो एखन हमरे मन सुनत रही कृषि गीत में पंच परगनिया लोकगीत सुकुमार और संगी मनकर गावल गीत के।
1: तो भाई आओ आप एगो सफल किसान दिलेश्वर साहू से रन के भेंट भी करवा थी और इनकर से भेंट करत है अरविंद कुमार मिश्रा।
2: भाई बहिन मन जोहार। देखो रोज दिना हमरे मन नवा नवा किसान भाई मन से भेंट करते रहिला, उमन कर हाल समाचार के जानीला, खेती कर भी हाल समाचार के जानीला, उमन कैसे खेती बाड़ी करत हैं, उमन कर खेती कर तरीका कैसन है, खेती बाड़ी करके उमन कैसन गुलफुल है कि कोनो परेशानी उमन के है, सारा चीज उमन कर हमरे मन जाने कर कोशिश करीला, उमन कर अनुभव के भी जानीला। तो आज भी रोरे मन के एक बढ़िया अनुभव किसान से भेंट करवाई वाला ही, और ये किसान रेडियो से काफी लंबा समय से जुड़ल है और आकाशवाणी से कैद हम इनके पुरस्कृत भी करल जाए है। तो आज इनकर से हमरे मन भेंट करब, तो हम आपन से परिचय नहीं किसान भाई से परिचय हमरे मन लेब। तो सबसे पहले तो रोर हमरे मन कर कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, जोहार।
3: जोहार।
2: अपने का नाम बताई दो।
3: हमर नाम दिलेश्वर साहू भेलक और हम गाँव पिठोरिया रांची जिला कर रहे वाला।
2: बहुत बढ़िया दिलेश्वर जी, रोरे तो काफी लंबा समय से आकाशवाणी से जुड़ल ही।
3: हाँ 1980 से जुड़ल ही, एकदम शुरुआत मेरा में खेती किसानी कार्यक्रम जेकर में रेडियो से प्रसारित होत रहे, उके काफी चाव से हमरे सुनत रहे। और अगर सच कहल जाए तो हमर खेती में तरक्की कर बहुत बड़का योगदान आकाशवाणी कर भी रही है, जेकर में खेती बाड़ी कार्यक्रम कर बहुत बड़का भूमिका है। पहले से हम इकर में खेती बाड़ी कार्यक्रम में चिट्ठी पत्री कार्यक्रम होत रहे, ऊपर से ज्ञान कर दान प्रदान करत रहे, और हम कह सकेले कि बहुत बड़का भूमिका आकाशवाणी कर रही है इकर में, जैसे जानकारी हासिल करे, जानकारी अपन देवे की सब भूमिका तो रहे
2: एकदम।
3: और इकर में बहुत अच्छा रहत रहे रेडियो कृषि पाठशाला जो चलत रहे, सेकर से काफी महत्वपूर्ण और माने ज्ञान कर दान प्रदान होत रहे, और बहुत किसान भाई बन जाते भी हम इनकर संपर्क होत रहे
2: एकदम। बहुत बढ़िया रोर अनुभव के जाने कर हमरे मन के बहुत लालसा भी रहेला किसान भाई बहन मन कर। तो दिलेश्वर भाई एखन तो देखो भरकर खेती कर दिन है, जैम के एखन रोपा डोभा कर काम चलत है, बहुत किसान मन तो रोपा करियो चुईक है, तो रोर का स्थिति है कैसन रोर?
3: रोपा तो देखो अब करल कर हमर 12-15 दिन हो गेला और फसल बहुत बढ़िया है। इस साल पानी बरखा तरी धीरे है और यह कारण है कि रोपा एक बेर हड़बड़ा के नहीं होलक, धीरे धीरे हुआ थे, जैसे जैसे गढ़ा चौरा कर खेत कर अति है पानी लागते जाते और धान कर खेती लागत है। इस साल सब्जी कर लिए बहुत बढ़िया है, जैसे सब्जी के खास करके और हमारे झारखंड प्रदेश में और हमारे एरिया जो है वो धान से बगरा हम इन सब्जी के महत्व देवेला, और सालों भर सब्जी उपजावे के प्रयास रहे चूंकि वो नकदी फसल है।
2: हाँ हाँ हाँ।
3: और में आर्थिक मुनाफा तनी ज्यादा हो
2: एकदम
3: से हमरे तनी ज्यादा सब्जी बट ध्यान देवे।
2: बहुत बढ़िया दिलेश्वर भाई, देखो खेती बाड़ी तो खैर करके है और साल भर कर खेती है, धान कर फसल कर बात करूँ तो साल भर कर खेती है, आदमी करबे करेला, नफा नुकसान उकर में नहीं देखे ना आदमी मन। लेकिन जे रोरे अनुभवी किसान ही और एखन कर समय कर अनुसार रोरे खेती बाड़ी भी करत ही, पहला काम भी रोरे देख चुकी है, पहला जे हमरे मन प्राचीन तौर तरीका से खेती करते आवत रही, खन रोड़े खेती लगा ही धान कर, उकर में कुछ नया जे व्यावसायिक खेती का रूप देवे कर कोशिश कर रही, नवा तरीका से खेती कर रही।
3: हाँ हाँ ऐसा है अरविंद बाबू, हम जे खेती कर रही एकदम परंपरागत बेरा से, चूंकि हमारे बाप आजा जे खेती करत रहे वो है अलग, लेकिन जैसे हम खेती में जब आली तो खेती में काफी बदलाव करते चली गई, जैसे परंपरागत खेती से तरी तरी वैज्ञानिक खेती बटे कर झुकाव लान ली, और करते करते आज के समय में तो पूर्ण रूपेण हम वैज्ञानिक तौर तरीका से खेती करेला, और खास करके किसी मनकर बात है तो उन्नत से उन्नत किस्म के हम अपन खेती में प्रयोग करी ले, चाहे वो सब्जी कर हो या धान कर हो, माने हर एक चीज के उन्नत से उन्नत तकनीक के अपनावी ले। और हम अपन जहाँ तक अनुभव है तो हम तो बता थी कि हम एकदम पुराना तरीका के भी देख ली, और पुराना तरीका में जब वैज्ञानिक खेती मन के समावेश करत रही से बड़ा काफी अड़चन कर सामना करक पड़त रहे, चूंकि इन्हें से वैज्ञानिक मन से सीख के जात रही, और उन्हें घर बटे जब गेले बाप माए करकाना रहे, ई तरीका में तो हमरे कर खेती अति से संघर्ष करते हुए आऊ के घर परिवार में भी बताते गेली, अपन टोला समाज में भी बताते गेली कि अगर वैज्ञानिक तरीका के हम अपनाब तो उत्पादन के ज्यादा करे पारब और इस तरह से अपन जीवन के हम काफी खेती करके सक्सेस कर।
2: एकदम सही बात है और काफी सफल भी हो चुकी। तो एखन धान कर कौन तरीका से खेती कर?
3: धान कर जो तरीका है, धान में पहले जैसे जितना परंपरागत किसी मन रहे उस सब के तो बंद कर वाली, आप पहले जैसे बुना और छीटा विधि से होते रहे वो सब बंद करवा के अब रोपा विधि के अपना ली। रोपा विधि में भी उन्नत किस्म के जो हाइब्रिड धान मने है सेकर अति कर ली और बिचड़ा कर विधि है उकर में भी काफी बदलाव कर लिया। जैसे बिचड़ा पहले हमरे का करत रही कि सुखले धान के छीट देवत रही और उके कुछ चराई चुनगुनी बीज दिलाए, कुछ चिमटी पिपरी बीज दिलाए, इस तरह से बहुत नाश हो जाते रहे। तो आप का करी लगे धुरिये बीड़ा होना है लेकिन उके बढ़िया से बीज उपचारित करके अंकुरित करके और बढ़िया से सीड बेड बन के बना के उकर से क्या मिले कि पहले हमरे जब खेती करत रही तो एक एकड़ में 40 किलो 45 किलो धान कर बिहीन करत रही, आज कल अब मात्र 7 किलो से 8 किलो।
2: बाप रे, बहुत बदलाव आई गया।
3: हाँ, बहुत बदलाव।
2: 40 किलो कहाँ और 7 किलो कहाँ।
3: हाँ, 7 किलो हाइब्रिड कर धान कर बिहीन माने तकनीक में बदलाव
2: पहले श्री विधि भी एखन रोड साइड कर
3: श्री विधि है लेकिन हमरे कर खेत में श्री विधि कर थोड़ा सा अड़चन है चूंकि श्री विधि वैसे जगह में हो सकल जहाँ जब चाहो तब पानी लगा ले, जब चाहो तब पानी कम कर लो और श्री विधि करे में काफी बड़े अच्छा है और रोपा लाइन से करल से उकर में निकौनी कोड़नी सब कर ले उपज जाए काफी उकर में
2: फायदा अच्छा,
3: हो। हाँ, फायदा हो वेला। कहे के मतलब ही रहल अरविंद बाबू की अगर खेती किसानी करल जाए वैज्ञानिक तौर तरीका से, वैज्ञानिक बने और कृषि में काफी काम होलक है और काफी बदलाव होलक है, अगर उस विधि से बढ़िया से करल जाए तो खेती काफी मुनाफा कर चीज है और असीमित मुनाफा कर अखन प्रबल संभावना बन जाए। माने हम राउर के बता थी कि जितना बढ़िया फल सब्जी उत्पादन करके जितना अच्छा से कमा सके तो उतना कोनो दूसर धंधा पे अखन।
2: तो रोहे अपन इतना कीमती समय के दिली और उपयोगी जानकारी दिली, इकर ले बहुत बहुत धन्यवाद। लगे तब जोहार
3: जोहार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी,
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: तो सुनवैया भाई बहन मने, अब इकरे संगे किसान वाणी कार्यक्रम के बेरा सिरालक। ई कार्यक्रम के प्रायोजक रहे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार कर,
7: और कार्यक्रम कर प्रस्तुति रहे आकाशवाणी रांची कर।
6: अब रावण कर संगे कृष्ण जीवन पौराणिक संगे
7: विष्णु के देवीदा जोहार।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी, जिसके प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। संसद समीक्षा के लिए हमारा अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से, कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।

ये आकाशवाणी है। अब आप जया भारती से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा, लेखिका है पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। संसद ने आज विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों के चयन के लिए आयोग गठित करने के प्रावधान वाले विधेयक को मंजूरी दे दी। राज्यसभा ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 पर हुई चर्चा का विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा जवाब दिए जाने के बाद विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इससे पहले सदन ने विपक्ष द्वारा पेश संशोधनों को ध्वनिमत से खारिज कर दिया। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। चर्चा के दौरान कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने अयोध्या के राम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी पर चर्चा और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट किया। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए श्री मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में चल रही सुधार एक्सप्रेस का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक न्यायाधिकरणों के अधिकार क्षेत्र को बदलने का नहीं है, बल्कि इसका प्रमुख उद्देश्य विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति के लिए दक्षता बढ़ाने के साथ स्वतंत्रता, पारदर्शिता और पात्रता संबंधी मानदंडों में एकरूपता सुनिश्चित करना है। विधेयक पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए सदस्यों ने कहा कि देश में न्यायाधिकरण व्यवस्था को मजबूत करने से अदालतों में लंबित बोझ को कम करने में मदद मिलेगी। कुछ सदस्यों ने कहा कि राष्ट्रीय आयोग के गठन से न्यायाधिकरणों के गठन में पारदर्शिता बढ़ेगी। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा कि उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के न्यायाधीशों की बहुत कम नियुक्ति की जा रही है। इस पर चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम करता है। इस मामले में केंद्र सरकार की भूमिका केवल कॉलेजियम की सिफारिशों को मंजूरी देना भर ही है। उन्होंने कहा कि वह देश के पहले ऐसे आदिवासी हैं जो कानून मंत्री बने तथा डॉक्टर बीआर अम्बेडकर के बाद कानून मंत्री बनने वाले दूसरे बौद्ध हैं। श्री मेघवाल ने कहा कि इस विधेयक में राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग के गठन का भी प्रावधान किया गया है। प्रस्तावित आयोग का मुख्यालय राष्ट्रीय राजधानी में होगा और इसमें एक अध्यक्ष तथा चार सदस्य होंगे। इनमें दो न्यायिक और दो तकनीकी सदस्य होंगे। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश इस प्रस्तावित आयोग के अध्यक्ष पद के लिए पात्र होंगे। विधेयक के मसौदे के अनुसार उच्चतम न्यायालय ने हाल में न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम 2021 के कुछ प्रावधानों को इस आधार पर निरस्त कर दिया था कि वे शक्तियों के पृथककरण और न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांतों के विपरीत हैं। उच्चतम न्यायालय ने एक ऐसे राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग के गठन का भी निर्देश दिया था जो स्वतंत्र हो, जिसमें पेशेवर विशेषज्ञता हो तथा विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों के चयन तथा नियुक्ति के लिए पारदर्शी प्रक्रिया और निगरानी व्यवस्था अपनाई जाए। इस विधेयक के कानून का रूप लेने के बाद 2021 का अधिनियम निरस्त हो जाएगा। चर्चा में बीजेपी के सस्मित पात्रा, द्रमुक के तिरुचि शिवा, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एस निरंजन रेड्डी, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, रांगकापा के राजेंद्र हीरालाल जैन, तेलुगु देशम पार्टी के भाष्यम रामकृष्ण, भाजपा के सुभाष बराला, डॉक्टर सतीश पुनिया, सुजीत कुमार, महेश केवट, स्वाति मालीवाल, मयंक कुमार नायक, बसपा के रामजी, बीएसआर के रविन्द्र चंद्र वद्य राजू और अन्ना द्रमुक के आईएस इनबादुरे ने भी हिस्सा लिया। विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए द्रमुक के तिरुचि शिवा ने कहा कि आयोग के अध्यक्ष का मनोनयन भारत के प्रधान न्यायाधीश के परामर्श से किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह भी देखना चाहिए कि न्यायाधीश के न्यायाधिकरण के आदेश का पालन किया जा रहा है या नहीं। बीजेपी के सस्मित पात्रा ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि न्यायाधिकरण सुधार केवल न्यायाधिकरण सुधार ही नहीं है, बल्कि यह प्रशासनिक सुधार भी है। उन्होंने कहा कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को भी इस विधेयक में शामिल किया जाना चाहिए। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एस निरंजन रेड्डी ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि प्रस्तावित आयोग में एक अध्यक्ष तथा चार सदस्य होंगे। इनमें दो न्यायिक और दो तकनीकी सदस्य होंगे। इनका चयन सावधानी से और उत्कृष्टता के आधार पर किया जाना चाहिए। अन्ना द्रमुक सदस्य आईएस इनबादुरे ने कहा कि नेशनल ट्रिब्यूनल डेटा ग्रिड कामकाज में पारदर्शिता लाने में मददगार होगा। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरण में रिक्तियों को यथाशीघ्र भरा जाना चाहिए।
बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू ने कहा कि आयोग को निष्पक्ष तथा स्वतंत्र होकर काम करना चाहिए और समय समय पर उसके काम की समीक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरणों की पीठ में पर्याप्त सुविधाएं होनी चाहिए। भाजपा की स्वाति मालीवाल ने कहा कि राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग को यह अधिकार दिया जाए कि वह समय समय पर यह विश्लेषण करे कि किन न्यायाधिकरणों में क्षेत्रीय पीठों की जरूरत है। मंत्री के जवाब के बाद विधेयक को ध्वनि मत से मंजूरी दे दी गई। इससे पहले जब न्यायाधिकरण सुधार विधेयक पर चर्चा शुरू हुई तब उपसभापति हरिवंश ने सदस्यों से केवल विधेयक से जुड़े विषय पर बोलने का आग्रह किया। उन्होंने शुरुआत में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति नहीं दी। इस पर विपक्षी सदस्यों ने नेता प्रतिपक्ष बोलने दो के नारे लगाए और हंगामा किया। विपक्षी सांसदों ने व्यवस्था के प्रश्न उठाने का प्रयास किया। उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह के सदन में आने की भी मांग की तथा राम मंदिर में चंदे की कथित चोरी को लेकर नारा लगाए। उपसभापति हरिवंश ने श्री खड़गे को बोलने की अनुमति दी लेकिन उन्हें सदन में चल रहे कार्य यानी विधेयक पर ही अपनी बात रखने को कहा। श्री खड़गे ने राम मंदिर मुद्दे पर बोलने का प्रयास किया लेकिन आसन ने इसकी अनुमति नहीं दी। उपसभापति ने अगले वक्ता का नाम पुकारा। इस पर विरोध व्यक्त करते हुए INDI गठबंधन दलों के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया। हालांकि विधेयक पर चर्चा जारी रही और कानून मंत्री के जवाब के बाद उसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। इसके बाद उच्च सदन में विशेष उल्लेख लिया गया। विशेष उल्लेख के जरिए अन्नाद्रमुक के IS इन्वादुरै, भाजपा के ब्रजलाल, जोगेन मोहन, डॉक्टर के लक्ष्मण, लक्ष्मी वर्मा, कविता पाटीदार, सुभाष बराला, सुष्मिता देव, स्वाति मालीवाल, S सिल्वा गणबेती, मनोनीत सुधा मूर्ति और YSR कांग्रेस पार्टी के गिल्ला बाबूराव ने लोक महत्व से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाए और सरकार से उनके समाधान का अनुरोध किया। इसके बाद शाम 4:30 पर उच्च सदन की बैठक को कल सुबह 11 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे को लेकर विपक्षी सदस्यों के लगातार हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद एक बार 12 तक और फिर दोपहर 2 तक के लिए स्थगित कर दी गई। सुबह 11 उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति CP राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और सदस्यों से शून्यकाल के तहत लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाने के लिए कहा। सभापति ने बीजू जनता दल के डॉक्टर संतृप्त मिश्र को अपना मुद्दा उठाने के लिए कहा। श्री मिश्र ने ओडिशा में उर्वरक की उपलब्धता से जुड़ा मुद्दा उठाया और अपनी बात ओडिया भाषा में रखी। इस दौरान विपक्षी सदस्य आसन से नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी बात रखने की अनुमति देने की मांग कर रहे थे। जब बीजद सदस्य डॉक्टर संतृप्त मिश्र ने अपना वक्तव्य समाप्त किया या करने वाले थे तभी खड़गे उठे और उन्होंने राम मंदिर से संबंधित नया मुद्दा उठाने की मांगी। नेता प्रतिपक्ष के इतना कहते ही सत्ता पक्ष के सदस्यों ने विरोध शुरू कर दिया। हंगामे के बीच सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 तक के लिए स्थगित कर दी। जब सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो सभापति राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू करने को कहा। इसी दौरान कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हुए और राम मंदिर में चंदे की कथित चोरी का मुद्दा उठाने की मांग की। सभापति ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी और कहा कि उन्होंने सत्ता पक्ष के सदस्यों को भी झारखंड से जुड़ा मुद्दा उठाने की अनुमति नहीं दी थी क्योंकि वह राज्य का विषय है। राधाकृष्णन ने कहा कि विपक्ष के नेता राज्य से जुड़े विषय को उठा रहे हैं इसलिए इसे प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि विपक्ष को हर दिन एक ही विषय उठाकर सदन की कार्यवाही बाधित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। सभापति ने कहा कि आप जिस विषय को उठा रहे हैं वह राज्य का विषय है और इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। सत्ता पक्ष के सदस्य भी कुछ राज्य से जुड़े मुद्दे उठाना चाहते थे लेकिन मैंने उन्हें भी यह अनुमति नहीं दी। वे झारखंड का मुद्दा उठाना चाहते थे और मैंने कहा कि यह राज्य का विषय है, मैं किसी भी राज्य के विषय को उठाने की अनुमति नहीं दूंगा। सभापति ने श्री खड़गे और हंगामा कर रहे अन्य सदस्यों से अपनी सीट पर बैठने को कहा और सूचीबद्ध प्रश्न लेकर कार्यवाही आगे बढ़ाने का प्रयास किया। इसके बाद भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा और नारेबाजी जारी रहने पर सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 तक के लिए स्थगित कर दी। अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं PTI भाषा के वैभव माहेश्वरी।
अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा और दिल्ली में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों के हंगामे के कारण आज लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद अपराह्न 2:25 पर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही सदन ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा के बिना ध्वनि मत से पारित कर दिया। संसद के मानसून सत्र के चौथे सप्ताह के दूसरे दिन की कार्यवाही भी पिछले 3 सप्ताह की तरह हंगामेदार रही और आज भी सदन में प्रश्नकाल तथा शून्यकाल नहीं चल सके। एक बार के स्थगन के बाद अपराह्न 2:00 सदन की बैठक शुरू हुई तो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। उन्होंने कहा कि केरल के 15वीं विधानसभा ने 14 जून 2024 को संकल्प पारित कर केंद्र सरकार से अपील की थी कि संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाए। श्री राय ने कहा कि केरल सरकार ने इसका कारण दिया कि मलयालम भाषा में राज्य का नाम केरलम है, लेकिन संविधान की पहली अनुसूची में इसे केरल दर्ज किया गया है। इस दौरान विपक्षी दलों के सांसद अयोध्या के राम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी पर सदन में चर्चा और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई पर गृहमंत्री शाह की जवाब की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। हंगामे के बीच ही सदन ने ध्वनि मत से विधेयक को पारित कर दिया। इसके बाद सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करना है। उन्होंने कहा कि एनसीडीसी का कार्य सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि उपज, खाद्य पदार्थों, औद्योगिक उत्पादन और पशुधन संबंधी सेवाओं तक सीमित था, लेकिन अब एनसीडीसी प्रसंस्करण, भंडारण, विपणन, आयात और निर्यात से संबंधित योजना बनाने और उन्हें लागू करने का भी काम कर रहे हैं। विधेयक के अंतर्गत एनसीडीसी को सहकारी समितियों या इस क्षेत्र के विकास में लगी किसी भी इकाई को सीधे ऋण और अनुदान देने का अधिकार मिल सकेगा। सदन ने इस विधेयक को भी चर्चा के बिना ध्वनि मत से पारित कर दिया। पीठासीन सभापति कृष्ण प्रसाद तेनेट्टी ने हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों से अपने स्थान पर जाकर बैठने और विधेयकों पर चर्चा में भाग लेने का बार बार आग्रह किया। उन्होंने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण विधेयक पारित हो रहे हैं, आप लोग सीट पर जाकर बैठिए। तेनेट्टी ने कहा कि विपक्षी सांसदों ने केरल का नाम बदलकर केरलम करने से संबंधित महत्वपूर्ण विधेयक पर भी नहीं बोला। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही सुबह 11:00 तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले आज सदन की कार्यवाही 11:00 शुरू हुई तो कांग्रेस और सपा समेत विपक्षी दलों के सदस्य अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा और दिल्ली में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग करते हुए हंगामा करने लगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी दलों से सदन की कार्यवाही चलाने में सहयोग की अपील करते हुए कहा कि जब विद्यार्थियों के आंदोलन पर गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग पर सरकार ने सहमति दे दी है तो फिर विपक्ष को सदन चलने देना चाहिए। श्री बिरला ने कहा कि सदन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलकर चलाना चाहिए। देश की जनता चाहती है कि सदन चले और सभी विषयों पर चर्चा हो। उन्होंने कहा कि सोमवार को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में भी उन्होंने सभी दलों से सदन चलाने का आग्रह किया था। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि मैंने व्यक्तिगत रूप से कई बार आग्रह किया कि प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसमें सत्ता की जवाबदेही तय होती है और कार्यपालिका में पारदर्शिता आती है। विपक्ष की विद्यार्थियों से संबंधित प्रमुख मांग का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में स्पष्ट किया कि गृह मंत्री इस विषय पर जवाब देने के लिए तैयार हैं, इसलिए अब आप सदन चलने दें। उन्होंने सदन के भीतर तख्तियां लाने पर भी आपत्ति व्यक्त की और कहा कि यह संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्षी सदस्यों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि आप लोग सहयोग करें, सदन नहीं चलने से मन व्यथित होता है। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने 11:04 पर सदन की बैठक अपराह्न 2:00 तक के लिए स्थगित कर दी। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

अभी आप सुन रहे थे संसद समीक्षा, जिसे हम रिले कर रहे थे अपने दिल्ली केंद्र से। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। पेश है फरमाइशें फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत। आपकी चाहत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को माधवी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हाजिर हम आपके पसंदीदा फरमाइशी फिल्मी गीतों के साथ। करते हैं शुरुआत इस गीत के साथ। फिल्म का नाम है हकीकत, आवाज मोहम्मद रफी की, पसंद आप सभी श्रोताओं की। गांधी चौक रोपड़ से हरदेव, मीका, बलविंदर विरक, जैतेक विरक और मीका विरक। जामा मस्जिद रोड हजारीबाग से मुबारक हुसैन, तबारक हुसैन, अमानत हुसैन, सराफत हुसैन, बिल्किस फातमा, कनीस फातमा और शहनाज फातमा। शिवाजी चौक राजीम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव। अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। हजारीबाग पतरातो से वेसिल खाल को मधु, रितु, रचना, मीतू, श्वेता, पल्लवी, रोहित, प्रवीण, नदीम, मनीषा सोरेन और उनका पूरा परिवार।

की आहुति देकर देश को स्वतंत्रता की ओर बढ़ाया। आइए सुनते एक देशभक्ति गीत। फिल्म का नाम है सिकंदर आजम, गायक कलाकार मोहम्मद रफी। पसंद आप सभी श्रोताओं की सीसीएल बकाकाना से रविंद्र वर्मा, रेणु वर्मा, रिया उर्वशी, अमन बेबी, सोना बाबू और आरके वर्मा। डम्भाडी हरली बड़कागांव से उमेश चंद्र पांडे, शंभू चंद्र, अनिल चंद्र, साकेत, शुभम, नर्मदा पांडे, अक्षता, प्रियंका, अपराजिता, सम्मी, अपूर्व और टुक्कू। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, पविता कांगड़ा, निखिल कांगड़ा, बबीता बोध, अंकित कांगड़ा, मोनी कांगड़ा और एसआर कांगड़ा। ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम और कुसुम नेताम। चिपाकला बड़का गांव से बाबूलाल ठाकुर, साबिया ठाकुर, तिलेश्वरी भरत ठाकुर, मंजू संतोष ठाकुर, विकास कुमार ठाकुर, प्रभात कुमार ठाकुर, जितेश आदर्श, अनुराधा रुक्मिणी, प्रियंका और दीपिका।

जब भारत अंग्रेजी शासन की गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब देश के युवाओं के मन में एक ही सपना था, भारत माता को स्वतंत्र कराना। उनके भीतर जोश था, आंखों में आजादी का सपना था और हृदय में मातृभूमि के प्रति अटूट प्रेम था। उनके बलिदानों को हम कभी नहीं भूल सकते। आइए सुनते हैं शहीद फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी की आवाज में, पसंद आप सभी श्रोताओं की। दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैयालाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार, मालीटोला खिरगांव से वीरेंद्र भगत, मालती भगत, विकास भगत, जितेंद्र भगत, रितेश भगत, रोहित भगत, अनिकेत भगत, ऋषि और राहुल, जीटी रोड बरही से सीताराम मालाकार, इंदु देवी, कैलाश भगत, अनीता देवी, हर्षिका रानी, पूनम कुमारी, नूतन कुसुम और राजा। मेन रोड बड़कागांव से दिनेश मालाकार, नीरज मालाकार, आशीष मालाकार, विकास मालाकार, रंजना मालाकार, गुड़िया रानी, गोलू बाबू, भोला बाबू और उनके मम्मी पापा।

काबुली वाला, आइए सुनते हैं इस फिल्म का गाना मन्नाडे की आवाज में। पसंद आप सभी श्रोताओं की बरका खाना से भानु पासवान, अशोक पासवान, सुधा, मंजू, रेखा, सुनीता, पूनम, बिट्टू, अन्नवी और अप्पू। शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, संतोष शर्मा, रजन रजक, राजू ताम्रकार, दिलीप परवा और रविकांत नामदेव। खिरगांव माली टोला से कल्लू माली, अरविंद मालाकार, आदर्श मालाकार और अनिकेत मालाकार। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर और बाबू रेयांश ठाकुर। छत्रपति संभाजी नगर से राजदीप राजेश, राशि राजेश, शीतल राजेश, राजेश सावले पाटिल। आदर्श नगर मलौट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा और साइना शर्मा।

दोस्तों, अगर आप भी अपने पसंद का कोई गीत इस कार्यक्रम में सुनना चाहते हैं तो लिख भेजिए हमारे पास। हमारा पता है कार्यक्रम आपकी चाहत, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी हजारीबाग। और इस कार्यक्रम से अपनी दोस्त माधवी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी चाहत। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या और 9 बजे News@9, जिसे हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।

0: भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, याद रखें समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। संसद ने अधिकरण प्रणाली में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए विधेयक पारित किया। राष्ट्रीय अधिकरण आयोग का प्रस्ताव रखा। लोकसभा ने केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को विपक्ष के हंगामे के बीच मंजूरी दी। सहकारी विकास के दायरे को व्यापक बनाने वाले राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक को भी स्वीकृति दी। भारत ने कहा, चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक। दोहराया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग। नासा ने आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत अपने महत्वाकांक्षी मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इसरो को आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस गर्व के साथ मनाने और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा। और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में सरकार प्रायोजित आतंक को दुनिया के सामने लाने के लिए बृहस्पतिवार से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। संसद ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे आज राज्यसभा ने मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। विधेयक में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक आधुनिक, स्वतंत्र और एक रूप अधिकरण प्रणाली स्थापित करने के लिए लाया गया है।
2: यह विधेयक विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यताओं, नियुक्तियों, सेवा की शर्तों और नियमों में दक्षता, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करने, अधिकरणों के प्रशासन और कामकाज को बेहतर बनाने, एक राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना करने तथा उससे जुड़े मामलों के लिए, जैसा कि लोकसभा द्वारा पारित किया गया है, इस विधेयक पर विचार किया जाए।
1: लोकसभा ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक के अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है। उन्होंने केरल के कांग्रेस सांसदों पर विधेयक का समर्थन नहीं करने का आरोप लगाया।
3: कांग्रेस के कुछ सांसद जब आज पारित करने का प्रस्ताव करा रहे थे तो केरल के कांग्रेस के लोगों ने इसका समर्थन नहीं किया। कांग्रेस स्पष्ट करे कि क्या केरल का नाम केरलम करने में उनको क्या आपत्ति है।
1: लोकसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 भी पारित कर दिया है। ये विधेयक निगम को औद्योगिक वस्तुओं के क्षेत्र में अपनी गतिविधियां संचालित करने की अनुमति देता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर हंगामे के कारण कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
4: संसद में आज भी विभिन्न मुद्दों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बाधित हुई। केंद्र सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा और गृह मंत्री द्वारा जवाब देने के आश्वासन दिए जाने के बावजूद कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने नारेबाजी जारी रखी। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों में आज भी प्रश्नकाल नहीं हो सका। विपक्ष की दोनों प्रमुख मांगे स्वीकार किए जाने के बावजूद सदन की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि सदन संवाद और सहयोग के माध्यम से चलता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है।
5: राहुल गांधी जी कई दिनों से गृह मंत्री अमित शाह का जवाब मांग रहे हैं सदन में। अब जब सरकार तैयार है, गृह मंत्री जी पूरे घटनाओं का बहुत डिटेल में जवाब देने के तैयार है, फिर राहुल गांधी जी भाग रहे हैं। मैंने इसलिए सदन में कहा कि भागना नहीं है।
1: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर छात्रों के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। आज नई दिल्ली में राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने ये बात कही।
6: रांची में अनुशासित मर्यादित आंदोलन करने वाले छात्रों के साथ जो व्यवहार हो रहा है उसके ऊपर राहुल गांधी जी के कान पूरी तरीके से बंद है। रांची के छात्रों की गूंज उन्हें सुनाई नहीं दे रही है। यह साफ हो जाता है कि छात्र हितों से उनका कोई लेना देना नहीं है, केवल शुद्ध राजनीति करनी है और संसद के सदन को अपनी सनक और उद्दंडता का बंधक बनाकर रखना है।
1: इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी है। राज्य में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते आज राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और हिरासत में ले लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई नहीं बदल सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है।
7: भारत और चीन के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़े मामले में हमने हमेशा चीन के साथ चर्चाओं में यह बात पर जोर दिया है कि हम इन मुद्दों को बेहद गंभीर मानते हैं। द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना बहुत आवश्यक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गलतफहमी और गलत आकलन से बचने और बाकी बचे हुए मुद्दों को सुलझाने के लिए स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकें और अन्य तंत्रों सहित मौजूदा कूटनीतिक माध्यमों का उपयोग जारी रखा जाएगा।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है।
7: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अभी कुछ महीनों में जो वहां पर मानवाधिकार का हनन हुआ, जिस प्रकार से लोग मारे गए, एक बार फिर से इस बात को उजागर करता है। और जहां तक लोगों के मानवाधिकार के पक्ष को गारंटी करने की बात आती है, उसमें पाकिस्तान को बहुत कुछ करना है। और हमको लगता है कि जो अभी हाल ही के हिंसा में इतने लोग मारे गए हैं, उस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चिंता करने की जरूरत है और साथ ही साथ में पाकिस्तान को जवाबदेही ठहराए जाने की जरूरत है।
1: इस बीच पाकिस्तान सरकार प्रायोजित आतंक को दुनिया के सामने लाने के लिए पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 13 अगस्त से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 60 से अधिक लोग मारे गए हैं और 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बलूच नेता मीर यार बलूच ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बलूचिस्तान की स्वतंत्रता को मान्यता देने का आग्रह किया है। उन्होंने पाकिस्तानी सरकार की दमन करने की कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को अपने मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। ये आमंत्रण आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत दोनों देशों की साझेदारी को और मजबूत करता है। दोनों देशों ने समझौते के अंतर्गत वैज्ञानिक आंकड़े साझा करने पर सहयोग के लिए चर्चा को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि शहर केवल ईंट और कंक्रीट से बनी इमारतें नहीं हैं, बल्कि किसी राष्ट्र के आर्थिक प्रगति के विकास के इंजन हैं। मुंबई में आयोजित ब्रिक्स मैत्री नगर सम्मेलन में उन्होंने ब्रिक्स देशों से आग्रह किया कि वे 21वीं सदी के लिए नागरिक केंद्रित शहर बनाने के लिए अपने अनुभव, प्रौद्योगिकी और नवाचार साझा करें। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने आज पश्चिम बंगाल से घोषित अपराधी गोपाल दास को गिरफ्तार कर लिया। वो पश्चिम बंगाल में 2021 के चुनावों के बाद हुई हिंसा और हत्याकांड में शामिल था। आरोपी को बाद में कलकत्ता की अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पंजाब पुलिस ने पिछले 5 दिनों में फिरोजपुर और अमृतसर के सीमावर्ती जिलों से 10 आरोपियों से करोड़ों रुपए की 80 किलो से अधिक हेरोइन बरामद की है। एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने आज फिरोजपुर में सीमा पार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 30 किलो से अधिक हेरोइन की खेप बरामद की और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस गर्व के साथ मनाने और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा है।
8: आइए 15 अगस्त को आन बान शान से मनाएं, स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि दें, विकसित भारत का संकल्प लें, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा, आइए हर घर पर तिरंगा लहराइए।
1: देश भर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ चलाया जा रहा है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।

0: जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास आज कुपवाड़ा जिले में करनाह क्षेत्र के टीतवाल में एक विशाल तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली में 1200 मीटर लंबा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। रैली में स्कूली छात्र, शिक्षक, पूर्व सैनिक, नागरिक और पुलिस अधिकारी, समाज के सदस्य और स्थानीय निवासी शामिल हुए। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने भारत की सॉवरेन रेटिंग BBB- पर यथावत रखी है। एजेंसी ने कहा है कि ये भारत की प्रबल विकास संभावनाओं और सशक्त बाह्य वित्तीय बुनियादी स्थिति को दर्शाता है। फिच ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट की चुनौतियों के बावजूद भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था की स्थिति बेहतर बनी हुई है। एजेंसी का अनुमान है कि अगले वर्ष मार्च में समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में GDP वृद्धि 6.4% रहेगी। आयकर विभाग ने इस महीने की 10 तारीख तक वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 8,11,000 करोड़ रुपए से अधिक का शुद्ध प्रत्यक्ष कर एकत्र किया है। ये वित्त वर्ष 2025-26 की इसी अवधि की तुलना में 23.09% अधिक है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने भारतीय बैंकों से नवाचार, जवाबदेही और ग्राहक विश्वास पर स्पष्ट ध्यान केंद्रित करने पर बल देते हुए AI को अपनाने का आह्वान किया है। मुंबई में RBI गवर्नर ने कहा कि AI ऋण वितरण, ग्राहक सेवा, वित्तीय समावेशन, परिचालन दक्षता और धोखाधड़ी का पता लगाने में सुधार करके भारतीय बैंकिंग में क्रांति ला सकता है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज लगभग 0.5% की गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 388 अंक नीचे आकर 78,154 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 112 अंक गिरकर 24,472 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 15 पैसे कमजोर हुआ और 95.44 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, गोवा और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में रुक रुक कर हो रही बारिश से कई स्थानों पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश के कारण भूस्खलन से राज्य के 2 राष्ट्रीय राजमार्ग और 204 अन्य सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हो गई हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान 5 जिलों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2024 और 2025 के लिए 115 कलाकारों को बृहस्पतिवार को संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान करेंगी। संस्कृति मंत्रालय ने कहा है कि देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चयनित ये छात्रवृत्ति और पुरस्कार विजेता पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने अधिकरण प्रणाली में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए विधेयक पारित किया। राष्ट्रीय अधिकरण आयोग का प्रस्ताव रखा। लोकसभा ने केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को विपक्ष के हंगामे के बीच मंजूरी दी। सहकारी विकास के दायरे को व्यापक बनाने वाले राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक को भी स्वीकृति दी। भारत ने कहा, चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक। दोहराया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग। नासा ने आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत अपने महत्वाकांक्षी मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इसरो को आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस गर्व के साथ मनाने और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये है विविध भारती।
1: आज के फनकार। दोस्तों आज है खास दिन। जी हाँ, आज है अभिनेता सुनील शेट्टी का जन्मदिन। उनको विविध भारती परिवार की ओर से जन्मदिन की हार्दिक बधाई। तो आज हम सुनेंगे अभिनेता सुनील शेट्टी पर केंद्रित कार्यक्रम, लेकिन बस कुछ ही देर में।
2: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
3: मेहंदी हसन साहब का यहाँ पे एक दौर आया था, तो हमने बोला क्यों नहीं इसको हम कैश करें।
2: लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की जोड़ी के प्यारे लाल।
3: तो देखिए उसका अंतरा है दरा दरा दरा दरा। अब ये क्या उल्टी हरकत है। हम लोग जो गाते हैं दरा तारा दरा तारा, देखिए मेहंदी हसन साहब की खास उठंग था, तो हमने वो चीज ऐसे उठा के रख दिया कि लोगों को मालूम भी नहीं पड़ा और लोगों ने खाक क्यों कहा।
2: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती।

सुनील शेट्टी 11 अगस्त 1961 को कर्नाटक मैंगलोर के मुल्की तालुका में जन्मे। तुलु भाषी बंट परिवार के सदस्य सुनील शेट्टी अंक शास्त्र में बहुत विश्वास रखते हैं, इसीलिए उन्होंने उसी के अनुसार अपने नाम की स्पेलिंग्स में भी फेर बदल किया है।

0: गजिया।
1: 1992 में फिल्म बलवान से अपना फिल्मी सफर शुरू करने वाले सुनील शेट्टी को जब दर्शकों ने देखा तो उनमें सभी को एक ही मैन नजर आया।
2: कमी नहीं है लड़कियों।

जैसे जैसे सुनील फिल्मी दुनिया में अपनी जगह बनाते चले गए, वैसे वैसे उनके अभिनय में भी निखार आता गया। इसी से उत्साहित होकर सुनील ने कॉमेडी रोल किया अपनी दोहरी भूमिका वाली फिल्म गोपी किशन में। सुनील शेट्टी के दमदार अभिनय को फिल्म इंडस्ट्री ने सराहा। उनके नेगेटिव रोल के लिए फिल्म

इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया 2001 में, और 2009 में सुनील शेट्टी को साउथ एशिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी फिल्म रेड अलर्ट के लिए बेस्ट एक्टर के अवार्ड से सम्मानित

शेट्टी ने मुंबई में होटल व्यवसाय भी शुरू किया है और 2003 में फिल्म खेल से फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी कदम रखा। इस फिल्म में उन्होंने क्रिकेटर अजय जडेजा को बतौर हीरो चांस दिया और खुद बने

0: तो दोस्तों ये था अभिनेता सुनील शेट्टी पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम। आप सुन रहे थे अमरकांत के साथ, प्रस्तुति सहयोग पी के ए नायर, प्रोग्राम के प्रोड्यूसर विजय दीपक छिब्बर। अब अमरकांत को दीजिए इजाजत, नमस्ते।
1: आज के फनकार।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ। आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
1: वंदे मातरम सुजला।
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
1: शस्य श्यामलां मातरम वंदे मातरम।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष। प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे।
1: जय घोष वंदे मातरम।
0: लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।
2: आकाशवाणी है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुनेंगे। दिस इज द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी। प्लीज स्टैंड बाय फॉर आवर नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट। यू विल नाउ लिसन टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन राज्यसभा टुडे।
3: माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी,
4: नाउ क्वेश्चन नंबर 241 श्रीमान जीसी चंद्रशेखर जी।
5: प्रश्न संख्या 241। क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि 30 जून 2026 की स्थिति के अनुसार अब तटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की आवंटित निर्माणाधीन और चालू क्षमता संबंधी राज्यवार स्थिति क्या है? ख, प्रत्येक परियोजना के अंतर्गत जुटाया गया निवेश कितना है? और ग, ग्रिड संपर्क, पारेषण, ट्रांसमिशन, अवसंरचना और पर्यावरणीय मंजूरी के संबंध में किन किन बाधाओं की पहचान की गई है?
4: Now, honorable minister,
6: you are under the pressure.
4: Speaker sir, they never pressurize me. You are always pressurizing me. I am never under the pressure of them. I am always under the pressure of you. No, I am not under the pressure of anyone. I am not under the pressure of anyone except the Gargeji. I am always under the pressure of Gargeji, not of anybody else. Honorable Minister, First Supplementary Dr. Lakshmikant Bajpai Ji.
7: Sir! Sir!
4: Then First Supplementary G.C. Chandrasekhar Ji. You take your seat, I am calling him.
7: Sir, Mike.
4: You take your seat, I am calling him.
7: Mike.
4: First Supplementary Sriman G.C. Chandrasekhar Ji.
7: Sir, kindly do not off the mic till you complete my question, sir.
4: Sir, you take my request, do not off the mic, sir. I am allowing you. I am calling the Second Supplementary Dr. Lakshmikant Bajpai Ji. I
8: want to know from your mouth, कि ऑफ शोर एनर्जी के क्या फायदे हैं और इनके लिए क्या सरकार ने कोई राष्ट्रीय नीति बनाई है?
5: श्रीपद यशो नाइक, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री।
9: सभापति महोदय, भारत के लिए ऑफ शोर विंड एनर्जी कई स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस प्रदान करती है। उसमें से हायर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर तमिलनाडु में लगभग 50-54% और गुजरात में 30-40% तक सीवेज उपलब्ध है, जिसमें इंस्टॉल कैपेसिटी प्रत्येक मेगावाट से अधिक एनर्जी जनरेशन इसकी संभावना होती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऑफशोर विंड जो है, तो ऑफशोर विंड की तुलना में अधिक जनरेशन और वहां पैदा होते हैं और उसकी कम वेरिएबिलिटी को प्रदान करता है। तीसरा है, सोलर पावर को विंड एनर्जी कॉम्प्लीमेंट करती है। अध्यक्ष महोदय, चौथा है, तो स्केयर लैंड की आवश्यकता उसमें नहीं होती है और इसे लैंड एक्विजिशन के राइट ऑफ वे ऑफ इसे जुड़ी कई कंस्ट्रेंसेस सभी बच जाते हैं।

0: क्या किए, कोस्टल इकोनॉमी को बूस्ट करता है और ऑफशोर विंड से डेवलपमेंट से पोर्ट वेजल फैब्रिकेशन मरीन लॉजिस्टिक और कोस्टल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिलता है, इससे नए एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन पैदा होती है।
1: द थर्ड सप्लीमेंट्री श्रीमती सुधा मोदी जी,
2: ड्यू टू द चेंज ऑफ क्लाइमेट एंड अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस रिन्यूएबल एनर्जी इन हाइड्रो प्रोजेक्ट आदरणीय विंड प्रोजेक्ट हाउ मच इट इज अफेक्टेड, इज देयर एनी लॉसेस, इफ इट इज देयर हैव इट बीन मेजर्ड, एंड आई वुड लाइक टू नो हाउ एवरी स्टेट इज अफेक्टेड बाय ड्रॉट एंड साइक्लोन एंड हरिकेन एंड फ्लड्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू दैट। थैंक यू सर।
3: Honorable Minister,
0: माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है वो इस प्रश्न से संबंधित नहीं है, तो ये जो प्रश्न है ऑफशोर विंड का है और इसलिए इससे संबंधित नहीं है।
4: अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्रवाई की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। यू वर लिसनिंग टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन राज्यसभा टुडे। दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।

हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। पेश है कार्यक्रम रजनीगंधा। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गाना। फिल्म का नाम है अभिलाषा, गायक कलाकार मोहम्मद रफी।

0: अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर को फिल्म पारस मनी में। इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। पेश है कार्यक्रम आज के फनकार। हमारे आज के फनकार हैं प्रसिद्ध गीतकार आनंद बख्शी। आनंद बख्शी हिंदी सिनेमा के उन महान गीतकारों में गिने जाते हैं जिन्होंने सरल, सहज और आम बोलचाल की भाषा में ऐसे गीत लिखे जो कई पीढ़ियों के दिलों में बस गए। उनका जन्म 21 जुलाई 1930 को रावलपिंडी में हुआ था और 30 मार्च 2002 को मुंबई में उनका निधन हुआ। आनंद बख्शी का पूरा नाम आनंद प्रकाश बख्शी है। बचपन से ही उन्हें फिल्मों, संगीत और गीतों में गहरी रुचि थी। वे फिल्मों की दुनिया में अपना भविष्य बनाना चाहते थे और परिवार की इच्छा के विपरीत उन्होंने मुंबई जाकर फिल्मी दुनिया में काम करने का सपना देखा और उनका सपना सच हुआ। सुनते हैं आनंद बख्शी के लिखे कुछ गीतों को। कार्यक्रम का पहला गीत सुनते हैं बॉबी फिल्म से, आवाजें लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की है।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है।
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

आनंद बक्सी की सबसे बड़ी विशेषता थी कि वे बिना कठिन शब्दों और भारी भरकम भाषा के गहरी भावनाओं को व्यक्त कर देते थे। प्रेम, विरह, खुशी, दर्द, दोस्ती और जिंदगी के दर्शन, हर विषय पर उन्होंने प्रभावशाली गीत लिखे। उनके गीतों की यही सहजता उन्हें आम दर्शकों का प्रिय बनाती थी। आइए सुनते हैं हीरा पन्ना फिल्म का ये गाना, जिसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने।

कार्यक्रम आज के फनकार में आप सुन रहे हैं प्रसिद्ध गीतकार आनंद बक्सी के लिखे कुछ नगमों को। आइए सुनते हैं मिस्टर एक्सिन बॉम्बे फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज में।

आपकी कसम। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गाना। इसी के साथ कार्यक्रम आज के फनकार यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.1 MHz पर। श्रोताओं, 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार, जिसे हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। संसद ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे आज राज्यसभा ने मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। विधेयक में राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक आधुनिक, स्वतंत्र और एकरूप अधिकरण प्रणाली स्थापित करने के लिए लाया गया है। लोकसभा ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक के अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है। उन्होंने केरल के कांग्रेस सांसदों पर विधेयक का समर्थन नहीं करने का आरोप लगाया।
1: कांग्रेस के कुछ सांसद जब आज पारित करने का प्रस्ताव करा रहे थे तो केरल के कांग्रेस के लोगों ने इसका समर्थन नहीं किया है। कांग्रेस स्पष्ट करे कि क्या केरल का नाम केरलम करने में उनको क्या आपत्ति है।
0: लोकसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 भी पारित कर दिया है। ये विधेयक निगम को औद्योगिक वस्तुओं के क्षेत्र में अपनी गतिविधियां संचालित करने की अनुमति देता है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
2: संसद में आज भी विभिन्न मुद्दों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बाधित हुई। केंद्र सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा और गृह मंत्री द्वारा जवाब देने के आश्वासन दिए जाने के बावजूद कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने नारेबाजी जारी रखी। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों में आज भी प्रश्नकाल नहीं हो सका। विपक्ष की दोनों प्रमुख मांगे स्वीकार किए जाने के बावजूद सदन की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि सदन संवाद और सहयोग के माध्यम से चलता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। झारखंड में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते आज राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और हिरासत में ले लिया। इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी है। कल विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने की घोषणा की थी। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता का कोई इसे बदल नहीं सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान सरकार द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को दुनिया के सामने लाने के लिए 13 अगस्त से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अवामी एक्शन कमेटी ने दुनिया भर के कश्मीरियों से रैलियां करने और पीओजेके के लोगों के खिलाफ पाकिस्तान सरकार द्वारा किए जा रहे अत्याचार की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित करने का आग्रह किया है। पीओजेके में

0: on open scientific data sharing under the Accords. The ninth meeting of the India-US Civil Space Joint Working Group was hosted by India on the 5th and 6th of this month at the ISRO headquarters in Bengaluru. The ongoing Har Ghar Tiranga campaign is gaining significant momentum across the country ahead of the 80th Independence Day celebrations, inspiring citizens from all walks of the life to come together in a collective celebration of India's national pride and spirit of unity. The movement, which will continue till the 17th of this month, coincides with the 150th anniversary of Vande Mataram this year, making the occasion even more heart-stirring for every patriot. And that is the end of this news bulletin.
1: अभी आप सुन रहे थे अंग्रेजी में समाचार, जिसे हम रिले कर रहे थे अपने दिल्ली केंद्र से FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। यहीं संपन्न होती है हमारी आज की सभा। कल सुबह 5:55 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दें। शुभ रात्रि। जय हिंद।